सुप्रभात, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बृहस्पतिवार है, सक संबत 1948, ज्येष्ठ माह की तिथि 28, तदनुसार जून 18, ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेयर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेयर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र

मल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अगवानी करने वालों को अयोध्या से आई बारात जब जनकपुर के निकट दिखाई दी तो हृदय में उमड़ते आनंद से उनके शरीर रोमांचित हो उठे। धूमधाम से बारातियों का स्वागत किया गया। राजा जनक ने बारातियों के लिए दूध, ठंडे शरबत, जल आदि तथा भांति भांति के पकवानों से सजे थाल परात भिजवाए। वस्त्राभूषणों तथा बहुमूल्य मणिमाणिकों से लदे पशु पक्षी घोड़े हाथी भी भिजवाए गए। अगवानी करने वाले और बाराती नगर के बाहर इस प्रकार मिल रहे हैं मानो आनंद के दो सागरों का मिलन हो रहा हो। देव सुंदरियां फूलों की वर्षा करती हुई मंगलाचार कर रही हैं। देवता आनंद मग्न होकर नगाड़े बजा रहे हैं। बारात को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाए गए सभी सुविधाओं वाले जनवासे ले जाया गया। बारात के जनकपुर पहुंचने का संवाद सुनकर अंतःपुर में सीता जी ने मन ही मन सभी सिद्धियों का स्मरण किया और उन्हें बारात के स्वागत सत्कार के लिए भेजा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं महेंद्र कपूर के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। आपने सुना लता मंगेशकर और पंडित भीमसेन जोशी के सुरों में। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ देर बाद यानी कि सुबह के 6:45 का समय होगा सुगम संगीत का। आप सुनेंगे सुभाषित मित्रा के स्वर में। सुबह के 7 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा का। सुबह 8 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से ही सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार सुबह के 8:15 पर। सुबह के 8:30 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी रांची से। सुबह के 8:40 का समय होगा लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आप सुनेंगे खोरठा लोकगीत, कलाकार होंगे करुणा कुमारी और साथी। सुबह के 9 का समय होगा कार्यक्रम विविधा का, जिसमें आज चर्चा के साथ सुनेंगे भेंट वार्ता, संतुलित आहार स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद। भेंट वार्ताकार होंगे डॉक्टर बीके सिंह, उनसे बातें करेंगे अवनीश सिन्हा। सुबह के 9:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन का। सुबह 10 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, इसके प्रायोजक होंगे NCERT। सुबह 10:30 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। दोपहर के 1:10 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का प्रसारण होगा दोपहर के 1:20 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे दोपहर के 2:55 पर आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा दोपहर के 3:00। शाम के 4:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम के 4:02 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। शाम 5:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। कार्यक्रम विवरण का प्रसारण होगा शाम के 5:02 पर। शाम 5:05 का समय होगा कार्यक्रम गुलदस्ता का, जिसमें आज आप सुनेंगे युगल गीत। किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम किसानवाणी आप सुनेंगे शाम के 5:30 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा बीज उपचार से होने वाले लाभ। उसके बाद आप सुनेंगे संथाली लोकगीत शंकर चंद्र मुर्मू और साथी को। मौसम की जानकारी के बाद आप सुनेंगे भेंट वार्ता। शाम के 6:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम के 6:02 का समय होगा बांग्ला कार्यक्रम सात रंग का। शाम के 6:30 का समय होगा संथाली कार्यक्रम का। शाम 7:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची से सुनेंगे जिले में आजकल। शाम के 7:10 का समय होगा विशेष श्रृंखला सरकार के 12, जिसे रिले किया जाएगा आकाशवाणी दिल्ली से। शाम के 7:45 का समय होगा श्रोताओं के पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। रात्रि के 8:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। समाचार संध्या का प्रसारण होगा रात्रि के 8:45 पर आकाशवाणी दिल्ली से। रात्रि के 9:00 आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। रात्रि के 9:15 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। रात्रि के 10:00 आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि के 10:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि के 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार रात्रि के 11:05 पर। और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत सुभाषित मित्रा के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत सुभाषित मित्रा के स्वर में। ये आकाशवाणी का चैनल केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं अगला कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। कार्यक्रम जोहार चाईबासा सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को पूनम का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म उपकार के इस गीत से, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में।

0: मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है।
1: अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में फिल्म तुमसा नहीं देखा का ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म आराधना से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

अभी आपने सुना फिल्म गोरा और काला का ये गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म हम किसी से कम नहीं। आवाज़ें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना हम किसी से कम नहीं का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। सुनते हैं यह जरूरी संदेश।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गी आम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: मोर नाम मंगलोरा एको गांव बड़गड़ा आड़की थाना। तो जंगल गया है तो आउ का कहां मने आ है लोग आउ का वो जिंदा है ना मने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार।
5: नाम है रनबला देवी गाँव बारे भक्तो घर आये में हमारे घर बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जाए है।
6: नितुम बुरन सिंह तामसाय अनिता तामसाय भुरुपा सेना करना ऐसे दुखुर मिना यापा में रिया तपा में रिया वा बेटा मिटा
7: अन्य नितुम दो बुंबई कोड़ा
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
8: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
9: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
8: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
9: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
8: डायल कीजिए 8700014242।
9: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इन संदेशों के बाद एक जरूरी सूचना। पश्चिम सिंहभूम चाईबासा जिले के प्रभावित गृह रक्षकों को सूचित किया जाता है कि पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला अंतर्गत मुहर्रम पर्व ड्यूटी 2026 के अवसर पर दिनांक 25 जून से 28 जून तक कुल 4 दिनों के लिए विधि व्यवस्था संधारण हेतु 300 गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जानी है। अतः वैसे सभी गृह रक्षक जो वर्तमान अवधि में किसी भी प्रकार के कर्तव्य में प्रतिनियुक्त नहीं है, वे सभी गृह रक्षक जिला समादेष्टा कार्यालय चाईबासा में आकर दिनांक 18 जून से मुहर्रम पर्व हेतु आगमन कराना सुनिश्चित करेंगे। इसे अति आवश्यक समझे। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चायबासा से फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म हीरो से, रेशमा और साथियों की आवाजों में।

अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म हम सब चोर हैं का ये गीत। और आइए अब आपको सुनाते हैं फिल्म साजन का ये गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

अभी आपने सुना फिल्म साजन का ये गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म साजन की बाहों में, कुमार सानू के स्वर में।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबाजा। ये आकाशवाणी का चायबाजा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से।

0: Peppers.
1: घर वाले कुरकुरदास बना क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
4: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
5: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
3: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
6: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
3: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग अमरीका, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
7: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
3: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित

0: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
3: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
4: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
2: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
5: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
2: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
6: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
1: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमेरिका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट एएफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1, रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to attend Viva Tech Summit in Paris with French President Emmanuel Macron. PM Modi to also address members of Indian community in French capital. President Draupadi Murmu to embark on a five-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for two Rajya Sabha seats from Jharkhand and one from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. US President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end West Asia conflict. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the three-match series to take unassailable 2-0 lead. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France. Upon his arrival in the French capital, Mr. Modi received a warm welcome from the members of the Indian community gathered at his hotel.
4: India and France, it goes beyond geopolitics, education, culture, AI, innovation, it is everything.
5: So we are very thankful ki Modi ji aaye humse mile.
3: In Paris, Prime Minister Modi will attend the VivaTech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. The VivaTech Summit is Europe's largest technology and startup event where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation, ecosystem and technological advancements. Prime Minister Modi is also scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora event. We have more from our correspondent.
6: Today, the Prime Minister continues packed itinerary designed to supercharge bilateral trade and innovation partnerships. He will lead the charge by covering a specialized roundtable with top French and European business leaders, focusing on driving strategic investments into India's expanding industrial and tech corridors. The centerpiece of the visit takes place later today at VivaTech, Europe's premier technology and startup conference. Prime Minister Modi, alongside French President Emmanuel Macron, will lead a series of high-level engagements at the summit, culminating in a highly anticipated keynote address that highlights India's skyrocketing global digital footprint. The intensive diplomatic trip will wind down with a major community outreach initiative. The Prime Minister is slated to attend a massive diaspora reception featuring vibrant cultural performances that celebrate India's heritage. Mahesh Sopre, Akashwani News, Paris, France.
3: The Paris leg of PM Modi's visit is expected to further strengthen India-France relations, particularly in technology, innovation and people-to-people ties. President Draupadi Murmu will embark on a five-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. On the first day of her visit, President Murmu will attend a program on the empowerment of tribal society through spiritual awakening at Betul in Madhya Pradesh. We have more from our correspondent.
7: President will arrive in Indore and then travel to Betul, where she is scheduled to attend a program organized by Brahma Kumaris. Later, she will visit the Omkareshwar temple and participate in the evening aarti. On June 19, the President will attend an event marking International Sickle Cell Anemia Day. On June 21, President Murmu will take part in International Yoga Day celebration in Jabalpur. She will also attend the 36th convocation ceremony of Rani Durgavati University as the chief guest. Later, she will visit Kuno National Park before returning to New Delhi. In view of the President visit to Betul, District Collector Dr. Saurabh Sanjay Sonwani has imposed certain restrictions as part of the security arrangements. Abhinav Goyal, Akashwani News, Bhopal.
3: Polling for two Rajya Sabha seats from Jharkhand and one from Mizoram will take place today. In Jharkhand, Jharkhand Mukti Morcha's Badrinath Ram, Congress candidate Pranav Jha, and independent candidate Parimal Nathwani are contesting the election. In Mizoram, candidates from the ruling Zoram People's Movement, ZPM, and the opposition Mizo National Front, MNF, are locked in a direct contest to fill Mizoram's lone Rajya Sabha seat. The BJP and the Congress have decided to abstain from voting. The India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, will come into force on the 15th of July this year. The Ministry of Commerce and Industries informed that the agreement on social security, also referred as the Double Contribution Convention, DCC, will come into effect on the same day. We have more from our correspondent.
8: The Ministry of Commerce and Industries also noted that the period of exemption under the Double Contribution Convention, DCC, has been increased from 3 years to 5 years, marking a major gain for India's temporary workers, hailing the government as a triumph of economic statecraft. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal stated that the simultaneous enforcement of the CETA and the Double Contribution Convention will open up significant new opportunities for India's exports, as India has secured immediate duty-free access on 99% of tariff lines. He said that this will allow textiles, leather, marine, engineering and processed food sectors to compete with no disadvantage and supply their world-class products. The ministry said that the India-UK CETA has been designed as a people-centric agreement that delivers benefits across society. The ministry noted that this historic economic architecture effectively prepares both nations to navigate the complexities of modern international commerce while permanently accelerating India's trajectory toward an inclusive, prosperous and self-reliant Viksit Bharat 2047. Nitika Gupta, Akashvani News, Delhi.
3: Prime Minister Narendra Modi has said that the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will significantly boost the bilateral trade and investment between India and the United Kingdom. In a social media post, Mr. Modi said that the agreement will also unlock numerous opportunities for Indian farmers, workers, MSMEs, startups and innovators and contribute meaningfully to the realization of Viksit Bharat 2047. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back to the morning news. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. Akashwani News brings you a special feature, Bharat Saal, Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the steps taken by the government to eradicate Naxalism and bring an unprecedented wave of developmental activity in the affected regions. We have a report.
9: The Narendra Modi government's coordinated multi-pronged strategy combining calibrated security operations, financial choking and rapid development saturation has resulted in making the country free from Naxalism and Maoist terror. Home Minister Amit Shah had formally announced that Naxalism would be completely eradicated from the entire country by 31st March 2026 and the pledge has now been fulfilled. Several landmark security operations played a decisive role in breaking the backbone of the Maoist network over the years. Operation Octopus was conducted in Budha Pahad region of Jharkhand in 2022, and Operation Double Bull liberated the Gumla, Lohardaga and Latehar districts of Jharkhand in February of the same year. Operation Thunderstorm targeted strongholds of Naxals in Saraikela, West Singhbhum and Khuti district of Jharkhand in 2022. Operation Black Forest, which was conducted in 2025 across a hill stretching 50 kilometers in length and 37 kilometers in width along the Telangana-Chhattisgarh border, dealt a severe blow to the remaining Maoist cadres. One of the residents of Bastar in Chhattisgarh had lauded the government's efforts, saying that it has fulfilled its promise of making the country free from Naxalism.
10: They fulfilled the promise they made. I thank Modi government, Amit Shah ji and Vijay Sharma ji from the bottom of my heart.
11: Amit Shah ji ko, Vijay Sharma ji ko, main hriday se dhanyawad deta hu.
9: The results of the coordinated multi-pronged strategy on the ground reflected the scale of the crackdown. Several top Naxal leaders were neutralized during this period, including Hidma, Kadri Satyanarayan Reddy, Ganesh Uike and the Naxalite General Secretary Basavraju. These security efforts brought an unprecedented wave of development activity in Naxal-affected regions. Tambu Orao, a resident of Gumla district, Jharkhand, said that since the Modi government was formed, Naxalism has gradually come to an end and people living with peace and harmony.
12: A decade ago, our village was completely under the control of Naxalites. We are afraid to go out even during the day. Since 2014, when the Modi government was formed, gradually that fear has disappeared. Today we are living a peaceful life. The village is developing. They have made roads. It is very good now.
9: The National Investigation Agency played a critical role in disrupting Naxalite financing, significantly depleting their operations. operational resources. Today, the story of Naxal-free India stands as a testament to the triumph of democracy, development and the constitution over decades of violence. Akshay

0: वैद्यान, आकाशवाणी न्यूज दिल्ली।
1: US President Donald Trump and Iranian President Masoud Pezeshkian have virtually signed a 14-point memorandum of understanding aimed at ending hostilities between the two countries, reopening the Strait of Hormuz, and launching a 60-day process to negotiate a final agreement on sanctions and Iran's nuclear program. We have a report.
2: The White House said that Mr. Trump signed the MOU personally while meeting French President Emmanuel Macron in Paris. On the other hand, Iranian Foreign Ministry spokesperson confirmed that the text of the memorandum has been finalized and signed by both sides. He stated that consultations with Oman and other countries have been underway for some time and that arrangements for managing the Strait of Hormuz have largely been agreed upon. The US has released the official text of the MOU. The 14-point agreement includes an immediate and permanent cessation of military operations, including in Lebanon, and a pledge to conclude negotiations on a final deal within 16 days, extendable by mutual consent. Under the MOU, the US will begin removing its naval blockade and related restrictions, while Iran will facilitate the safe passage of commercial vessels through the Strait of Hormuz free of charge for an initial 60-day period. The document also outlines plans for the phased lifting of sanctions, the release of frozen Iranian assets, treasury waivers for Iranian oil exports, and a US-backed reconstruction and economic development program for Iran worth at least $300 billion. Iran also reaffirmed in the memorandum that it will not develop or acquire nuclear weapons. The agreement also provides for discussions on the future of Iran's enriched uranium stockpiles under the supervision of the International Atomic Energy Agency. With Vishal's report, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
1: In men's cricket, India defeated Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the three-match series in Lucknow to take an unassailable 2-0 lead. Put into bat first, India posted a massive 402 runs in 49.5 overs before being bowled out, powered by Shubman Gill's 154 and Ishan Kishan's 125. For Afghanistan, Nange Alia Karoti picked up 4 wickets, while Rashid Khan claimed 3. In reply, Afghanistan were bundled out for 232 in 44.3 overs. For India, Arshdeep Singh and Gurnoor Brar picked up 3 wickets, while Prince Yadav claimed 2. Shubman Gill was adjudged the player of the match. The third and the last match will be played in Chennai on Saturday. In the ICC Women's T20 World Cup, India defeated Netherlands by 95 runs in a Group A match at Headingley in Leeds last night. Batting first, India posted a formidable 209 for 5 in 20 overs, powered by Smriti Mandana's 74 and Shefali Verma's 55. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
3: Thank you, Nishit. News of Prime Minister Modi meeting US President Trump on the sidelines of G7 summit in Avignon, France is carried prominently by all the leading dailies. US President Trump says will help India, led by Prime Minister Modi, if attacked, according to Hindustan Times. India-UK trade deal to come in effect from July 15th. No tariff on key exports, writes the Tribune. Parliamentary board meet convened by Shiv Sena UBT today amid split rumours, says the Hindu. Delhi High Court seeks government reply as Telegram challenges ban over NEET exam, according to a report in the Times of India. 10-year wait ends as NSC files for IPO, while Reliance Jio set to file for IPO this week, reports Financial Express. And finally, in QS rankings, IIT Delhi tops India list for second year. Delhi University shines as well, says the Indian Express. And with that, it's back to you, Nishit.
1: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to attend VivaTech summit in Paris with French President Emmanuel Macron. PM Modi to also address members of Indian community in the French capital. President Draupadi Murmu to embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for 2 Rajya Sabha seats from Jharkhand and 1 from Mizoram to take place today. India-UK comprehensive economic and trade agreement to come into force on the 15th of July this year. US President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end the West Asia conflict. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the three-match series to take an unassailable 2-0 lead. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए विधानसभा में मतदान आज शाम तक आएंगे चुनाव परिणाम। 10 लाख रुपए की इनामी हार्डकोर महिला नक्सली पुष्पा महतो ने 21 वर्षों बाद पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि को व्यवसायिक रूप देने पर दिया जोर। उन्नत कृषि विधि अपनाने के लिए किसानों से की अपील। मौसम विभाग ने आज से रांची समेत 17 जिलों में मॉनसून के फिर से सक्रिय होने की जताई संभावना। तेज हवा और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी। और जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में झारखंड टी20 क्रिकेट लीग में जमशेदपुर स्टीलर्स ने संथाल स्ट्राइकर्स को 16 रन से हराकर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए आज मतदान होगा, जिसके लिए झामुमो के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी चुनाव मैदान में हैं। विधानसभा में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि मतगणना शाम 5 बजे से होगी और चुनाव परिणाम भी आज ही आएंगे। चुनाव में विधानसभा के सभी 81 विधायक मतदान करेंगे। सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 56 विधायकों का समर्थन है, जिसमें झामुमो, कांग्रेस, राजद और भाकपा माले हैं। वहीं एनडीए के 24 विधायकों का समर्थन निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को प्राप्त है। इधर चुनाव में क्रॉस वोटिंग रोकने और अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए सत्तारूढ़ महागठबंधन के विधायकों ने बैठक की।
5: विधायक विधानसभा में पहुंचकर 4 बजे तक का समय है, लेकिन उसके पहले ही सारा मतदान समाप्त हो जाएगा और उसके उपरांत जो निर्णायक जो पल आएगा वो 6 बजे तक हो जाएगा और सब लोकतंत्र के प्रहरी हैं।
4: वहीं एनडीए विधायकों ने भी निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी की जीत की रणनीति बनाई।
6: यहाँ सवाल जीत हार का नहीं है, हमने तो सिर्फ समर्थन दिया है एनडीए की तरफ से और बीजेपी की तरफ से। हमने शुरुआत में समर्थित एक रूपता बनाने का आग्रह किया नाथवानी जी ने, उन्होंने सारे घटक दलों से अप्रोच किया, फिर हम लोगों ने बैठक बुलाई। तो एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी हैं और हमें पूरी आशा है कि वो जीते। जिस तरीके का हमें रुझान देखने को मिल रहा है, फीडबैक्स आ रहे हैं, तो संभवतः हम हाईएस्ट वोट लाकर जीतेंगे।
4: राज्यसभा चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर बनाए गए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे, इसकी सभी तैयारी पूरी कर ली गई है।
7: आरओ से रिपोर्ट आ गया, उनका वोटिंग के लिए कितना भी तैयारी करना वो तैयारी हो चुका है, उसका संबंधित तो हम लोग रिपोर्ट भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का है। ऑलरेडी मैनुअल दिया हुआ रिटर्निंग ऑफिसर का, उनका इलेक्शन कमीशन का मैनुअल है, उसी मैनुअल के अनुसार उनका काम निष्पादन करना है।
4: वहीं इस चुनाव को लेकर रांची में हाई अलर्ट है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों की तैनाती सादे लिबास में की गई है। वे विधायकों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। 10 लाख रुपए की इनामी हार्डकोर महिला नक्सली पुष्पा महतो ने 21 वर्षों बाद हथियार छोड़कर कोलकाता में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। झारखंड के सारंडा जंगलों में संयुक्त बलों के बढ़ते दबाव और केंद्र सरकार के माओवादी मुक्त भारत अभियान के तहत चौतरफा घिरने के बाद पुष्पा महतो ने हथियार डालने का फैसला किया। वह झामुमो के तत्कालीन सांसद सुनील महतो हत्याकांड और बुरुडी लैंडमाइन विस्फोट समेत कई चर्चित नक्सली घटनाओं में आरोपी रही है। राज्य सरकार ने 2 आईएएस अधिकारी समेत राज्य प्रशासनिक सेवा के 88 अधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापन किया है। आईएएस अधिकारी रंजीत कुमार लाल को मेदिनीनगर का नगर आयुक्त और सुलोचना मीना को देवघर का नगर आयुक्त बनाया गया है। झारखंड में एटीएस अब झारखंड सीआईडी के अधीन काम करेगी। झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। पूर्व में एटीएस को लेकर जारी किए गए सभी निर्देशों को विलोपित कर दिया गया है। रांची में यूजीसी नेट परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने 6 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। निषेधाज्ञा 22 जून से 30 जून 2026 तक प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक तथा प्रभावी रहेगी। इस अवधि में 5 या अधिक लोगों के एकत्र होने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग, हथियार लेकर चलने तथा सभा बैठक आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा

0: समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्के ने कृषि को व्यापार के रूप में विकसित करने पर जोर दिया है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले के दूसरे दिन कल उन्होंने कहा कि यह समय खेती को व्यवसायिक रूप देने का है और यह तभी संभव होगा जब किसान उन्नत कृषि विधि अपनाएंगे।
3: झारखंड सरकार की ये सोच है कि क्यों ना हम लोग किसानों को भी व्यापारियों की तरह सोचना और कार्य करना सिखाएं। विश्व भर के प्रसिद्ध संस्थाएं हैं, वहाँ से आए हुए विशेषज्ञगण अपना ज्ञान यहाँ पे साझा कर रहे हैं, अलग अलग विषयों में चर्चा हो रहा है। लगातार किसान हर एक दिन उन सेशंस को अटेंड कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। हम लोगों को भी अपना प्रयासों को एक पटल में रखने का मौका मिला है।
0: लातेहार जिले में 3 दिवसीय ड्यूटी मीट का कल शुभारंभ हुआ। इस मौके पर डीआईजी कौशल किशोर ने कहा कि इसका उद्देश्य झारखंड पुलिस को आधुनिक तकनीक और नवीन पुलिसिंग प्रणाली से अवगत कराना है।
4: 6 क्षेत्रों के कई विषयों पर प्रतियोगिताएं होनी है, जो आमतौर पर अनुसंधान से, फोटोग्राफी से, वीडियोग्राफी से, फिंगरप्रिंट से, घंटी सबोटाज इत्यादि विषयों से जुड़ी हुई है, जिसमें कि हमारे पदाधिकारियों और कर्मियों को अपनी कार्यकुशलता का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और जो बेहतर करेंगे उन्हें आगे चलकर राष्ट्रीय पुलिस ड्यूटी मीट में भी भाग लेने का मौका मिल सकता है। बहुत अच्छा अवसर पुलिस विभाग के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए होता है।
0: मौसम। झारखंड में आज से मॉनसून के फिर सक्रिय होने की संभावना है। आज और कल रांची समेत 17 जिलों में आंधी और बारिश और वज्रपात की संभावना है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। जयसिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे झारखंड T20 क्रिकेट लीग के 8वें दिन जमशेदपुर स्टीलर्स ने संथाल स्ट्राइकर्स को 16 रन से हराकर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव की खबर को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर का शीर्षक है, झामुमो के वोट से बैजनाथ की जीत तय, दूसरी सीट प्रणव या नाथवानी को, आज विधानसभा के कमरा नंबर 42 में फैसला। दैनिक भास्कर ने G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बैठक की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अखबार ने ट्रंप के हवाले से लिखा है, मोदी के रहते भारत पर हुआ हमला तो हम साथ खड़े रहेंगे। हिंदुस्तान ने रांची में संघ कार्यालय पर हमला होने और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, तृणमूल के बाद शिवसेना यूबीटी में टूट लगभग तय। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए विधानसभा में मतदान आज शाम तक आएंगे चुनाव परिणाम। 10 लाख रुपए की इनामी हार्डकोर महिला नक्सली पुष्पा महतो ने 21 वर्षों बाद पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि को व्यावसायिक रूप देने पर दिया जोर। उन्नत कृषि विधि अपनाने के लिए किसानों से की अपील। मौसम विभाग ने आज से रांची समेत 17 जिलों में मॉनसून के फिर से सक्रिय होने की जताई संभावना। तेज हवा और

वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी। और जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में झारखंड टी20 क्रिकेट लीग में जमशेदपुर स्टीलर्स ने संथाल स्ट्राइकर्स को 16 रन से हराकर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। ये आकाशवाणी का चायपासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आप सुनेंगे खोरठा लोकगीत, कलाकार हैं करुणा कुमारी और साथी।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आपने सुना खोरठा लोकगीत, कलाकार थे करुणा कुमारी और साथी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

0: कार्यक्रम विविधा सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को पूनम का नमस्कार। श्रोताओं, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है सतत खान पान दिवस। जी हाँ श्रोताओं, हर साल 18 जून को यह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार खाद्य प्रणालियों, स्थानीय और मौसमी उत्पादों के उपयोग और भोजन की बर्बादी को कम करने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन का मुख्य फोकस लोगों को यह सिखाना है कि हमारी रसोई की आदतें और खाने की पसंद ग्रह को कैसे प्रभावित करती है। इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे कि स्थानीय उत्पादन को समर्थन, स्थानीय और मौसमी भोजन, भोजन की बर्बादी और पारंपरिक व्यंजनों को अपनाना। स्थानीय उत्पादन को समर्थन में छोटे पैमाने के स्थानीय किसानों और उत्पादकों से सामग्री खरीदना चाहिए। स्थानीय और मौसमी भोजनों के आधार पर उन खाद्य पदार्थों का सेवन जो आपके क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से और मौसम के अनुसार उगते हैं। खरीदे गए सभी खाद्य पदार्थों का बुद्धिमानी से उपयोग करना और कचरा कम करना। इसी तरह से ऐसी पाक कला को बढ़ावा देना जो सांस्कृतिक विविधता और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का सम्मान करती है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा 2016 में स्थापित किया गया था। यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में गैस्ट्रोनॉमी की भूमिका को भी उजागर करता है। तो इस तरह से आज के दिन यह दिवस मनाया जाता है। बातें हम आपसे और भी करेंगे, सुनते हैं जरूरी संदेश।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: इस संदेश के बाद आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता। संतुलित आहार स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद, भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर बी के सिंह, उनसे बातें कर रहे हैं अवनीश सिन्हा।
3: आज जिस तरह की भाग दौड़ भरी जिंदगी है, ऐसे में कुछ पल हम अपने लिए भी नहीं निकाल पाते, अपने स्वास्थ्य के बारे में भी हम नहीं सोचते हैं और हम जब चाहें जो भी खा लेते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे में हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम मिल रहे हैं सदर अस्पताल चाईबासा के चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह से, जिनसे हम बातें करेंगे संतुलित आहार हमारे लिए कितना फायदेमंद। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार। डॉक्टर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो संतुलित आहार है ये क्या है?
4: संतुलित आहार वह आहार है जिसमें जिंदगी के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक खाद्य पदार्थ हैं, उनका उचित समावेश जिस भोजन की शैली में रहता है उसको स्वस्थ आहार कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं।
3: तो आज के समय में लोग का जो इतना भागदौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं, इस समय वो किस तरह का जीवन जी रहे हैं और इससे क्या उन्हें नुकसान हो सकता है?
4: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान के पास समय बहुत कम रह गया है। हर इंसान के लिए 24 घंटे का समय है, लेकिन करियर ओरिएंटेड होने की वजह से और ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की वजह से अति व्यस्तता के कारण समय कम निकाल पाते हैं, इसलिए लोग फास्ट फूड की तरफ मुड़ रहे हैं। फास्ट फूड कभी भी बैलेंस डाइट नहीं है। इसके सेवन से आप देख ही रहे होंगे आजकल रक्तचाप, मोटापा, मधुमेह, कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित होकर लोग अस्पताल में डॉक्टर की सलाह के लिए आते हैं।
3: तो डॉक्टर साहब, ये सभी ये जो कारण हैं, इनके मुख्य कारण क्या हुआ?
4: मुख्य कारण हुए कि आप भोजन के सभी अवयवों का संतुलित मात्रा में अपने भोजन में शामिल नहीं करना
3: जी।
4: जैसे आपके भोजन, हमारे भोजन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, एक मेजर मैक्रो एलिमेंट होते हैं, एक माइक्रो एलिमेंट होते हैं, दोनों का समावेश यदि सही ढंग से ना हो, किसी की भी कमी रह जाए, तो इसके कारण एक तो माल न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं, या तो अति मोटापा या अति दुबला पतला होना और विभिन्न तरह की बीमारियां जिसका मैंने पूर्व में उल्लेख किया, जैसे रक्तचाप, मोटापा, डायबिटीज, कैंसर वगैरह बीमारियों का होना।
3: डॉक्टर साहब, आपने अभी चर्चा की माल न्यूट्रिशन की, तो इसमें माल न्यूट्रिशन एक मोटे तौर पर हमें समझाएं कि किस तरह से हो सकता है?
4: माल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन यदि गड़बड़ा जाए किसी का तो उसको माल न्यूट्रिशन कहेंगे
3: जी।
4: जैसे अति कोई व्यक्ति अत्यधिक मोटा है
3: जी।
4: जो खाने के असंतुलित भोजन के कारण भी हो सकता है, बीमारी की वजह से भी हो सकता है
3: जी।
4: या अति दुबला पतला है, यह भी दोनों कारणों से असंतुलित भोजन एवं बीमारी की वजह से हो सकता है। तो यदि किसी व्यक्ति का

0: वजन, शारीरिक बनावट या सामान्य नहीं असामान्य है, तो उसको अपनी पूरी तरह जांच करवा के देखना चाहिए कि खाद्य पदार्थ में असामंजस्य की वजह से है या किसी बीमारी की वजह से है। इसके लिए किसी विशेषज्ञ चिकित्सक या चिकित्सक की सलाह ली जानी चाहिए।
1: जी, अगर एक प्रेग्नेंट वोमेन जो है, अगर वो संतुलित आहार नहीं लेती है तो क्या दिक्कत हो सकती है?
0: यदि वह संतुलित आहार नहीं लेती, यदि उसमें भोज्य पदार्थ में आयरन की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, तो बच्चों में खून की कमी, हड्डियों में कमजोरी, और यदि आयोडीन का सेवन सही ढंग से न करें तो बच्चा जो है वो जन्म से ही मंदबुद्धि हो सकता है। इसके अलावा और सभी भी विटामिन्स वगैरह हैं, सबका अपना इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं मैंने सिर्फ तीन का उल्लेख किया, मतलब तीन ही जरूरी नहीं है, सभी जरूरी है।
1: जी, यानी कि हमारे भोजन में एक जो जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं वो प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए।
0: बैलेंस डाइट का मतलब हुआ कि उम्र और समय, बीमारी की हालत या सभी चीज़ को देखते हुए जो आपके शरीर के लिए ज़रूरी है और उसमें भोजन की सभी अवयवों का शामिल होना नितांत आवश्यक है, वो भी संतुलित मात्रा में, तभी वो संतुलित भोजन का है।
1: तो एक बार मुझे इस संतुलित आहार के बारे में डिटेल से बता दें।
0: संतुलित आहार वह आहार है जिसमें शरीर को सक्रिय रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होना चाहिए। हमारे शरीर में शारीरिक और मानसिक विकास हेतु, शारीरिक मतलब शरीर जैसे जो बच्चा होता है धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है, तो ये शारीरिक विकास जो है इस विकास के लिए भी भोजन की ज़रूरत है, और मानसिक विकास के लिए आपका उसके लिए भी कुछ कुछ अवयव भोजन के अवयवों की ज़रूरत है। और इससे ये हमारे शरीर को विकास के अलावा हमारे शरीर के सभी अंग एवं जो टिश्यूज या उत्तक कहे जाते हैं उनके उचित पोषण के हेतु भी संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार के अभाव में हमारे शरीर में एक तो उसका विकास सही ढंग से नहीं हो पाता, दूसरा यदि प्रोटीन की मात्रा कम हो तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो सकती है, और यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई तो धीरे धीरे विभिन्न अपॉर्चुनिस्टिक या रोग हमारे शरीर में अपना घर बना ले सकते हैं और हम एक स्वस्थ जीवन नहीं जी पाएंगे।
1: जी, बहुत अच्छा आपने बताया संतुलित आहार के बारे में। तो ये बताइए कि लोग ये समझते हैं कि हमने जो प्रतिदिन का भोजन है दाल भात वगैरह जो भी हम खाते हैं वो हम खा लिए, तो क्या ये संतुलित आहार की श्रेणी में आता है?
0: जी नहीं, संतुलित आहार की श्रेणी में वह भोजन आएगा जी जिसमें कार्बोहाइड्रेट वसा
1: जी, जैसे कार्बोहाइड्रेट में है तो हमें क्या लेना?
0: मुख्यतः अनाज उसमें
1: जी
0: मुख्य स्रोत है अनाज जो है कार्बोहाइड्रेट के लिए
1: जी।
0: वसा के लिए आपके तेल,
1: जैसे कार्बोहाइड्रेट की कमी अगर होती है तो वो इसमें हमें कौन सी किस तरह की बीमारी हो सकती है?
0: सूखा रोग जो कहते हैं
1: जी
0: उसकी वजह से हो सकता है, और उसमें प्रोटीन का भी कमी का स्थान आता है जिसकी वजह से सूखा रोग, जो बच्चे बचपन से ही कमज़ोर रहेंगे उनके शरीर का वजन भी कम होगा और शरीर में मांसपेशियाँ जो है काफ़ी कम हो जाएंगी, ऐसा लगेगा जैसे उसके हड्डी पे सिर्फ चमड़े को चिपका दिया गया, इस तरह का प्रेजेंटेशन इस तरह के देखने में मिलेगा।
1: और भी कोई बीमारी हो सकती है?
0: हाँ, मोटापा
1: जी, मोटापा
0: यदि असंतुलित भोजन लेंगे, बहुत ज़्यादा फैट का सेवन करेंगे, और साथ में यदि आप शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं हैं तो मोटापा घर कर सकता है, वह भी एक तरह का माल न्यूट्रिशन ही है
1: जी। तो और इसमें क्या क्या चीज़ हमें अपने खाना के साथ में और लेना चाहिए?
0: पर्याप्त मात्रा में पहले जिसे हम लोग मोटे अनाज करके नहीं ये लेते थे
1: जी,
0: उसका पाचन तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है
1: जी, मोटा अनाज,
0: मोटा अनाज का, इसीलिए मोटे अनाज को चोकर सहित, चोकर निकाल कर नहीं
1: जी,
0: चोकर सहित मोटे अनाज का आटा
1: जी
0: उसका इस्तेमाल करना चाहिए जो कार्बोहाइड्रेट का एक मुख्य स्रोत है। उसके अलावा चावल, चीनी वगैरह, गुड़ वगैरह ये सब भी जो है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। दूसरा स्थान आता है वसा का जो हमें तेल दो तरीके से मिलता है, एक तो नेचुरल शाकाहारी जैसे आपके तेल नारियल हो गया, सरसों हो गया, तिलहन या दलहन जो

0: वो आ जाते हैं जिसमें सरसों तीसी वगैरह आ गए, और एक होता है मांसाहार जिसमें मछली और मांस वगैरह मुख्य अवयव हुए, जिसमें आपको वसा प्रचुर मात्रा में मिलती है।
1: जी।
0: मानसिक विकास के लिए वसा का समुचित प्रयोग होना
1: जी।
0: आवश्यक है।
1: और खाने में क्या क्या चाहिए?
0: और खाने में आपको फिर प्रोटीन होना चाहिए जिसमें सीम प्रजाति के जितने भी फल सब्जियां हैं, सीम, फ्रेंच बीन, चना, मटर, तो ये लेग्यूमिनेसी फैमिली में ये सब आते हैं। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली के जितने भी हैं जिसमें दाल आ गए, सभी दाल आ गए, तो दाल और मांस, अंडा, मछली, ये सब जो है, आपका सोयाबीन वो भी लेग्यूमिनेसी फैमिली में आता है, सोयाबीन, राजमा, ये सब प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत हैं जिनको अपने भोजन में शामिल किया जाना चाहिए।
1: तो सर फल वगैरह खाने में?
0: फल तो भोजन में शामिल होना ही चाहिए, क्योंकि फल में हमें बहुत से खनिज एवं लवण मिलते हैं जो हमारे शरीर को विभिन्न उपापचय या मेटाबॉलिज्म जिसे कहते हैं, मेटाबॉलिज्म, और बहुत से रोग प्रतिरोधक बनाने में, टिश्यू को मेंटेन करने में खनिज लवण का काम होता है। जितने भी आप जो कार्यविधि करते हैं उसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीन चार अवयव ऐसे हैं जो आपके सेलुलर एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। देखने में तो ऐसे लगता है कि क्या करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि उसका आदमी को शरीर में सोडियम की कमी हो जाए तो आदमी एकदम सुस्त पड़ जाता है, निढल पड़ जाता है, इतनी कमजोरी फील होती है कि उठ भी नहीं सकता। तो इससे आप समझ ही रहे होंगे कि एक सोडियम, एक लवण है, उसका हमारे शरीर में कितना इम्पोर्टेंस है।
1: जी, तो एक मोटे तौर पे हम ये कहना चाहें कि हमारे खान पान में, एक संतुलित आहार में, ये सारी चीज़ें जो हैं ये होनी चाहिए।
0: विटामिन्स का भी होना जरूरी है, जिस पे हम लोगों ने बात नहीं की, लेकिन विटामिन्स का होना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ विटामिन्स है जो शरीर के अंदरूनी उपापचय या मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं।
1: सर, आपने बीच में कहा था कि हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम, मतलब कि वो ख़राब हो जाती है, इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, ये कैसे संभव होता है?
0: यदि कोई व्यक्ति अनावश्यक ज़रूरत से ज़्यादा बीमार रहने लगे, बार बार उसकी तबीयत खराब हो, तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारा इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कम्प्रोमाइज्ड है।
1: जी,
0: मतलब हमारी इम्यूनिटी, रोग से लड़ने की क्षमता कम हो गई।
1: जी,
0: भोजन संतुलित आहार लेना से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको कैसे पकाना है इसका भी ख्याल रखा जाए, ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम खाना बनाने के लिए जो भी चीज़ लेते हैं उसको सही तरीके से साफ़ नहीं करेंगे, विशेषकर वैसे चीज़ जो ज़मीन के नीचे में फलते हैं, उनको बढ़िया से धो लेना और उनको एक दो बार धो करके तभी उसका इस्तेमाल करना चाहिए, वरना बहुत से बीमारी होने का, इवन की मिर्गी होने तक का खतरा रहता है। एक कीड़ा पाया जाता है ज़मीन में, यदि उस वो चला गया सब्जी के साथ, कच्ची सब्जी या सलाद के साथ में, तो मिर्गी की बीमारी तक हो सकती है। इसीलिए भोजन को पकाने के पहले अच्छी तरह धो लेना और अच्छी तरह से पकाना, ये ज़रूरी है। ऐसा बहुत से भोज्य पदार्थ हैं जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो काफ़ी मात्रा में होते हैं, लेकिन अनावश्यक पानी से धोने के बाद वो जो है पानी में घुल करके चले जाते हैं, क्योंकि पानी में घुलनशील विटामिन है वो, विशेष करके बी कॉम्प्लेक्स और सी।
1: जी,
0: तो खाना बनाने के लिए, विशेष करके गर्भावस्था के दौरान या जब किसी व्यक्ति को खून की कमी हो, तो लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
1: आयरन,
0: वो जब आप लोहे के बर्तन में खाना बनाते हैं तो जो भी आप खाना बनाते हैं उसमें आयरन की मात्रा बढ़ जाती है और शरीर को ये इन प्रकार फायदा ही करेगा।
1: डॉक्टर साहब, हम कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे शरीर को कुछ खाद्य पदार्थ सूट नहीं करते हैं और हम खाए जाते हैं, उसमें जैसे कि आपने इतनी सारी बातें बताई कि संतुलित आहार में ये होना आवश्यक है, तो क्या ऐसा भी है कि हम उस चीज़ को खा रहे हैं वो हमारे लिए तो नुकसान हो रहा है, तब हमें क्या करना चाहिए?
0: जैसे जब भी आपको ये पता लगे किसी चीज़ का भी अति सेवन, भोजन में सिर्फ एक कोई भी अवयव उसकी मात्रा ज़्यादा हो, तो असंतुलित हो गया और वो शरीर को नुकसान करेगा और वो शरीर उतना ही रखेगा जितना उसको ज़रूरत है, लेकिन किसी कारण से बार बार उसको ओवरलोड देंगे तो आपका

0: फिर बीमार पड़ सकता है। या इधर वो मोटापा की तरफ जाएगा या फिर हमेशा आपको पेट से संबंधित बीमारियां होती रहेंगी। भोजन के मामले में एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि चाय या कॉफ़ी इसका सेवन भोजन के तुरंत पहले या तुरंत बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप चाय या कॉफ़ी का सेवन भोजन के साथ साथ यदि करते हैं तो ऐसे बहुत से खनिज और लवण हैं जिसको ये अपने साथ बांध लेता है और वो शरीर से बाहर निकाल देता है। आपको लगता है कि हम तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, दूध बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, लेकिन यदि दूध के तुरंत पहले या बाद आपने चाय पी ली तो उसमें जो टैनिक एसिड वगैरह होता है वो कैल्शियम को अपने साथ बांध करके शरीर से बाहर निकाल देता है, जो आपके खाना खाने के बाद भी कैल्शियम की कमी आपके शरीर में बनी रहती है। ये सिर्फ कैल्शियम पर लागू नहीं होता, बहुत सब भोज्य पदार्थ में ऐसे चीज विटामिन या ये हैं उनको अपने साथ ही निकाल देता है। इसीलिए भोजन करने के तुरंत पहले या बाद में आप चाय का सेवन न करें।
1: तो अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे संतुलित आहार के बारे में?
0: संतुलित आहार नियमित लीजिए, संतुलित व्यायाम कीजिए और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बना के रखिए, पेड़ लगाइए और पानी का सही निस्तारण कीजिए।
1: जी, तो आपने हमारे श्रोताओं को संतुलित आहार पर इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, संतुलित आहार स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद। भेंटवार्ता का अर्थ है डॉक्टर बी के सिंह, उनसे बातें कर रहे थे अवनीश सिन्हा।
3: सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
5: बोले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रहे रखा गया। अब हम बोले रुड़ तबन में अलग परिवार से मतलब पूरे ये ना
6: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रसने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
7: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत्तो कहाँ तो घर आई में हमरे घर है बहुत दुख के बात होते हम बात हो जाए
8: मुतुम बुरन सिंह तमसोय अनिता तमसोय भूरूपा सेना करना ऐसे दुखुर मिना अन्य यापा मैं रियल तपा मैं रियल वाह बेटा का
9: अन्य मुतुम दो मुंबई कोड़ा पटन तुम डूंटे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन तुम कितमई कोड़ा दोनों में उड़ी ने बागिया तो कि दोनों से यार की कोलो पुलिस कोलो उन्हें लड़ाई चलाओ तने दुरुगम गया तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बको को काको मेल नहीं है
10: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिटा हुरेन का अले आया नु तुम कहीं ना मिल आप ही लेता ना।
4: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें।

0: इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: इस जरूरी संदेश के बाद सुनते हैं ये गीत फिल्म स्वदेश से, उदित नारायण और कैलाश खेर के स्वर में।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का कार्यक्रम विविधा। ये आकाशवाणी का चाय बसा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म विरासत के इस गीत से, कुमार शानू और चित्रा की आवाज़ों में।

अभी आपने सुना फिल्म तेरे नाम का ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म सिर्फ तुमसे।

अभी आपने सुना फिल्म सिर्फ तुम का ये गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म सलामी से, अलका याग्निक और कुमार शानू की ही आवाज़ों में।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक हैं NCERT।

0: पतंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
3: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलौदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
3: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओं, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओं, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है, यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहां से आते हैं, तो आपको बताए देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओ, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना

यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्यौहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025

0: बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनत के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनत के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो।
2: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
1: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया।
0: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
2: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
1: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
2: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती।
1: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
2: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है। तब मुझे जाने दीजिए।
1: चिड़िया, तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
2: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
1: अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना, उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
2: वो सोना क्या चीज होती है?
1: तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है रीच?

0: चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
1: मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
0: ठहर। इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह।
1: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है, और मैं राह भूल जाऊंगी।
0: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया, और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
0: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना।
2: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया, और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
0: सच, तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
1: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
0: हाँ, जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
1: सेठ, मुझे देर हो रही है।
0: देर? अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
1: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
3: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
4: जी मालिक।
2: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
0: हाथ से निकल गई।
2: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा,
4: क्या है बच्ची? क्या हुआ बेटा, बता बेटा।
2: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक थे NCERT। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 होने को हैं। आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्स पर एक नए अंक के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके साथ, आपकी दोस्त कंचन, आपका पसंदीदा कार्यक्रम जुहार रांची को लेकर। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ और करते हैं नमस्कार जुहार। दोस्तों, कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ। तो आज का सुविचार है, जिंदगी को रंगीन कहा गया है क्योंकि यह हमें ना कई रंग दिखाती है। कभी जिंदगी हमें हंसना सिखाती है तो कभी रोना। हर कोई के जीवन में कई तरह की मुसीबत परेशानियां होती है। इनसे हमें डर कर भागने की बजाय मुसीबतों का सामना करना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए और हल निकाल कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हम आज को बेहतर करते हैं तो कल अपने आप बेहतर होगा।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार रांची अपनी दोस्त कंचन के साथ। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में आगे बातें करते हैं मौसम पे। जी हाँ, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि झारखंड में मानसून की बेरुखी के बाद गुरुवार से यानी आज से एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने की संभावना बढ़ गई है। और गुरुवार और शुक्रवार यानी आज और कल रांची सहित 17 जिलों में दोपहर के बाद मौसम बदलने की संभावना है। और इनमें खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जैसे कई जिले शामिल हैं। और इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने और मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की बहुत ही अधिक संभावना है। और मौसम विभाग ने बताया है कि इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और इसके अलावा बाकी 7 जिलों में भी तेज हवा के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप मौसम का मिजाज तो अभी देख ही रहे हैं, कब बदल जाए पता ही नहीं चलता है, तो ऐसे में अपना खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। घर से बाहर निकले तो छतरी लेकर ही निकले, अपने साथ पानी की बॉटल, खाने पीने की चीज़ें जो कुछ भी है लेकर निकले, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें और इस मौसम का लुत्फ उठाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं आज के दिन की। आज के दिन में आज हम बातें करेंगे इतिहास पे। सबसे पहले 1576 में आज ही के दिन मुगल बादशाह अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ था। और 1928 में पहली महिला पायलट अमेरिकी विमान चालक एमेलिया एयरहार्ट अंटार्कटिक महासागर के ऊपर विमान से उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी आज ही के दिन। आज स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा में पुर्तगालियों के दमनकारी शासन के खिलाफ एक ऐतिहासिक आंदोलन का आगाज किया था। इसी दिन की याद में आज गोवा में हर साल आज के दिन गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है। ये गोवा के लिए एक बहुत ही उत्साह का दिन है। और आज 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी नायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के मैदान में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। सबसे पहले तो हम उन्हें अपने आकाशवाणी परिवार से की ओर से सत सत नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आपको बताया कि मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 की प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। बलिदानों की धरती भारत में ऐसे ऐसे वीरों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने रक्त से देश प्रेम की अमिट गाथाएं लिखी। यहाँ की ललनाएं भी इस कार्य में किसी से पीछे नहीं रही। उन्हीं में से एक का नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने न केवल भारत की बल्कि विश्व की महिलाओं को गौरवान्वित किया और उनका जीवन स्वयं से वीरोचित गुणों से भरपूर अमर देश भक्ति और बलिदान की एक अनुपम गाथा है। अंग्रेजों के विरुद्ध रण यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का नाम सर्वोपरि माना जाता है। 1857 में उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सूत्रपात किया था और अपने शौर्य से उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। दोस्तों, ये तो थी बातें रानी लक्ष्मीबाई की। दोस्तों, हमें जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ, बहुत ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं और सीखने की भी ज़रूरत है। हमें जब चाहे जैसी आवश्यकता हो अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए और देश को विकास करने में अहम भूमिका हम सबकी एक भागीदारी है अच्छे नागरिक होने के नाते। तो चलिए हम उनको याद करते हैं और समर्पित करते हैं ये गानों को।

कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहर रांची अपनी दोस्त कंचन के साथ। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं। इतिहास में हम बातें कर रहे थे और अब हम आगे बातें करते हैं उन हस्तियों की जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो आज 1958 में आज ही के दिन होमी डैडी मोतीवाला, जो नौकायान में भारत की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे थे, उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1899 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और गांधीवादी चिंतक थे दादा धर्माधिकारी, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। 1887 में अनुग्रह नारायण सिन्हा, भारत की स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, वकील, राजनीतिज्ञ और आधुनिक बिहार की निर्माता थी, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। और 1931 में आज ही के दिन अखिल भारतीय संगठनों के प्रमुख, संयोजक और राजनेता के एस सुदर्शन का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था।

दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं अब उन हस्तियों का जिन्होंने इस दुनिया को आज ही के दिन अलविदा कहा था। तो सबसे पहले मिल्खा सिंह भारत के ऐसे प्रसिद्ध धावक थे जिन्हें लोग फ्लाइंग सिख के नाम से जानते थे। उनका निधन आज ही के दिन 2021 में हुआ था। 1974 में सेठ गोविंद दास स्वतंत्रता सेनानी, सांसद तथा हिंदी के साहित्यकार थे। उनका निधन भी

बेहतरीन फिल्में नसीम बानो ने हमें दी। उनकी अनोखी अदा आज भी सबके चेहरों पे आज भी वैसी ताजा है। दोस्तों, उनके गाने तो हमारे पास नहीं हैं, लेकिन उसके बदले हम दूसरे गाने आपको सुनाते हैं। वो आपको, उम्मीद करते हैं कि वो आपको अच्छा लगेगा।

दोस्तों, आज हम एक और दिवस मना रहे हैं, गुरु अर्जुन देव शहीदी दिवस। दोस्तों, शक्ति और शांति के पुंज शहीदों के सरताज सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी की शहादत अतुलनीय है। मानवता के सच्चे सेवक, धर्म के रक्षक, शांत और गंभीर स्वभाव के स्वामी गुरु अर्जुन देव जी अपने युग के सर्वमान्य लोक नायक थे। वे दिन रात संगत की सेवा में लगे रहते थे। श्री गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म के पहले शहीदी थे। गुरु जी शांत और स्वभाव के स्वामी थे। वे अपने आप के सर्वमान्य लोकनायक थे और मानव कल्याण के लिए उन्होंने आजीवन शुभ कार्य किए। दोस्तों, हम उन्हें इस विशेष शुभ कार्यों के लिए हम उन्हें आज याद करते हैं और आज के दिन को हम गुरु अर्जुन देव जी शहीदी दिवस मनाते हैं। तो हम उन्हें सत सत नमन करते हैं और ये गीत सुनते हैं।

दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बातें करते हैं, थोड़ी चर्चा हम खेल की। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो हम झारखंड की बातें करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जे एस सी ए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में झारखंड T20 क्रिकेट लीग के 8वें दिन गेंदबाजों का दबदबा दिखा और दोनों मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने अपने स्कोर का सफल बचाव करते हुए महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। दिन के पहले मुकाबले में जमशेदपुर स्टील्स ने संताल स्ट्राइकर्स को 15 रन से हराया। दोस्तों, ये तो थी हमारे झारखंड की बातें। अब हम थोड़ी चर्चा हम बाहर की भी कर लेते हैं। आज विश्व कप में मेसी की पहली हैट्रिक से अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया।

दोस्तों, अब आगे हम बातें करते हैं थोड़ी सेहत की। जैसा कि हम सब अभी देख ही रहे हैं कि मौसम किस तरह से चेंज हो रहा है, मौसम में उतार चढ़ाव हो रहा है। ऐसे में हमें अपनी सेहत का खास ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। इस जिस तरह से अभी उमस गर्मी हो रही है और इस गर्मी में बारिश होना तो सुकून देता है, लेकिन यह अपने साथ उमस और कई तरह की बीमारियों जैसे वायरल डेंगू मलेरिया स्किन इन्फेक्शन का खतरा भी लेकर आता है। तो ऐसे में बदलते मौसम में अपनों का अपने का खुद का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। उमस के कारण पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, इसीलिए हल्का भोजन ले जो आसानी से पच जाए। खाना हमेशा ताज़ा और गर्म खाएं, खुला या स्ट्रीट फूड खाने से बचें, क्योंकि इससे पेट का संक्रमण का खतरा होता है। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए आप अपने आहार में हर्बल चाय, ताजे जूस, सूप, नींबू पानी, नारियल पानी आप ले सकते हैं। और अपने आसपास बेहद साफ सफाई रखें। जैसे कि अभी बारिश का अब समय तो हो ही गया है, मानसून तो अब पहुंचने ही वाला है, मतलब हम कह सकते हैं कि पहुंच ही गया है। तो ऐसे में अपने आसपास साफ सफाई रखने की ज़रूरत है। और अभी जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहे हैं, जिस तरह से बारिश हो रही है, ऐसे में पानी का जमना तो लाजमी है। तो रुके हुए पानी को जमा होने से रोके और गड्ढे को भर दे और गंदगी से आसपास साफ सफाई रखे और खुद को सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे।

इसी गाने के साथ जोहर रांची का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। जाते जाते बस यही कहना चाहेंगे कि आप हमेशा खुश रहे, जीवन में आगे बढ़ते रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ अपने दोस्त कंचन को दीजिए विदा। नमस्कार, जोहर। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही देर।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्स पर फरमाइसी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद को लेकर हाजिर हूँ मैं आज आपके साथ, आपकी दोस्त कंचन। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए कार्यक्रम की पहली भेंट आप सब की पसंद पर। आप हैं लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली उल्लाह फकीर, डब्लू उल्लाह फकीर, परवीन आसमा फकीर, बुलंद शहर से बद्रू वली अंसारी, फरजू वली अंसारी, फरजी अली अंसारी और ग्राम बग बुड़वा पथरिया से हैं नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रो नामिका, उत्कर्ष नेताम। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर फिल्म अर्थ से ये गीत, जगजीत सिंह की आवाज में। कैफी आजमी का लिखा गीत है और संगीत जगजीत सिंह का ही है।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद अपनी दोस्त किंचन के साथ। दोस्तों कार्यक्रम जारी है, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, फिर लौटेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं आपकी पसंद पर। आप हैं सरगुजा मैनफार्ड से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बिलदार, अक्रम आसमा बिलदार, उल्लाह आसमा बिलदार। आप सबों ने फरमाइश की है फिल्म आंधी से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार का लिखा गीत है और संगीत आरडी वर्मन का है। फिल्म का नाम है आंधी।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद अपने दोस्त कंचन के साथ। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का अगला खत लेते हैं रिंगने छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, ददरंगी से भागवत वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर। आपकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म इज्जत से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी का लिखा गीत है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

और अब कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं फिल्म भावना से जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में। कैफी आजमी का लिखा गीत है और संगीत बप्पी लहरी का है। और इस गाने को फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर बीरक, जयतीक बीरक, मिका बीरक, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहार नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

इसी गाने के साथ आपकी पसंद का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। अपने दोस्त कंचन को दीजिए विदा, नमस्कार। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं हमारे बहनों का कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: बहनों नमस्कार। आपसे मिलकर खुशी से झूम जाती हूँ। वक्त चाहे कितना भी कठिन हो, यहाँ आकर सब भूल जाती हूँ। बताने आज जो आई हूँ, कहीं वो भूल न जाऊं। तो चलिए सबसे पहले अपने प्रिय कार्यक्रम गृहलक्ष्मी की शुरुआत करती हूँ।
1: बहनों, कार्यक्रम को लेकर हम हाजिर हैं दो सखियाँ, महजबीन और
0: शिल्पी।
1: हाँ नमस्कार
0: बहनों, हम जानते हैं कि आप अपना और पूरे परिवार का ख्याल बखूबी निभाती हैं, क्योंकि परिवार की खुशहाली में ही है जीवन की सुगंध।
1: और हमारी बहनों को स्वास्थ्य का मूल्य मंत्र भी पता है। जहाँ सजगता और सावधानी होगी, उस परिवार में हंसी गूंजती होगी, और यही है हमारी खुशहाल परिवार का राज।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और आज की भाग भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग चमकदार पैकेट और बंद खाद्य पदार्थों की ओर भाग रहे हैं, क्यों मजेबिन है ना। लेकिन हमारी जो बहनें हैं काफी समझदार हैं, वो अपनी पारंपरिक भोजन ही अभी भी बनाती हैं।
1: हाँ, क्योंकि हम भी तो सखियाँ को समय समय पर जागरूक हम करते हैं ना, कि किस तरह से आपको अपनी ज़िंदगी बितानी है। बहनों, हमारी थाली में परोसा गया भोजन केवल स्वाद ही नहीं देता, बल्कि हमें स्वास्थ्य, पर्यावरण और परंपराओं से भी जोड़े रखता है।
0: क्या बात है मेजवीन। और तुम्हें याद है ना कि दादी नानी के समय में सादा भोजन कितना स्वादिष्ट और पौष्टिक होता था, पता है क्यों? क्योंकि उस

0: में प्रकृति का स्पर्श था, हाथों की मेहनत थी। अपने घर के अहाते में उगाए गए फल, सब्जियां, मौसमी, जितने भी फल सब्जियां होती है वो होती थी।
1: बिल्कुल। और ये भी है कि हम देखते हैं थे कि जिस तरह से वो पहले का खान पान, उसका स्वाद दे, और उससे वो खुशबू जो आज तक हम लोग को ऐसा लगता है कि मतलब वो सुगंध हमारी जिंदगी से जुड़ गई है। घर के अहाते में जो जिस तरह से रोपे जाते थे मौसमी साग सब्जियां, और इस तरह से भारतीय समाज की यही पहचान होती थी। हम भारतीय सामानों को खरीदते हैं क्योंकि हमारे किसान भाई बहनों की मेहनत को उसमें एक कहेंगे कि उन्हें
0: सफल बनाना
1: सफल
0: है।
1: बनाना होता है, और उन्हें जागरूक करना भी होता है, उन्हें आत्मनिर्भर भी करना होता है। आर्थिक संबंध देना हमारी संस्कृति की पहचान भी है बहनों। यह भी सत्य है कि समय के साथ साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए, लेकिन बात जब अपनी संस्कृति की हो तो हमें पुराने दौर से भी गुजरना होता है। यानी कि हम अपनी जो परम्परा जो पारंपरिक भोजन, वस्त्र, जो भी वेशभूषा है, जो भी जिस तरह की जिंदगी बितानी है, वो हमें नहीं छोड़नी चाहिए।
0: बिल्कुल, बहुत खूब आपने बात कही बहनों। अब जरूरत है कि प्राकृतिक भोजन और स्थानीय परिवेश के अनुरूप भोजन को अपनाने की। और कहते हैं ना कि देशी भोजन स्वास्थ्य का बहुत बड़ा खजाना है। भारतीय संस्कृति में परिवार, समाज और लोगों को जोड़ता है। वह विविधता में एकता का प्रतीक माना गया है। सखियों, हर क्षेत्र का भोजन अपनी सांस्कृतिक पहचान रखता है। और अगर हम अभी झारखंड में हैं महजबीन, तो यहाँ की बात करें तो यहाँ मड़ुआ, बाजरा, ज्वार की हम देखते हैं कि सिर्फ रोटी ही नहीं बनाई जाती है, बल्कि कई तरह के व्यंजन बनते हैं जो स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा माना जाता है ना।
1: शिल्पी, तुम इस तरह की बातें कर रही हो तो मुंह में ऐसा लग रहा है कि एकदम स्वाद आ रहे हैं, मुंह से
0: बिल्कुल
1: पानी आ रही है। और हम जो बातें स्वाद को याद दिला दिया, जिस तरह से हम बातें कर रहे हैं, बहुत सारी बातों को यानी स्वाद को याद दिला रहे हैं। बिहार की लिट्टी चोखा हो, या फिर दक्षिण भारत की इडली सांभर, पंजाब की मक्के की रोटी और साग, या फिर राजस्थान की थाली, रंग बिरंगी थाली जिस तरह से सजी होती है। तो सखियों, यह केवल स्वाद ही नहीं बल्कि हमारी मिट्टी, मौसम और संस्कृति की भी पहचान होती
0: बिल्कुल।
1: है।
0: और भाई, जब हम बात करते हैं अपने दूसरे राज्य की, जैसा कि आपने कहा कि पंजाब की मक्के की रोटी, साग, राजस्थान की रंग बिरंगी थाली, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम वहां जाकर के उसे जरूर खाना पसंद करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ स्थानीय परिवेश और संस्कृति के अनुसार भोजन किया जाता है। और पर्यटन को बढ़ावा मिले मजबीन, इसके लिए हमें चाहिए कि पर्यटक, यानी कि हम कहीं भी जाते हैं दूसरे राज्य में घूमने, तो वहाँ के स्थानीय जो फूड होते हैं ना, उसको जरूर चखना चाहिए।
1: और चखना भी चाहिए, अगर हो सके तो उसे साथ में लाने की कोशिश करें, यानी कि आप उसे बनाने का तरीका भी ज़रूर पूछें। अगर आपको आसानी हो बनाने के तो आपको अगर अच्छा लगे तो उसे बनाने की कोशिश भी करें। हमने आपसे ये बातें इसलिए कि आज बताई जा रही है कि आज ये
0: बिल्कुल, आज एक विशेष दिवस है मेजबीन। आप ये कहना चाहती हैं बहनों से कि आज सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे है, यानी कि हमारी जो छोटी छोटी खान पान की आदतें ही स्वस्थ समाज और हरित भविष्य की नींव है।
1: सचिव, याद रखिए कि अन्न का जो हमें सम्मान करना चाहिए, तथा भोजन ग्रहण करने से पहले और बाद में प्रणाम करना चाहिए, यानी कि उन किसानों को धन्यवाद दें जिनकी मेहनत से हमें आज थाली सजी मिल रही है और हमारी भूख भी मिट रही है। आज घर के बच्चों में भी संस्कार डालिए कि आप किस तरह से बच्चों को जो अनाज की इज्जत होती है उसे करने की जो तरीका होता है वो सिखानी चाहिए। और एक एक दाना में अपनी जो थाली में है उसे बिल्कुल व्यर्थ ना जाने दें, यानी
0: बिल्कुल
1: कि खाना बचाने के जो एक फैशन सा चल गया है ना, उसे कम से कम इस चीज को तो हटानी
0: बिल्कुल।
1: चाहिए।
0: और मैं सिर्फ खाने घर की बात नहीं करेंगे हम आज, हम ये भी कहना चाहेंगे सखियों से कि जब हम किसी विवाह में जाते हैं, किसी बड़े समारोह में जाते हैं, तो हमारे साथ हमारे बच्चे भी जाते हैं। तो वैसे में कोशिश करनी चाहिए कि जब हमारे बच्चे जो भी प्लेट मिले, तो हम ध्यान रखें कि वो क्या खा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है मैं भी ना, कि बच्चे बहुत कुछ स्वाद चखने के कारण वो इतना सारा थाली भर लेते
1: देखते हैं
0: हैं
1: कि
0: कि बाद
1: कुछ
0: में हाँ वो बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए हम इस बात को आज सखियों से कहना चाहेंगे इस विशेष दिन पर, कि इस बात का आप ख्याल रखें कि उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। और अब बहुत सारी बातें हमने कर ली अपनी बहनों से, और अपनी बातों को अब यहीं पे थोड़ा सा रोकते हैं और एक सुरीला गीत सुनते हैं सखियों के साथ।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
3: भाइयों एवं बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
2: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखें, सवाल पूछें। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: सखियों, एक बार पुनः स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं भेंटवार्ता। आज का विषय है खाद्य सुरक्षा और भारतीय कृषि। और आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग, और उनसे बातचीत की है हमारे रेडियो सखी मैं जबीन परवीन। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
3: खाद्य सुरक्षा के महत्व को उजागर करना और खाद्य जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाना है। मुख्य लक्ष्य सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के सभी स्तरों पर खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करना भी है। और खाद्य सुरक्षा न केवल स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आर्थिक समृद्धि, कृषि विकास और दीर्घकालिक के जीवन गुणवत्ता के लिए भी जरूरी है। बहुत सारी बातें हैं जो आज हम जानेंगे खाद्य सुरक्षा के बारे में। बहनों, मिलिए आज के मेहमान से। आज के हमारे मेहमान हैं झारखंड सरकार के खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के वर्तमान मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। और आज हम डॉक्टर इरफान अंसारी जी से जानेंगे कि वो खाद्य सुरक्षा पर क्या संदेश देना चाहेंगे।
4: धन्यवाद मैडम। देखिए, इस राज्य का सबसे अहम डिपार्टमेंट खाद्य सुरक्षा है हमारा, और लगातार मैं इस विभाग को खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, बेहतर काम कर रहा हूँ। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का मुझे मार्गदर्शन हमेशा प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से आपने देखा होगा कि हम लोगों ने किसानों को पहला ऐसा राज्य बना झारखंड जो वन टाइम पेमेंट हम लोगों ने किया। आज इस राज्य के तमाम हमारे जो किसान वर्ग हैं काफ़ी खुश हैं। जहाँ जाता हूँ किसान लोगों ने कहा कि नहीं मंत्री जी, आपका जो एफर्ट है हम लोग काफ़ी फ़ायदा मिला है, और हम लोगों को आगे से और हम इस राज्य में खेती करेंगे क्योंकि आपने हम लोगों को हिम्मत दिया, आपने ताकत दिया। तो वन टाइम भुगतान से जो परेशानियां होती थी हम लोगों का वो कम हुआ है, बिचौलिया कम हुआ है, दूसरे राज्यों में जो हम लोग अनाज भेजते थे वो कम हुआ है। तो कह सकते हैं कि झारखंड अपने पैरों में खड़ा हो रहा है। दूसरा है कि अभी हम लोग दाल की खेती हम लोग करने जा रहे हैं जो कम होता था, इस पर हमारा फोकस है कि दाल के क्षेत्रों में भी झारखंड अच्छा करे। तीसरा है कि हम लोग बड़े पैमाने पर PDS हमारे लाभुक लोग आते हैं वहाँ दुकान में, और उसको हम लोग बेहतर संचालित करने के लिए जो 2G मशीन था, कई जो लाभुक हैं बहुत परेशान होते थे, 4-4 महीना 5-5 महीना बैकलॉग में चला गया, उनको खाद्यान्न नहीं मिलता था उनको। तो इसको देखते हुए मैंने 2G को बदल दिया और 4G 5G मशीन हम लाए, EPOS मशीन, और जिससे सभी लोग खुश हैं। अब समय पर अनाज मिल रहा है, कोई ठप्पा नहीं, कोई ऑफलाइन नहीं, एकदम ऑनलाइन मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि बेहतर से बेहतर सेवा देना राज्य के लिए मेरी प्राथमिकता है, और हम वो काम कर रहे हैं। हमारे दिसंबर शिवू सोरेन जी का एक योजना था, सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना। तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ हम लोग मात्र 10 रुपया में हम लोग साड़ी देते हैं। आप एक तरफ अनाज भी ले रहे हो, दूसरी तरफ आप साड़ी भी, वस्त्र भी दे रहे हैं। 10 रुपया तो मात्र नाम का है, लेकिन कहने का मतलब है अच्छी साड़ी हम लोग दे रहे हैं। हमारे सनातन भाइयों के लिए हम लोग धोती दे रहे हैं, और हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए हम

0: लुंगी दे रहे हैं, तो इस राज्य में एक समावेश है हमारा, या आपसी भाईचारगी, कोई भेदभाव नहीं, बेहतर काम करके दिखाना, लोगों को सम्मान करना और उनका दिल जीतना, ये मेरी प्राथमिकता है। बड़े धन्यवाद
1: बहनों, आज हम आपको जानकारी दे रहे थे खाद्य सुरक्षा के बारे में। आज के हमारे मेहमान थे झारखंड सरकार के खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के वर्तमान मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। सर, आपका हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनें अभी सुन रही थी भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय था खाद्य सुरक्षा और भारतीय कृषि। हमारे आज के मेहमान थे डॉक्टर इरफान अंसारी और उनसे बातचीत की है हमारी रेडियो सखी मैजवीन परवीन। और सखियों, इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद संगीत की दुनिया में चलते हैं और सुनते हैं प्यारा सा गीत।
3: त्रिपुरा के पतवा सरी थे डोले मनवा कि ही आरा में उठत हिलो। अरे पुरु

0: हेलो, आपका स्वागत है फिर से हमारे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। आज हम आपको जानकारी देंगे एआई का बढ़ता प्रयोग और सावधानियाँ। जानकारी के तहत हम बात करेंगे कि एक ऐसी तकनीक जो आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, जी हाँ, वो है एआई। देखा जाए तो बहुत ही हद तक हमारे ज़रूरत यानी आवश्यकताएं को पूरी करता है, लेकिन इसके बढ़ते प्रयोग और पूरी तरह से इस पर आश्रित होना भी एक हानिकारक है।
1: बिल्कुल सखियों, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आज हम बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि बैंक की लंबी कतार की जगह मोबाइल पर घर बैठे ही हम आराम से अपने सारे काम को निपटा लेते हैं, चाहे ऑनलाइन हो कोई भुगतान या खरीदारी। यह सुविधा हमें मिलती जरूर है। और इतना ही नहीं, एआई से आज जो भी युवा हैं घर बैठे नौकरी की भी तलाश कर लेते हैं और उन्हें अच्छी खासी नौकरी भी मिल जाती है। और मजेबिन कई ऐसे हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, जो कि घर में अगर चाहते हैं कि हम कुछ और भी काम कर रहे हैं और कुछ और पढ़ना चाहते हैं, जैसा शिक्षा है, व्यापार है, मनोरंजन है, स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधा ले लेते हैं। और लेकिन कहते हैं ना कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं बहनों, और ये बात हम पे निर्भर करती है कि हम उसका कौन सा पक्ष को चुने, यानी हम अच्छे मतलब पक्ष को चुने या उसके बुरे को। तो हम तो यही चाहेंगे भाई कि सखियां हमारी हमेशा अच्छा ही पक्ष को चुने, है ना?
0: लेकिन ये भाई बात है ना शिल्पी, कि अगर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे सावधानियां भी बढ़ती हैं
1: बिल्कुल,
0: और अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि पासवर्ड, फोटो, पता या बैंक संबंधी विवरण किसी एआई प्लेटफॉर्म पर साझा बिल्कुल भी ना करें। एआई अपनी रचनात्मकता को कम कर देता है, इसलिए इसकी सहायता तब तभी करें अगर हम जब ज़्यादा ज़रूरी है। आपको समझ जे इस तरह से अगर कहें कि अगर आपको समझ में आ रही है कि हाँ ये सही है और हमें सही जानकारी मिल रही है, तभी इसका इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल
0: कोई भी फोटो, वीडियो या संदेश को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जाँच ज़रूर करें, क्योंकि एआई का जो कमाल है ना, जिस तरह से हम कह रहे हैं ना कि इसके दो पहलू हैं, सही में इसके दो पहलू हैं। ये अच्छाई अच्छी बात भी बताती है, लेकिन इससे सावधानियां बरतना हमें बहुत ज्यादा
1: बिल्कुल, और
0: जरूरी
1: हमारी
0: है।
1: जो सखियां हैं वो वाकिफ हैं इस चीज कि जहाँ लाभ है तो वहाँ हानि भी होता है। बहनों, एआई का प्रयोग हमारे उलझन को जरूर सुलझा सकता है, पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि आप उसे अपनी ताकत मत समझिए, क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। अगर आप अच्छी कविता लिखती हैं, अगर हमारी कोई ऐसी बहनें हैं जो को बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखती हैं, तो आपके मन के विचार जो महसूस आप करती हैं, उस भाव को आप लिखती हैं अपने कागज पे, वो आपकी ताकत है। लेकिन जब एआई से आप पूछती हैं या उसकी आप नकल से आप उतारती हैं, तो वो आपके दिल की भावना को महसूस नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी बात है बहनों, इसलिए एआई का प्रयोग सोच समझ और सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ, सजगता के साथ करें।
0: और जिस तरह से शिल्पी आपने कहा कि उसकी जो हम रचनात्मकता के बारे में कह रहे हैं कि हमें अगर किसी तरह की जानकारी चाहिए या किसी तरह का लेखन चाहिए, तो वो सही बात है। आप खुद से जो भी लिखेंगे कि एक जिंदगी की सच्चाई होगी, एक जिंदगी के जिस तरह से उतार चढ़ाव होते हैं उसका हाव भाव होगा, लेकिन यहाँ पे है कि आपको एक नोट की तरह मिलेगा कि आप उसे सिर्फ उतार देंगी देख करके। लेकिन लिखने की भी अगर अच्छी बात यह भी है कि अगर आप लिखने की कोशिश करें तो ये आपके लिए भी बेहतर होगा।
1: कहीं ना कहीं ये
0: हाँ
1: मददगार तो साबित होता है, लेकिन वो है कि आपकी जो मन की भावना है, जो फीलिंग्स को आप लिखती हैं, वो नहीं समझ पाता
0: और
1: इस।
0: ये भी ना बात है ना शिल्पी, कि हम जब कलम और कागज उठाते हैं तो हमें मतलब देखा जाए तो हम बहुत कुछ बातों में खो जाते हैं। बहुत पुरानी बातें याद आती हैं, बहुत अच्छी बातें याद आती हैं, बहुत कुछ ऐसी बातें याद आती हैं जो हमारे जहन से कभी दूर जा चुकी थी। तो अगर हम कलम और ये कागज उठाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि हमें कुछ कुछ बातें पुरानी याद आएंगी, कुछ कहानियाँ याद आएंगी, कुछ कविताएँ याद आएंगी, कुछ बचपन की बातें याद आएंगी। तो हम यही कहेंगे कि एआई का उपयोग तो सही है, लेकिन आप इसे अपनी आदत में शामिल बिल्कुल भी ना करें। आप एक कोशिश करें कुछ अपने से करने की।
1: बिल्कुल, यानी कि महसिबीन आप कहना चाहती हैं हमारे सखियों से कि बहनें हमारी सृजनशील बने, खुद से लिखें और अपने मन की भावों को अपने कागज पर उतारें। और भाई, बातों ही बातों में बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी बातों को अब विराम चाहिए और चलते हैं संगीत की दुनिया में एक बार फिर से।
2: ये बर्बादी का रास्ता है शर्मा,
3: बदतमीज, बेहुदा

0: बहनों, अब कार्यक्रम समाप्त करने की दे इजाजत। हम बता दें कि कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव पांडे की,
1: और कार्यक्रम के सफर में मैं शिल्पी
0: और मैं जमीन
1: दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: गृह लक्ष्मी।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम बहनों का कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जग

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की पहली भेंट फिल्म जुर्म से कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में। इंदिवर की रचना है और संगीत राजेश रोशन का है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत अपनी दोस्त कंचन के साथ। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म दीवाना से। गायक कुमार सानू और अलका याग्निक की है, समीर की रचना है और संगीत नदीम श्रवण का है।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म दामिनी से। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में, समीर की रचना है और संगीत नदीम श्रवण का है। फिल्म का नाम है दामिनी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का ये सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सेंट गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एस्कॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर मिस्ताल एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपरे।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों के उपयोग से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षा और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान जारी। तीनों प्रत्याशियों ने विधायकों के समर्थन से अपनी अपनी जीत का किया दावा। केंद्र सरकार झारखंड बिहार समेत देशभर के कई राज्यों में वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का करेगी निर्माण। राज्य के खान एवं भूतत्व विभाग ने अधिकारियों को वित्त वर्ष 2026-27 में 27,000 करोड़ के राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची स्थित जगन्नाथपुर मंदिर की सुरक्षा को लेकर रांची एसएसपी को 24 घंटे पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करने का दिया निर्देश। और राजधानी रांची में 12वीं रैंकिंग नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप शुरू। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव में इंडिया गठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बैजनाथ राम को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने प्रणव झा को अपना उम्मीदवार बनाया है। निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को एनडीए का समर्थन प्राप्त है। झामुमो उम्मीदवार बैजनाथ राम ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में उनकी जीत निश्चित है।
1: ये तो दैवी कृपा है मेरे ऊपर। शुरू से आप देखते हैं, कोई भी शुभ कार्य करने के पहले हम लोग पूजा करते हैं, नॉमिनेशन के पहले भी, मतदान के पहले भी, रिजल्ट के पहले भी। ये बिल्कुल सही है और हम लोग सुनिश्चित और
2: जीत कर रहा, यही कामना।
0: एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी भी पूजा पाठ करने के बाद विधानसभा पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पूरी उम्मीद है कि इस बार भी उन्हें झारखंड की सेवा करने का मौका मिलेगा।
3: 2008 में भी था, 2014 में भी था और इस बार भी रहेगा। जो मिलना चाहिए उससे ज्यादा आएंगे। सारे एमएलए के ऊपर मेरा आधार है और झारखंड की सेवा करने का मौका मिलेगा तो जरूर करूंगा। सब लोगों का समर्थन है मुझे।
0: इधर भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी और लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक जनार्दन पासवान ने निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी की जीत का 100% दावा किया है। उन्होंने परिमल नाथवानी को 35 वोट मिलने की उम्मीद जताई। इधर लोजपा विधायक जनार्दन पासवान ने भी परिमल नाथवानी की जीत को पक्का बताया।
4: जीत के प्रति एकदम 100% आश्वस्त है। 5 बजे के बाद आकर बता देंगे हम। अभी हड़बड़ी मत रखे। नाथवानी जी अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे है। 2-2 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं वहाँ, तो निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि जीत के प्रति हम लोग एकदम 100% आश्वस्त है।
0: केंद्र सरकार झारखंड बिहार समेत देश भर के कई राज्यों में वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ से अधिक रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के अधिकारियों ने भाग लिया। खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने विभागीय अधिकारियों को वित्त वर्ष 2026-27 में 27,000 करोड़ के राजस्व

0: लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने राजस्व संवर्धन, खनिज नीलामी और अवैध खनन नियंत्रण के लिए विस्तृत निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी जिला खनन पदाधिकारियों को संशोधित नियमों के अनुसार कार्रवाई करने और जिला स्तरीय टास्क फोर्स की नियमित बैठक करने का निर्देश दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची स्थित जगन्नाथपुर मंदिर की सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अपने आदेश में रांची के एसएसपी को मंदिर परिसर के बाहर 24 घंटे पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती का निर्देश दिया है। अदालत ने 23 जून तक इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को कहा। 730 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाला मामले में आरोपी अमित गुप्ता ने औपबंधिक जमानत देने का आग्रह करने वाली अपनी याचिका वापस ले ली है। हाईकोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान याचिका इसलिए खारिज कर दी क्योंकि रिम्स की ओर से निचली अदालत को बताया गया था कि रिम्स में इलाज की पूरी व्यवस्था है। बता दें कि अमित गुप्ता ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए रिम्स की जगह कहीं बाहर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए औपबंधिक जमानत याचिका दायर की थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल उन्मूलन नक्सल मुक्त भारत अभियान का सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रभावित क्षेत्र के लोग केंद्र सरकार की इस पहल से लाभान्वित हो रहे हैं।
1: पहले और अभी में बहुत ही अंतर आया है क्योंकि इससे पहले हमारे गांव के लोग बहुत ही डरे सहमे रहते थे और कब क्या हो जाएगा किसी को अंदाजा ही नहीं था। हालांकि कुछ महीना से देखा जा रहा हमारे क्षेत्र में जो गतिविधियां थी नक्सलियों का वो भी थम सा गया है और विकास का गति तेज हुआ है और इससे हम सभी बहुत ही खुश हैं।
0: झारखंड में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल उद्योग को अतिरिक्त सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। यह जानकारी पूर्वी सिंहभूम जिला उद्योग केंद्र के जीएम रविशंकर प्रसाद ने बिष्टुपुर चैंबर भवन में आयोजित हस्तशिल्प निर्यात विपणन जागरूकता कार्यक्रम में दी। उन्होंने उद्यमियों को इस सब्सिडी का लाभ उठाने का आग्रह किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जामताड़ा में उत्साह का माहौल है। महिलाएं योग अभ्यास केंद्रों से जुड़कर नियमित योग अभ्यास कर रही हैं। जामताड़ा के कोट रोग योगाभ्यास केंद्र की संचालिका प्रीति सिंह ने बताया कि महिलाओं का मानना है कि स्वस्थ जीवन शैली में नियमित योग अभ्यास अत्यंत जरूरी है।
2: पहले योगा के प्रति लोगों में उतनी जागरूकता नहीं थी।
0: टाटा जूलॉजिकल पार्क में 16 वर्षीय अफ्रीकी शेरनी जोया की मौत के बाद उसी के साथ दक्षिण अफ्रीका के प्रीटोरिया से 2011 में लाए गए 17 वर्षीय अफ्रीकी शेर की हालत भी चिंताजनक है। टाटा जू के निदेशक डॉक्टर नईम अख्तर ने बताया कि शेर की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और इलाज जारी है। घरेलू शेयर बाजार आज दोपहर से पहले तक मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 105 अंक गिरकर 77,051 पर और निफ्टी 36 अंक की गिरावट के साथ 24,050 पर था। इधर राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,40,900 रुपए प्रति 10 ग्राम है जबकि चांदी की कीमत 2,55,000 रुपए प्रति किलो है। राजधानी रांची में 12वीं रैंकिंग नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप कल से शुरू हो गई। खेल विभाग के सचिव मुकेश कुमार ने नव निर्मित अत्याधुनिक स्केटिंग रिंक का उद्घाटन कर पहली रेस को हरी झंडी दिखाई।

उद्घाटन समारोह में ओलंपियन अनीश राज और के शर्मा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान जारी। 3 प्रत्याशियों ने विधायकों के समर्थन से अपनी अपनी जीत का दावा किया। केंद्र सरकार झारखंड बिहार समेत देश भर के कई राज्यों में वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का करेगी निर्माण। राज्य के खान एवं भूतत्व विभाग ने अधिकारियों को वित्त वर्ष 2026-27 में 27,000 करोड़ के राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची स्थित जगन्नाथपुर मंदिर की सुरक्षा को लेकर रांची एसएसपी को 24 घंटे पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करने का दिया निर्देश। और राजधानी रांची में 12वीं रैंकिंग नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप शुरू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। हमारी आज की कलाकार है सिप्रा बोस।

0: उप शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हमारी आज की कलाकार थी सिप्रा बोस।
1: ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: हम आकाशवाणी के राज्य केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें हम सुनेंगे कुछ चंद गजलें गुलाम अली की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्चस्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और PM जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल है, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा, मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाट बद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंग रोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ओआरएस, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
3: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य करने के औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2000 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश। इसके साथ

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जय भारती। इस समय इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं आज आपके साथ, आपकी दोस्त कंचन। इस समय सुनने वाले तमाम श्रोताओं का मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय सेना को समर्पित इस गीत के साथ।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: एस स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026, रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
2: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा हित में जारी।
3: कार्यक्रम में पुनः स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय भारती। कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनते हैं फिल्म सिंघम से, श्रेया घोषाल और अजय गुगावले की आवाज में। इस गीत को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत दिया है अजय अतुल ने। फिल्म का नाम है सिंघम।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म आई सी, अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। इरशाद कामिल की रचना है और संगीत ए आर रहमान का है।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म लव से। एस पी बाला सुब्रमण्यम और के एस चित्रा की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है और संगीत आनंद मिलिंद का है।

और अब कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म रुदाली से भूपेन हजारिका और लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार का लिखा गीत है और संगीत भूपेन हजारिका का है।

0: इसी गाने के साथ जय भारती का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। अपने दोस्त कंचन को दीजिए विदा, नमस्कार। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में राज्यसभा की दो सीटों के लिए वोटिंग समाप्त हो चुकी है। सदन के सभी 81 विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। अंतिम वोट झामुमो नेता और मंत्री सुदिव्य कुमार ने डाला, जबकि उनसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मतदान किया। अब सबकी नजरें नतीजों पर टिकी है। शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और 7 बजे तक अंतिम परिणाम आने की उम्मीद है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में झामुमो के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी की किस्मत दांव पर है। 81 सदस्यीय विधानसभा में जीत के लिए 28 प्रथम वरीयता मतों की जरूरत है। इस बीच कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता ने दोनों सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास विधायकों का पूरा बहुमत और जादुई आंकड़ा मौजूद है।
1: पूरा हमारा गठबंधन 100% जीतेगा। राजद 100% साथ है और आज देश में भाजपा के कुशासन और भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या के विरोध में यदि कोई एक पार्टी सशक्त है तो कांग्रेस आई है। झारखंड को व्यापार न समझे, राजनीति सेवा है।
0: दूसरी तरफ भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर बावरी ने इस दावे को खारिज करते हुए एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी की जीत की बात कही है।
2: आज जिस तरह से हालात है झारखंड के, तो उसको ठीक करने का एक अवसर और निश्चित रूप से मोदी जी को मजबूत करने का अवसर भी उनके पास है। इस बार झारखंड में राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को समर्थन दिया है वो इस प्रत्याशी जीतेगा।
0: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 3 दिन बाद होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के परीक्षार्थियों को तनाव मुक्त रहने का संदेश दिया है। NTA ने सुरक्षित और पारदर्शी परीक्षा का आश्वासन देते हुए नकल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। छात्र मदद के लिए मानस हेल्पलाइन 1416 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग में लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जुलाई और अगस्त महीने में आर्टिजन्स मेले का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त हेमंत सत्ती की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह मेला 13 से 15 जुलाई और 5 से 7 अगस्त तक झील परिसर के ओपन एम्फीथिएटर में लगेगा। मेले का मुख्य उद्देश्य स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित जूट उत्पाद, सोहराई कला, काष्ठकला और हस्तशिल्प सामग्रियों के बाजार को बढ़ावा देना है। देवघर पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। DSP कैलाश प्रसाद महतो के नेतृत्व में पुलिस ने सारवा क्षेत्र से 4 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी फ्लिपकार्ट, गूगल पे और PM किसान योजना के नाम पर फर्जी अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करते थे। ये आरोपी मोबाइल हैक करने के लिए APK फाइल भेजते थे। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। सरायकेला खरसावां में पुलिस ने बंद पड़े अभिजीत कंपनी प्लांट से लोहा चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनुभव भारद्वाज ने बताया कि बुरुडी स्थित प्लांट परिसर में छापेमारी कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मौके से चोरी में इस्तेमाल होने वाले 2 ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस कटर, रेगुलेटर और भारी मात्रा में लोहे का सामान बरामद किया है।
3: जानकारी के बाद टीम गठित हुई और वहां पर जाकर छापेमारी करके 6 चोरों को जो है उन्होंने पकड़ा है और उनके पास से चीजें बरामद हुई हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर था, गैस कटर था, लगभग जो है 20 से 22 फीट का लोहा उन लोगों ने चोरी किया था। भी कीमत जो है उसमें लगभग 40,000 लगभग है।
0: रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 में भारतीय टीमों का दबदबा कायम है। पहले दिन के लीग मुकाबलों के बाद भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमें शानदार प्रदर्शन करते हुए अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। महिला टीम ने अपने पहले कड़े मुकाबले में बांग्लादेश को और दूसरे मैच में श्रीलंका को हराकर लगातार 2 जीत दर्ज की। वहीं पुरुष टीम ने भी अपना दबदबा दिखाते हुए बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों को सीधे सेटों में शिकस्त दी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
0: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धेशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
0: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना, पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
0: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओं, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओं, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र के रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है, यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, तो आपको बता देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओ, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्योहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्योहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओ, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओ हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
2: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
3: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं।

आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनत के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखट के यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। ना, जाओ नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सुन

0: वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो?
1: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
0: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहां ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
2: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
1: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
0: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
1: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती।
0: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
1: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है। तब मुझे जाने दीजिए।
0: चिड़िया तो मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
1: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात हो।

0: गलती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा मालामाल होना चाहिए?
1: अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
0: वो सोना क्या चीज होती है?
1: तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
0: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
1: ठहर ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह।
0: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूं कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है, और मैं राह भूल जाऊंगी।
1: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के

0: अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
1: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना।
0: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
1: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
2: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
1: हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
2: सेठ मुझे देर हो रही है।
1: देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
2: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
3: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
4: जी मालिक।
0: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
1: हाथ से निकल गई।
0: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।
5: माँ
0: ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा,
5: क्या है बच्ची? उफ, क्या हुआ बेटा, बता बेटा।
0: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

0: ये आकाशवाणी रांची है। आइए सुनते हैं केंद्र की एनडीए सरकार की 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष परिचर्चा। आज की परिचर्चा का विषय है झारखंड में नक्सल उन्मूलन। परिचर्चा में भाग ले रहे हैं श्री साकेत कुमार सी, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक सीआरपीएफ झारखंड सेक्टर, श्री आनंद कुमार जरई, कमांडेड अभियान झारखंड सेक्टर, और श्री दिवाकर कुमार, सहायक निदेशक समाचार दूरदर्शन रांची। परिचर्चा का संचालन कर रही है पूनम किरकिट्टा।
1: आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से आयोजित परिचर्चा में मैं पूनम किरकिट्टा आप सभी का स्वागत करती हूं। केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज की विशेष परिचर्चा आयोजित की जा रही है। परिचर्चा का विषय है झारखंड में नक्सल उन्मूलन, और इसमें भाग लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री साकेत कुमार सिंह, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक सीआरपीएफ झारखंड सेक्टर, श्री आनंद कुमार जरई, कमांडेंट अभियान झारखंड सेक्टर सीआरपीएफ, और श्री दिवाकर कुमार, सहायक निदेशक समाचार दूरदर्शन रांची। श्री साकेत कुमार जी, श्री आनंद कुमार जी और श्री दिवाकर कुमार जी, आप तीनों हमारे स्टूडियो में पधारे हैं, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, जैसा कि आज की हमारी परिचर्चा है नक्सल उन्मूलन अभियान पर, पहला सवाल मैं आपसे करूंगी साकेत कुमार जी कि ये जो नक्सल या माओवाद की जो विचारधारा शुरू हुई थी कि पूंजीवादी सरकार या लोकतांत्रिक सरकार के हाथ से पावर लेकर के किसानों मजदूरों को देने की, तो ये तो विचारधारा से हट गए, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी।
2: देखिए, इस विचारधारा में मैं एक चीज और जोड़ूंगा कि ये विचारधारा के साथ साथ उनका ये भी था कि हम लोग बंदूक के दम पर ये करेंगे, वायलेंस के दम पर करेंगे, और धीरे धीरे करके उनकी विचारधारा को ही पब्लिक रिजेक्ट कर दी और वो खुद भी विचारधारा से भटक गए। जिनके लिए लड़ाई करने की बात कर रहे थे, मजदूर के लिए, ग्रामीणों के लिए, गांव के क्षेत्र के लिए, तो अल्टीमेटली जो भी इनका वायलेंस था सब उनके खिलाफ ही चला गया। जो ये नक्सल खत्म हुआ उसमें ग्रामीणों का ही बहुत सहयोग रहा, क्योंकि उन विचारधारा से भटक गए, और जो उनकी विचारधारा थे सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ तो उन्हीं लोगों का हुआ जिसके लिए वो लड़ने के लिए बता रहे थे कि मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ, तो उनकी विचारधारा से कभी भटक गए, वही ऑपरेस्ट रहे।
1: जी जी, आनंद कुमार जी, आप सीआरपीएफ की तरफ से आपने कई अभियानों में हिस्सा लिया है, इन अभियानों की क्या खासियत रही है?
3: सुरक्षा बलों द्वारा जब भी अभियान लॉन्च किए जाते हैं तो हमारे जो बाहर के सुरक्षा बल से बाहर के प्रदेश में सिर्फ जो ऑपरेशन से रिलेटेड रिजल्ट और एक्शन ही नजर आता है, लेकिन इसके साथ भी एक तथ्य है कि सुरक्षा बल के जो जवान हैं, जो जो दिन प्रतिदिन उस जंगल में जब गांव वाले और नक्सलियों के लिए अगर कोई तीसरा है तो वो सुरक्षा बल है, उस परिवेश में कैसे सुरक्षा बल अपनी जिंदगी गुजारते हैं, और बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी हर काम होते हैं जो हम बाहर में नहीं उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, और दिन प्रतिदिन में गाँव वालों के साथ सुरक्षा बलों का जो इंटरेक्शन होता है और वहाँ जो वो एक मददगार साबित होते हैं, जो एक सरकार या मदद के रूप में जो एक हेल्पिंग हैंड है, वो सुरक्षा बलों का जो योगदान है वो शायद हम लोग बाहर में पूरी तरह उसको परिचित नहीं कर पाए बाहर के लोगों से। ये इस चीज को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ क्योंकि सुरक्षा बलों ने इसके लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है इसमें।
1: जी जी, और सुरक्षा बलों के योगदान को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता, और मैं बता नहीं सकती कि हमारे दिल में सुरक्षा बलों के लिए, एक एक जवान के लिए कितना सम्मान है और हम कितना प्राइड फील करते हैं उनके ऊपर में, और हम बहुत ही आभारी हैं उनके लिए। दिवाकर जी, आपने जब भी रिपोर्टिंग करना हुआ आप दूर दराज के इलाकों में गए, जंगलों में गए, बिहड़ों में गए, तो जब आपको नक्सल के ऊपर में रिपोर्टिंग करनी थी, ऐसे कुछ वाक्य आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे तो हमें खुशी होगी।
4: देखिए, निश्चित तौर पर, लेकिन झारखंड में 60 और 70 के दशक में एक तरीके से उसका उफान हुआ, और जब झारखंड अलग राज्य 2000 के आसपास बना तो वो एक तरीके से नक्सलवाद की जो चरम सीमा थी वो झारखंड में पहुंच गई, और उसका मुख्य कारण कहा गया कि आदिवासियों को जो न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय नहीं मिल पा रहा था, और शायद इसी वजह से जो कनेक्शन था ग्रामीण इलाकों में वो नक्सलियों के साथ उनका अटैचमेंट लगातार बढ़ता चला गया। लेकिन जैसा कि साकेत जी बात कर रहे थे, आनंद जी जो बात कर रहे थे कि विचारधारा से जो उनका भटकाव हुआ वो निश्चित तौर पर एक जड़ को कमजोर करने वाली कड़ी हुई, और निश्चित तौर पर जो हम कह सकते हैं सीआरपीएफ के जवानों राज्य सुरक्षा बल के जवानों, तमाम जो ऑपरेशन चलाए गए, और उसके बाद जो केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां थी, जिसकी बात हम करते हैं पुनर्वास नीति की बात करते हैं, उन नीतियों का एक सकारात्मक इफेक्ट रहा जिसकी वजह से ये नक्सलवाद का खात्मा हो पाया, और जिसकी बात की जा रही है कि 2026 में पूरे देश से नक्सलिज्म खत्म हो गया। बूढ़ा पहाड़ जैसे इलाके पर मैं गया हूँ, सारंडा के जंगलों में मैं गया हूँ, उन जगहों पर जब 2010 की बात अगर मैं करूँ, 2014 की बात करूँ और 2026 की बात करूँ, तो लगातार एक तरीके से हम कह सकते हैं ड्रास्टिक चेंजेज वहां पर आए। वहां पर जो 2014 में आदिवासियों की स्थिति थी, वहां के आम लोगों की जो स्थिति थी, वहां पे पहुंच नहीं थी, सड़कों का जाल नहीं था, वो नेटवर्क आज के डेट में खत्म हुआ। तो कहा भी जाता है कि अगर किसी भी चीज को जड़ से खत्म करना हो तो सबसे पहले आपको सूचना तंत्र को मजबूत करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, और लोगों के मन में विश्वास बहाली करनी होगी। और वो काम शायद सीआरपीएफ हो चाहे दूसरे जो भी जवान हो, उन लोगों ने लगातार अपने जो सामुदायिक पुलिसिंग का इनका एजेंडा था उसके जरिए उन्होंने वो काम किया, और वो लगातार दिखता भी था कि जिस घर में पीने के लिए पानी नहीं है, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हो, उनको इन लोगों ने एक तरीके से विश्वास बहाली का काम किया, उनके बच्चों का उन्होंने स्कूल बैग पहुंचाए, किट पहुंचाए। आज आप देखें सामुदायिक पुलिसिंग का ही असर है कि उन इलाकों में जहां कभी हॉकी के किट नहीं होते थे, फुटबॉल के किट नहीं होते थे, उन जगहों पर इन लोगों ने वो किट पहुंचाए। विश्वास बहाली के जरिए मुझे लगता है कि पहली जंग वहीं से जीती गई और उसके सकारात्मक असर, क्योंकि मैं जब बूढ़ा पहाड़ पर गया तो कई ऐसे लोग मुझे देखने को वहां मिले। बूढ़ा पहाड़ पे कहा जाता है कि पुलिस वाले, सेना के जवान और राजनीतिक लोग तो पहुंचते ही नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से नेटवर्क डेवलप किया गया, लोगों में बहाली की गई, वहां पर कहा जाता है कि आईईडी का सब जगह नेटवर्क बिछा दिया गया था, तो कोई वो भी एक डर था, खौफ था। मैं कई जगहों पर गया जहां लोगों के शरीर में कपड़े नहीं थे, ये मैं 2020 की आसपास की बात बता रहा हूं, लेकिन जब मैं पिछले 24 में वहां पर गया तो वहीं पे वो खुशहाली दिख रही थी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, सड़कों का जाल जब बनने लगा, तो निश्चित तौर पर वो जो बदलाव है वो सकारात्मक बदलाव इस वजह से दिखा कि सरकार और सेना के जवानों ने वहां पर विश्वास बहाली की, विकास की किरण वहां पर पहुंचाई, और वो जो सकारात्मक असर है वो निश्चित तौर पर अगले 5-10 वर्षों में देखने को मिलेगा।
1: जी जी, और वो रूट कॉज भी वही था कि उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, उनको शिक्षा नहीं मिल रही है, उनको स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है, और उनको जो आक्रोश था कि बाकी सारे लोग योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं लेकिन उन ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं, तो अब जब ये योजनाएं पहुंच रही हैं तो उनका विश्वास वाकई बहाल होगा, और जब हमारे पास सीआरपीएफ हैं, जब हमारे पास कोबरा बटालियन है या हमारे पास पुलिस व्यवस्था है इन सबको टैकल करने के लिए, तो निश्चित तौर पर ये खत्म हो रहा है और होगा। साकेत कुमार जी, नक्सलिज्म में जो इसको खात्मे के लिए जो एक बड़ी रकम लगती है, अगर वो रकम नक्सलिज्म को कर्ब करने के लिए ना लग करके कोई विकास कार्य में लगता तो देश बहुत आगे तरक्की करता। इस वॉरफेयर में नक्सलियों के पास बड़े सोफिस्टिकेटेड हथियार आते हैं, तो उनका जो हथियार का जो सप्लाई है उस चेन को खत्म करना कितना आवश्यक था आप लोगों के लिए, और आप लोगों ने उसको कैसे हासिल किया, इस पर जानना चाहूंगी।
2: मैं पहले छोटा सा कमेंट जो दिवाकर जी बता रहे थे उस पर बोलना चाहूंगा, कमेंट या उसको ही ऐड करना चाहूंगा कि जैसे सुरक्षा बल का जो मुख्य काम होता है वो होता है एक वैसा माहौल तैयार करना जिससे कि वहां पर विकास के कार्य हो सके, जो लोग विकास करते हैं वो वहां पर जा पाए। तो हमारा रोल कम्युनिटी पुलिसिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि जिससे कि ग्रामीणों का हमारे ऊपर भरोसा बने और हम लोग का भी ग्रामीणों के ऊपर धीरे धीरे करके दोनों में कहीं गैप जो होता है, भरोसे का जो गैप होता है वो खत्म हो, और बाद में अल्टीमेटली बाकी सारे, चूंकि हमारा फंड उस हिसाब से कम्युनिटी एक्शन प्रोग्राम का नहीं होता है, सिविक एक्शन प्रोग्राम का कह लीजिए, कम्युनिटी पुलिसिंग कह लीजिए, तो अल्टीमेटली बाकी सारी चीजें जो बाकी डेवलपमेंट एजेंसीज हैं वो करती है, हम लोग उनको माहौल तैयार करके दे देते हैं। फिर अब मैं आपके सवाल पर आऊंगा जो जैसे उनके हथियार का सप्लाई का जो बताया गया, तो हथियार का सप्लाई माविस्ट में, बाकी सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या बाकी जो भी प्रॉब्लम जहां जहां रही उनके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन माविस्ट का जो भी हथियार का जो मुख्य स्रोत रहा है वो सबसे पहले जो ग्रामीणों के पास लाइसेंसी हथियार होता था उन पर हमला करके उनसे हथियार छीना गया, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर फिर पुलिस बल से जो लोकल पुलिस ऑपरेशन करना शुरू किए, तो लोकल पुलिस पर थानों पर अटैक करना या पुलिस कहीं पेट्रोलिंग पार्टी जा रही उस पर अटैक करना, उनका हथियार छीनना। थर्ड लेवल में जब आए तो था कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज थी, चाहे सीआरपीएफ हो चाहे एसएसबी हो, सीआरपीएफ मेनली झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करते हैं तो उनके ऊपर भी हमला करके उनका हथियार छीनना। तो मेनली जो उनका हथियार का स्रोत कहीं कोई बाहर से फंडिंग नहीं थी, वो हथियार बेसिकली हम लोग से ही छीन करके हम लोग के खिलाफ ही माओइज्म का ही प्रिंसिपल है कि जो दुश्मन का हथियार है वही हमारा हथियार है। तो ये इनका एक प्रिंसिपल है। तो उसी हथियार को कहीं हथियार बहुत ज्यादा खरीदने की बात नहीं आई। एक और इनका जो हथियार का स्रोत था, जो बाकी कुछ क्रिमिनल ग्रुप्स भी यहाँ पर एक्टिव रहे, तो उनको भी उनसे भी लूटना, उनके पास भी कई सारे जो अच्छे हथियार थे उनको भी टारगेट करके लूटे हैं। और वैसे भी क्रिमिनल को खत्म करके उस एरिया में अपना वर्चस्व बनाने के लिए, तो जैसे जैसे माओइज्म खत्म होता गया और जैसे जैसे हम लोग भी उस हिसाब से प्रिपेयर होते गए, लड़ाई के लिए तैयार होते गए, बेटर ट्रेंड होते गए, सभी तरफ से हम लोग को सपोर्ट मिलता गया, सरकार की तरफ से सपोर्ट, पब्लिक का सपोर्ट, तो वैसे वैसे नक्सलिज्म भी खत्म हो गया और साथ साथ उनका फिर हथियार भी। हम लोग करीब करीब हम लोग अभी एक और काम कर रहे हैं, पिछले जितने करीब करीब 15 साल से जो भी हथियार लूटे गए हैं उसका हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं और वो फिर हथियार हम लोग रिकवर जो जो किए हैं उसका भी हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिससे कि आदमी भी खत्म हो गया और साथ में हथियार भी खत्म हो जाए, विचारधारा के साथ साथ उनके पास किसी तरह का वायलेंस करने का सामान हम लोग नहीं छोड़े। तो हम लोग इसका भी पूरे अच्छे से अकाउंटिंग करें, एक एक हथियार का हम लोग अकाउंटिंग करें जो हमारा गया था। इनका बाहरी कहीं से कोई स्रोत नहीं है, स्रोत जो था बेसिकली पुलिस कहिए, पैरामिलिट्री फोर्स, आर्म पुलिस फोर्स कहिए, उसका ही हथियार लूटा हुआ था। विकास को तो पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है उस क्षेत्र में, जब तक नक्सल थे तो उस क्षेत्र में विकास नहीं पहुंच पा रहा था। अब समय वो आ गया है जहां पर से कि विकास बहुत तेजी से, जैसा दिवाकर जी आप बता रहे थे, बूढ़ा पहाड़ करीब करीब 3-4 साल पहले फ्री हो गया था, सारंडा जैसे भी आप बात कर रहे थे, तो सारंडा में अब आपको और डेवलपमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। आईडीज की बात की तो आईडीज का खतरा मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आपके भी माध्यम से कि ये नहीं कह सकते कि जो आईडीज लगे हुए हैं वो अभी भी लगे हुए ही हैं, तो आईडीज का खतरा अभी भी बना हुआ है। बूढ़ा पहाड़ के आईडीज 4-5 साल पुराने हो गए तो इफेक्टिव नहीं रह गया, टेक्निकल रीजन सिंपल ये है, आप लोग सब लोग भी जुड़े हुए, तो हर आईडीज के विस्फोट के लिए कहीं ना कहीं उसको कोई पावर सोर्स चाहिए, तो पावर सोर्स भी समय के साथ खत्म हो जाता है। जैसे बैटरी है तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा 3-4 साल में, तो सारंडा वाला जो क्षेत्र है उसमें अभी चूंकि नए आईडीज लगे हुए हैं तो वो अभी भी आईडीज इफेक्टिव है, तो गांव वाले को हम लोग अभी भी कोशिश करते हैं कि अभी जंगल में ऐसे नहीं भटके। तो अब एक्चुअली किसी को नहीं पता है कि आईडीज कहां लगा हुआ है, क्योंकि सब लोग मारे गए हैं, तो हमारे लिए भी एक मेजर चैलेंज है।
1: क्या ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि यहां पर आईडी लगा होगा? अगर
2: बहुत अगर आप आईडीज रिकवरी की बात कीजिएगा तो इंडिया में अगर बाकी देशों से बात करेंगे, तुलना करते तो हम लोग मच बेटर है आईडीज रिकवरी में, लेकिन फिर भी आईडीज रिकवरी करीब करीब अगर मान लीजिए 10 में से 9 के आसपास हम लोग रिकवर करते हैं, 8 रिकवर करते हैं, तो एक या 2 आईडी बच जाता, तो एक लाइफ हर आईडी के साथ कम से कम एक लाइफ या लिम का नुकसान हम लोग मान करके चलते हैं, तो आईडी रिकवरी भी काफी होते हैं। सरंडा में आज के दिन में एक भी नक्सली नहीं है, अब कोई नक्सली बचा नहीं रह गया है। पूरे झारखंड में जहां भी नक्सली है एक दो करके कुछ कुछ जगह बचे, उनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। वो लोग ऐसा नहीं हम लोग कह सकते कि बहुत ग्रुप बना करके कुछ वायलेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन वो एक एक आदमी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं अभी।
1: जी जी आनंद कुमार जी, ये नक्सलियों के खात्मे के बाद में जब कोई एक नक्सली ग्रुप खत्म होता है तो उस ग्रुप के नाम को भुनाने के लिए स्प्लिंटर ग्रुप्स उठ खड़े होते हैं, इनको आप कैसे टैकल करते हैं?
3: सीआरपीएफ की बात करें तो जब ये स्प्लिंटर ग्रुप्स इस तरह के आते हैं तो सीआरपीएफ बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन में स्थानीय पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है
1: जी, उनको आइडेंटिफाई कर
3: जहां जब ये इस तरह के स्प्लिंटर ग्रुप उस किसी क्षेत्र में निकल के आते हैं तो सूचना जब पुख्ता हो जाती है कि इस तरह की चीजें हो रही है तो स्थानीय पुलिस के नेतृत्व में और उनके समर्थन से उस पर जो उचित कार्रवाई होती है वो सुरक्षा बलों की कार्रवाई और उसमें अभियान चलाए जाते हैं और उस पर कार्रवाई होती है और उसमें मतलब अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ उसको हमने टैकल किया है उसी अलग अलग क्षेत्रों में जैसे झारखंड के अलग अलग राज्यों में, तो उसमें अच्छे रिजल्ट्स आए हैं जो और बहुत हद तक हमने जो इन स्प्लिटर ग्रुप्स को जो है पुलिस के सहयोग से उसको खत्म किया
1: जी। साकेत कुमार जी, नक्सलियों के बीच में महिलाओं की संख्या काफी देखी गई, बहुत सारी महिलाओं को लगता था कि हम अत्याचार सह रहे हैं तो अगर नक्सल में जाएंगे तो शायद हमें
4: जीवन यापन बढ़िया हो जाएगा।
1: कोई ऐसी घटना जहां आपको ये याद आता हो कि महिलाएं अपना दुख बताती हों जब वो आत्मसमर्पण कर चुकी हों या फिर आपने उनको पकड़ा हो तब?
2: बहुत पुरानी बात नहीं बताना चाहूंगा, अभी ऑपरेशन नवजीवन के तहत पिछले महीने ही 25 नक्सली सरेंडर किए थे, उसमें महिलाओं की संख्या ही बहुत ज्यादा थी। एक तो जो महिलाओं को साथ ले जाने के कारण कई सारी ऐसी भी घटनाएं हुई जिसमें उनको शारीरिक शोषण की बात आई, मैं बहुत ज्यादा उस पर नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन एक नक्सली से अपने ऑफिस में बुला करके बात कर रहा था तो उसके द्वारा बताया गया कि उसको मुश्किल से उस समय जब पहली बार गई तो 11-12 साल की थी और उसको ये बता करके लेकर जाया गया कि वहां हम लोग का स्कूल चलता है और स्कूल में आपको पढ़ाया पढ़ाया जाएगा। और उसका उम्र भी उसके 17-18 साल ही था, तो स्कूल तो भूल जाइए, एक बार कहीं कोई किताब भी नहीं छूने को दिया गया,
1: बिल्कुल धोखे से,
2: बिल्कुल धोखे से लेकर के ले जाया गया। और एक बार चली गई तो उस लड़की को भागने का काफी बार मन किया, जो अभी 25 लोग सरेंडर किए उसमें से कम 15 यंग लड़के लड़कियां जो कि भागने की कोशिश में लगातार लगे हुए थे, लेकिन उनको इस तरह से डरा करके रखा गया था। और सबसे ज्यादा डराया उनको गया था आईडी से, और उनको बताया भी नहीं गया था कि जंगल में कहां कहां से आईडी लगा हुआ है, और अगर आप भागेंगे तो खुद ही मारे जाएंगे। तो एक तरह से उनको डरा करके, बहला फुसला करके, और जबरदस्ती पुलिस का भी डर दिखाया कि अगर आप पुलिस के पास जाएगा तो पुलिस मार देगी। तो सभी तरफ से इस तरह से एक तरह से ऐसा जाल बुना गया, ऐसा जाल बिछाया गया जिससे कि एक यंग बच्चे को समझ में नहीं आया कि मुझे अब इस जगह पे क्या करना चाहिए और मैं इस जगह से कैसी अपनी एक नई जिंदगी शुरुआत करूं। तो इसलिए हम लोगों ने इनफैक्ट जो ये ऑपरेशन का नाम भी दिया था, ये ऑपरेशन नवजीवन दिया कि नई जिंदगी की शुरुआत 25 लोग आकर के किए हैं, और वो लोग सब लोग फिर आकर के मुख्य धारा में भी जुड़ गए हैं और सब लोग वेल सेटल्ड हो जाएंगे कुछ दिनों में, आने वाले समय में।
1: जी जी, दिवाकर कुमार जी, इस नक्सली मूवमेंट को फंड करने के लिए उन लोगों ने एक उपाय किया।

0: था अफीम की खेती, इन्होंने झारखंड में बहुत खेती
1: बड़ा लंबा चौड़ा नेटवर्क अभी भी है।
0: आप तो क्षेत्रों में घूमे हैं, इसके बारे आपसे जानना चाहूंगी।
1: देखिए, नक्सलियों के पास कई ऐसे हथियार थे जो उनके आर्थिक तंत्र को मजबूत करते थे
0: जी।
1: उसमें से जैसा कि आपने बोला, एक तस्करी उनका एक मेन काम रह गया। दूसरा, जैसा कि साकेत जी बता रहे थे, लोगों को छद मतलब झूठा सहारा इनका एक एजेंडा हो गया। जैसा हमने बोले कि नक्सली जो थे वो अपनी मुख्य धारा से भटक गए, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, उनके जो आइडियोलॉजी थे, उससे वो भटक गए। उसमें उन्होंने झूठ का सहारा लिया, गलत चीजों का लगातार सहारा लिया गया। वही चीज लगातार इन्होंने अपने नेटवर्क को बढ़ाने में भी उसी का इस्तेमाल किया। लोगों को दिखाया कि भाई कैसे ग्रामीणों के बीच उन्होंने अफीम की खेती की शुरुआत की, लोगों को प्रलोभन दिया कि आप खेती करो, आपके मार्केटिंग हम कर देंगे। तो इस तरह की चीजें उन्होंने वहां पर नेटवर्क तैयार किया। क्योंकि झारखंड एक तरीके से जो डेमोग्राफी के हिसाब से भी आप झारखंड को देखें तो वो एक विषम परिस्थिति वाला स्टेट है। वहां पे अभी भी कई ऐसे कोने हैं जो पुलिस प्रशासन के लिए पहुंचना वहां पे थोड़ी सी दुश्वारियां वाली काम होती है। पुलिस प्रशासन को बहुत लंबे लंबे कैंपेन करने पड़ते हैं। तो आर्थिक तंत्र को मजबूती का एक सबसे बड़ा काम सहारा यहां से मिला। दूसरा, कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे आप झारखंड का एक समय 24 में से 18 जिले घोर नक्सल की कैटेगरी में आने लगे थे। तो उसमें राजधानी जो आप रांची है वो भी नक्सल इफेक्टेड एरिया हुआ करता, आप सोच सकते हैं तो कितना बड़ा उनका नेटवर्क रहा होगा। उस नेटवर्क के जरिए से लातेहार के जंगल है, या आप सारंडा चले जाए, गढ़वा चले जाए, चायवासा चले जाए, इन तमाम जगहों पर जिस तरीके से इन्होंने नेटवर्क तैयार किया उसमें लेवी इनका एक बड़ा हथियार हो गया। कोई भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं तो वहां पर लेवी वसूली इनका एक आम काम था। तो ये इनके आर्थिक तंत्र का एक बड़ा एजेंडा था। उसके जरिए ये अपने जो इनके अफीम के खेती थे या जो दो भी दूसरे तरह के गलत काम, वो लोगों से जो लेवी वसूली का काम करते थे, कोई भी डेवलपमेंट का काम होता था तो उनमें इनके फिक्स होते थे। क्योंकि अब नक्सली जो विचारधारा है वो देश में पस्त हुई है और उसमें जो कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा है, जैसे कि सरकार ने डेवलपमेंट की ऐसी नीतियां लेकर आए जिसके जरिए कहा जाता था कि जो पूर्वी भारत का इलाके की अगर हम बात करें जिसमें बंगाल आता है, झारखंड आता है, इन तमाम जगहों पर जहां विकास की किरण उस तरीके से नहीं पहुंची थी उन जगहों पर विकास की किरण।
0: नक्सलियों ने भी वैसे ही जगहों में अपना गढ़ बनाया था जहां,
1: क्योंकि वहां पे असंतोष की भावना थी लोगों में, लोगों में लगा कि उसको कैच करना बहुत आसान है और जहां पे सरकार की नहीं पहुंचती वहां पे उन्होंने अपनी पहुंच बना ली। तो जो कहते थे कि लाल गलियारा जो हो गया था वो उसी वजह से हावी हुआ था क्योंकि वहां पे विकास की किरण नहीं पहुंची। लेकिन वो बदलाव देश में, अगर हम जैसे पिछले 12 वर्षों की ही बात करें तो 12 वर्षों में एक तरीके से फोर्स की तरह इस पर काम किया गया कि कैसे नक्सलिज्म को खत्म किया जाए। और देश के वैसे इलाके, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हो, पूर्वी भारत के इलाके हो, जहां पर विकास जिस रफ्तार से होनी चाहिए थे वहां पर नहीं हुई है, तो वहां पर विकास को एक मेन स्ट्रीम में लाया गया। तो उसका एक इंपैक्ट हुआ कि लोगों में विश्वास जगा। दूसरा, एक और लगातार ऑपरेशन चलाए गए। तीसरी बात, लोगों में जो विश्वास बहाली हुई उसके साथ साथ ये भी किया गया कि जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर कैसे लोगों को मोबिलाइज किया जाए कि भाई आपके लिए सरकार काम करती है, आपके लिए सीआरपीएफ के जवान काम करते हैं, आपके लिए जैप के जवान काम करते हैं, तो आप उनको अपना सहयोगी और साथी माने और उसके साथ आप जुड़कर काम करें। तो लोगों में जो विश्वास जगा तो वो मेन स्ट्रीम में आने लगे। अब जैसे आत्मसमर्पण नीति की बात साकेत जी करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रलोभन दिए गए लोगों को और उसका फायदा लोगों को मिल रहा है। जो बड़े बड़े नक्सली थे, जैसे अब कोई कहा जाता है कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली है, 50 लाख का इनामी नक्सली, तो उस कैटेगरी के हिसाब से आत्मसमर्पण नीति में उनको फायदे दिए गए।
0: जैसे उनके
1: उनके परिवार के लोगों को, बच्चे को पढ़ने की मुफ्त शिक्षा की बात हो, उनके लिए घर बना के सरकार देगी, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उनके लिए तत्काल अगर कोई, जैसे कि इनको लगता है कि भाई नक्सलिज्म से ही मेरा पेट चल रहा है, तो भाई आपको नक्सलिज्म आप छोड़िए, आप मेन स्ट्रीम में आइए, आपको तत्काल मदद देते हैं, उसके बाद उनके परिवार का भार। तो ये तमाम ऐसे कदम उठाए गए जिसके जरिए हम कह सकते हैं कि देश में एक माहौल बना और नक्सली मुख्य धारा में लौट रहे हैं। और आज के डेट में हम कह सकते हैं कि छिटपुट लोगों को छोड़ दिया जाए तो देश एक तरीके से नक्सल मुक्त है।
0: जी जी साकेत जी, हमने कई बार अखबारों में भी पढ़ा कि कुछ नक्सली गांवों को छोड़कर शहरों में, कस्बों में आकर बसे रहे और फिर उनको पकड़ा गया। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, शहरों में उनको ढूंढना पकड़ना है, वो कितना खतरनाक। और
2: जैसे मान लीजिए ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन में जो हथियार लेकर घूम रहा था
0: जी,
2: अब उसके पास मजबूरी हो गई कि हथियार लेकर साथ नहीं चल सकते हैं, तो हथियार छोड़ करके, हथियार को कहीं गड्ढे में डाल करके, कहीं छिपा करके, और उसी विचारधारा को जिंदा रखने के लिए ही भाग करके वहां से आ गए शहर में, एक तरह से एक मौका देख करके कुछ दिनों तक मुझे बच करके शहर में रहना है। ये तो ये डिफरेंट हो गया, जो हथियार छोड़ करके डर से, ऑपरेशन के डर से या किसी कारण से अब नक्सलिज्म की लड़ाई को लंबा खींचने के लिए शहर में आके बस गया, तो वो हम लोग फॉलो करते करते धीरे धीरे एक आदमी करके उसको पकड़ करके जो भी कानून के तहत जो भी कार्रवाई उसको हम लोग करते गए।
0: जी आनंद कुमार जी, ये जो सरकार की सरेंडर पॉलिसी है उसने एक बड़ी भूमिका निभाई है नक्सलवाद को खत्म करने की, इस पॉलिसी के बारे में कि वो पॉलिसी क्या है, लोग कैसे इसका लाभ उठा रहे हैं, इस पर मैं आपसे जानना चाहूंगी।
3: सबसे पहले तो इसको हम लोगों ने इस पॉलिसी के बारे में अगर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है, इसको हम सरेंडर पॉलिसी नहीं कह करके मुख्य धारा से जोड़ने की, आत्मसमर्पण नहीं कह के मुख्य धारा से जोड़ने की पॉलिसी के रूप में इसको हम लोगों ने प्रोजेक्ट करने की
0: कोशिश
3: की। आत्मसमर्पण कहीं ना कहीं एक स्वाभिमान से जुड़ा लोग ये करते हैं कि मैं कैसे आत्मसमर्पण कर दूं, कहीं ना कहीं रहता है, तो उस प्रतिक्रिया से बचने के लिए और सो देट वो उसको डोमिनेट ना करे, तो हमने आत्मसमर्पण के बजाय मुख्य धारा से जुड़ने की उसको के बारे में बताया। और इसमें जितने भी इनामी नक्सली हैं चाहे गैर इनामी नक्सली हैं, बहुत सारे ऐसे नक्सली हैं जो हमारे स्तर पे तो पहचान में आ चुके हैं लेकिन किसी के इसमें नाम नहीं है, तो ऐसे इस तरह के लोग भी जो नक्सली हैं उनको भी प्रमोट करने के लिए इस पर हम लोगों ने काम किया है।
0: जी।
3: और इसमें नक्सलियों को प्रमोट करने के लिए उन स्थानीय स्तर पर परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा और बलों के द्वारा जो भी सूचना तंत्र हमारा है उसके द्वारा सूचना पहुंचाकर नक्सलियों को प्रोत्साहित किया गया कि आप मुख्य धारा से जुड़ने की ये निर्णय लें। और इसमें सरकार के द्वारा जो सबसे बड़ी प्रोत्साहन ये है कि जो इनामी नक्सली है उसके ऊपर जितना इनाम है वो इनाम की राशि उसको दे दी जाती है, खुद ही दे दीजिए, तो अगर वो मुख्य धारा से जुड़ता है तो वो इनाम की राशि उसके साथ ही साथ उसके लिए स्किल डेवलपमेंट, उसके लिए जमीन की देने की राशि और केसेस है उसके, तो जो झारखंड में अभी ओपन जेल के साथ में वहाँ परिवार के साथ एक आम नागरिक की तरह वो रह सकता है, मोबाइल अपना जो सामान्य जिंदगी है विदिन ओपन जेल के पेरिफेरी में वो रह सकता है, तो इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं सरकार के द्वारा और जिसको हम लोगों ने नक्सलियों तक पहुंचाने की कोशिश की है सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग मुख्य धारा से जुड़ सके।
0: जी, ऐसी कोई घटना या कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस नीति का फायदा उठाया हो और अब समाज में बहुत अच्छा योगदान दे रहा हो?
2: वैसे एकाएक नाम पूछने से थोड़ा मुश्किल है लेकिन एक दो नहीं, वैसे सैकड़ों लोग हैं जो कि मुख्य धारा से एक बार आत्मसमर्पण किए, आत्मसमर्पण करने के बाद या जैसा पहले एक है कि हथियार छोड़ने की बात, पहले हथियार छोड़े फिर धीरे धीरे करके मुख्य धारा में जुड़ते गए और अभी आराम से घर में खेती कर रहे हैं। कुछ वैसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके बच्चे अच्छा काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़े, कुछ लोगों का मैंने भी कोशिश करके किसी टाउन का जो बेस्ट स्कूल है उसमें एडमिशन करवाने का कोशिश करके एडमिशन करवाया, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि जुड़े हुए लेकिन नाम लेना उचित नहीं होगा। कई लोग ये भी ऐसा भी किए कि यहाँ पर लोग उनको जानते हैं अपने गांव से हट करके किसी दूसरे शहर में बस करके लोग
0: नई पहचान के साथ,
2: जिनसे आप नई पहचान के साथ भी कुछ लोग शुरू कर दे, क्योंकि क्या होता है कि आप एक बार वायलेंस में जुड़े हुए हैं तो नेचुरली आपके जहाँ पर आप जिस जगह पे आप वायलेंस किए वहाँ पर आपके दुश्मन भी बन जाते हैं, तो अपनी उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके ऐसा ना हो कि एक बार अगर जुड़ गए हैं मुख्य धारा में तो मुख्य धारा में जुड़ के लंबे समय तक रहें, ऐसा ना कि उनके दुश्मन, वो भी एक मेजर रिस्क हो जाए। कई लोग अपना अपनी पहचान छिपा करके अब बदल करके भी लोग रहे हैं।
1: और इसमें मैं चूंकि साकेत जी ने उसका नाम नहीं बताया, मैं एक बता भी देता हूँ झारखंड, क्योंकि वो बहुत पब्लिसाइज भी हुआ और लगातार प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात के एपिसोड में उसका चर्चा भी किया। गुमला के एक नक्सली थे साहू, उन्होंने लगभग 10 वर्षों तक वो नक्सली की भूमिका में रहे और कई उनपे वो थे जो आपने बोला ना कि ओपन जेल में लाकर लोगों को रखा जाता है ताकि वो एक नॉर्मल बिहेवियर की तरह फैमिली के साथ फिर वो आके जीवन यापन कर सके। उसके बाद उन्होंने मछली क्रांति, पूरे गुमला में उसने मछली क्रांति किया है और आज वो देश में उनका नाम होता है। तो ऐसा नहीं है कि भटकाव होने के बाद अगर उनको मौका मिलता है और सरकार की जो प्रोत्साहन नीति होती है उसमें अगर वो जुड़ते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट, सीधा एग्जाम्पल वो साहू जी हैं जिन्होंने पूरे इलाके में, सिर्फ वो अपना उन्नयन उनका नहीं हुआ, उनके साथ आज नहीं तो हाँ कम से कम 500 किसान जुड़े हुए हैं और उसके जरिए वो जो कह सकते नीली क्रांति की पटकथा पूरे गुमला में वो लिख रहे हैं। तो ऐसे कई लोग एग्जाम्पल
3: है। और ये है कि जो इस तरह के जैसे लोग हैं वो जैसे सक्रिय नक्सली हैं वो कई बार हमारे समझाने पे हो सकता है वो नहीं समझे, लेकिन जब ऐसे लोगों के बारे में उनके पास सूचना जाती है कि हाँ वो तो मुख्य धारा में जुड़ करके ऐसे अच्छे काम कर रहे हैं, तो तब उनको कहीं ना कहीं एक छोटी प्रेरणा मिलती है कि
2: फोर्स उनके लिए होता है। परिवार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, परिवार के भी लोग समझाते हैं, तो कई बार नक्सली जो होते हैं मुख्य धारा में जुड़ने की कोशिश कर लेते हैं।
0: जी जी, और जब ऐसे उदाहरण आते हैं तो उनको तब ये एक विश्वास होता है कि समाज उनको एक्सेप्ट करेगा।
2: एक और मैं इसे बोलना चाहूंगा कि ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो कि मुख्य धारा में जुड़ने के बाद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स मिलना मुश्किल है जो कि एक बार मुख्य धारा में जुड़ गए तो वापस नक्सली बने हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, एग्जाम्पल्स आपको नहीं मिलेंगे अगर आप खोजने की कोशिश की जाए कि फिर दोबारा कोई नक्सली बना कि नहीं, तो बहुत मुश्किल है वैसा खोजना।
0: और ये मतलब सक्सेस का माइलस्टोन है कि वापस नहीं जा रहे,
2: वापस नहीं जा रहे हैं।
1: इसके पीछे रीजन मुझे लगता है पूनम जी यही होगा कि एक तो उन्होंने दूसरी जो भटकती हुई विचारधारा थी उसमें भी जब वो गए नक्सली, जब उस लाइफ को अभी कंपैरिजन उन्होंने सामान्य लाइफ से किया, तो उसके बाद आने के बाद जो उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है शायद वो प्रोटेक्शन वहां पर नहीं था, इसीलिए शायद कोई लौट के नहीं जा रहा क्या साकेत जी।
2: और भी बहुत सारे उसके कारण हो सकते हैं
1: जी।
2: एक बार परिवार के साथ रहना शुरू हो गया, दूसरी बात की अगर नक्सलिज्म जिंदा भी रहता तो शायद वो नक्सल भी कि भाई एक बार आ गया तो फिर उस पर कितना भरोसा किया जाए। तीसरा जो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक एक हथियार का अकाउंटिंग कर रहे हैं, हथियार ना छोड़े, हथियार उनके पास नहीं छोड़ रहना चाहिए, कहीं भी अगर कहीं छिपा करके रखा गया तो वो हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं समझा करके,
1: क्योंकि एक चुनौती तो ये निश्चित तौर पर रहेगी ना।
2: जैसा मैंने बताया कि सिर्फ पुलिस और अर्धसैनिक बलों के दम पे काम नहीं हुआ, पब्लिक ने इसको रिजेक्ट किया है, तो इसलिए पब्लिक चूंकि रिजेक्ट कर दिया तो फिर दोबारा नक्सलिज्म वापस रिवाइव होने के चांसेस बहुत ही कम है। वैसे जगहों से को हम लोग अभी तुरंत खाली नहीं करें जहां हम लोग बने हुए हैं कुछ सालों के लिए, जैसे कि नॉर्मेलसी क्लोज टू नॉर्मेलसी बिल्कुल आ जाए तब हम लोग जगहों को खाली करें। जैसे सारंडा से हम लोग अभी तुरंत कैंप्स, भले ही नक्सल नहीं है लेकिन वहां से हम लोग तुरंत कैंप्स नहीं हटाने की प्लान है। जैसे बूढ़ा पहाड़ बता रहे थे तो बूढ़ा पहाड़ में अभी सीआरपीएफ का कैंप है, तो हम लोग वो सब कैंप्स को रखे हुए हैं जैसे कि कोई और एक कोई दूसरा तरह का पार्टी उसमें घुसने की कोशिश
0: ना करें,
2: जो कि गलत फिर से लोगों को गलत रास्ता दिखाने की कोशिश करें। माओइस्ट खत्म हो गया, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल को भी हम लोग ऐसे एरियाज में जाने नहीं देंगे।
0: जी जी, और मुझे लगता है ये जो डिजिटल क्रांति हुई है हमारे देश में यूपीआई,
2: उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट,
0: उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो लेवी का जो मामला था, पेट्रोल पंप लूट की घटनाएं आम थी, उगा ही आम थी, लेकिन अब लगता है कि ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर रहा है इस तरह के क्राइम को कर्व करने में। इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा।
2: जैसा आपने बताया, अब एक बार अगर कोई, आप वैसे भी सोचिए घर में
0: जी
2: छोटे से बच्चे से आप मोबाइल ले नहीं सकते हैं
0: जी।
2: वापस अगर उसको मोबाइल की आदत लग गई है तो बहुत ही मुश्किल काम है उसे मोबाइल को दूर करना
0: जी।
2: तो ये सेम चीज है, जैसे मेरे सामने मोबाइल रखा हुआ, मेरे दिमाग में अभी भी चल रहा है कि कोई मैसेज मिस तो नहीं हो रहा है, कोई कॉल तो मिस नहीं हो रहा है
0: जी।
2: तो अब मोबाइल छूटना पॉसिबल नहीं है, और ये सिर्फ शहरों में नहीं गाँव में भी। तो इस मोबाइल के साथ अगर कोई भी क्राइम करेगा तो क्राइम हम लोग आसानी से ट्रैक होना ही है, और मोबाइल छोड़ नहीं सकते हैं। तो लोग भी इसी हिसाब से मोबाइल को पॉजिटिव यूज करने के रूप में लगे रहते हैं, ना कि नेगेटिव, गलत भी करने का कोशिश करते हैं। कई बार लेवी का डिमांड भी मोबाइल से आता है, उसी से उनको भी पता है, उससे बचने का भी कोशिश करते हैं। पुलिस भी कोशिश करते हैं कि क्रिमिनल से दो कदम आगे रह जाएं। डिजिटल क्रांति से सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अवेयरनेस लोगों के बीच में, नॉलेज आपके सारे, नॉलेज आपके सारा कुछ मोबाइल में अवेलेबल है, और वो नॉलेज जरूरी नहीं है कि हमारे पास ही रहे। आप जो अगर कुछ करना चाहता है तो गांव में कहीं भी बैठ करके नॉलेज हासिल कर सकता है, जानकारी हासिल कर सकता है, तो इसलिए इसका निश्चित रूप से फायदा हुआ है
0: जी। तो आनंद कुमार जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे लोगों को, खास करके हमारे युवाओं को, कि कैसे मुख्य धारा में रहें और आगे बढ़ें?
3: मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो समय है ये अपॉर्चुनिटीज से भरे पड़े हैं
0: जी।
3: बस अपने युवा साथियों को ये करना है कि अपने आप को इस लायक बनाएं और इन अपॉर्चुनिटी को हम ग्रहण कर सकें। बिना जंगलों में भटके हुए, बिना कानून को तोड़े हुए, आपको मुख्य धारा में मेंटेन करते हुए एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं।
0: जी जी, साकेत जी, आपका संदेश?
2: अब तो समय है ही नहीं कि हथियारबंद आंदोलन किया जाए। आपको जो भी डिमांड है, ग्रीवांसेज है, उसको आप निश्चित रूप से बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जिस पर आप रख सकते हैं रखें, अपनी बात को रखें जरूर। हम लोग अपने जूनियर्स को ये बोलते हैं अपनी बात को रखें, और हम लोग सब लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि उस बात को सुना जाए और जो भी उसको सही रास्ता दिखाया जाए, और जो भी उस मदद हो सके जिस तरह से भी कानून के भीतर रहते हुए उसको हम लोग मदद करें। कुछ लोग जो बचे हुए हैं उनसे मैं जरूर आग्रह करना चाहूंगा कि जैसे बाकी लोग आकर के मुख्य धारा में जुड़ गए, आप भी आइए मुख्य धारा में जुड़िए। अरे बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा।
0: दिवाकर जी, आप क्या संदेश देंगे?
1: देखिए, निश्चित तौर पर देश में अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी जिसकी बात आप कर रहे हैं, अवसरों की कमी नहीं है, और वैसे में युवाओं के सामने हर तरह के प्लेटफॉर्म है। अगर आज हम कहें कि देश में बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है, सड़क कनेक्टिविटी बढ़ रही है, रेल कनेक्टिविटी बढ़ रही है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, हर जगह रोजगार के अवसर है, तो उस योजना का युवा फायदा उठाए, उसके जरिए उनका विकास हो सकता है। तो नेक्स्ट जनरेशन अपॉर्चुनिटी का अवसर उठाए और नक्सलिज्म देश से खत्म हुआ है तो निश्चित तौर पर लाल आतंक हमारे नक्शे से खत्म हो जाएगा,
0: गायब हो जाएगा जी। और इसके साथ ही हम आज की परिचर्चा यहाँ समाप्त करना चाहेंगे। आज की परिचर्चा का विषय था झारखंड में नक्सल उन्मूलन, और हमारे साथ इस परिचर्चा में भाग ले रहे थे श्री साकेत कुमार सिंह, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक झारखंड सेक्टर सीआरपीएफ रांची, श्री आनंद कुमार जरई कमांडेंट अभियान झारखंड सेक्टर सीआरपीएफ, और श्री दिवाकर कुमार सहायक निदेशक समाचार दूरदर्शन रांची। आप तीनों हमारे स्टूडियो में आए, आपने नक्सल के बारे में, इसके शुरुआत से लेकर उन्मूलन और इसके खात्मे के लिए आप लोगों ने जो प्रयास किया, उसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।
1: आप धन्यवाद।
4: अभी आप सुन रहे थे केंद्र की एनडीए सरकार की 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष परिचर्चा। आज की परिचर्चा का विषय था झारखंड में नक्सल उन्मूलन। परिचर्चा में भाग ले रहे थे श्री साकेत कुमार सिंह, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक सीआरपीएफ झारखंड सेक्टर, श्री आनंद कुमार जरई कमांडेड अभियान झारखंड सेक्टर, और श्री दिवाकर कुमार सहायक निदेशक समाचार दूरदर्शन रांची। परिचर्चा का संचालन कर रही थी पूनम क्रिकेटा। हम आकाशवाणी के राज्य केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड विधानसभा में राज्यसभा की दो सीटों के लिए चल रही मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सदन के सभी 81 विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। मतदान समाप्त होने के बाद अब सबकी नजरें शाम 5 बजे शुरू होने वाली मतगणना पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि शाम 7 बजे तक चुनाव के अंतिम नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। मतदान समाप्त होने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने भरोसा जताया कि निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को जरूरी आंकड़ों से अधिक मत मिलेंगे और वे भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। इधर निवर्तमान सांसद दीपक प्रकाश ने भी परिमल नाथवानी की जीत का दावा किया है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और विधायक स्टीफन मरांडी ने साफ कहा है कि इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों की जीत में कोई संदेह नहीं है और उनका गठबंधन नतीजों के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है। झारखंड हाईकोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्मित पुलों के ढहने के मामले में सचिव द्वारा शपथ पत्र दाखिल नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए विस्तृत ब्यौरा तलब किया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। रांची से बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए दो नई ट्रेनें चलाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसका आधिकारिक प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। बेंगलुरु में चल रहे रेलवे के विकास कार्य पूरे होते ही अगले महीने इन नई ट्रेनों के परिचालन की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग ने रांची समेत 17 जिलों में आज और कल भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद और देवघर जैसे जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की प्रबल आशंका है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विज्ञान जगत। चर्चा होगी प्लास्टिक बोतल के उपयोग से करें परहेज। साथ ही आप भेंट वार्ता सुन पाएंगी वर्तमान जीवन शैली में योग के फायदे। भेंट वार्ताकार होंगी प्रियंका विश्वकर्मा। साथ ही बातें होंगी खोज और आविष्कार पे परमाणु रिएक्टर पर। साथ ही और कई सारी जानकारियां भी होंगी। वाचन एवं सहयोग बसंत कुमार का है, प्रस्तुति प्रभु सरन की।
1: कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध

0: भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार, विज्ञान जगत कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित है हम। मैं हूं बसंत और आप सभी का स्वागत है विज्ञान जगत कार्यक्रम में। तो हर बार की तरह आज भी हम ढेर सारी नई रोचक जानकारी और तथ्यों को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे प्लास्टिक बोतल के उपयोग से हमें क्यों परहेज करना चाहिए इसके बारे में। इसके बाद बारी होगी भेंटवार्ता की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान जीवन शैली में योग के क्या फायदे हैं इसके बारे में। इसके बाद बारी होती है वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वैज्ञानिक रेने लेनिए के बारे में। और फिर इसके बाद बारी होगी खोज और आविष्कार की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं परमाणु रिएक्टर के बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करेंगे और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि प्लास्टिक के बोतल के उपयोग से हमें क्यों परहेज करना चाहिए इसके बारे में। आज के समय में प्लास्टिक की बोतलें हमारे जीवन में एक सामान्य सा हिस्सा बनकर ही नहीं, बल्कि वो एक विस्तृत रूप ले चुकी हैं और घर, कार्यालय, स्कूल, यात्रा करने से लेकर हम चाहे कहीं भी चले जाएं, प्लास्टिक की बोतल हमारे साथ हमेशा देखने को मिल ही जाती है। ये सुविधा के कारण इनका उपयोग हम सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन हमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि भविष्य में हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या इस प्लास्टिक की बोतल की वजह से उत्पन्न हो सकती है। प्लास्टिक बोतलों का अत्यधिक उपयोग न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कई प्रकार के खतरे उत्पन्न कर रहा है। प्लास्टिक अधिकांश बोतलें एक बार उपयोग के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन लोग इन्हें कई बार इस्तेमाल करते हैं। लंबे समय तक उपयोग करने या धूप और गर्मी के संपर्क में आने पर इन बोतलों से कुछ हानिकारक रासायनिक तत्व भी निकलते हैं। ऐसे पानी का सेवन करने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वैज्ञानिकों की अगर हम माने तो प्लास्टिक से निकलने वाले कुछ रसायन हार्मोन संबंधी समस्याएं, पाचन संबंधी परेशानियां और अन्य स्वास्थ्य जोखिम भी पैदा कर सकती है। पर्यावरण की दृष्टि से भी अगर हम बात करें तो प्लास्टिक की बोतल एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। प्लास्टिक आसानी से नष्ट भी नहीं होता, इसे पूरी तरह गलने में सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। फेंकी गई प्लास्टिक की बोतलें नदियों, तालाबों, समुद्र और जमीन को दूषित करने का काम कर रही है। कई बार पशु इन्हें भोजन समझकर निगल जाते हैं, जिनसे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। समुद्र में पहुंचने वाला प्लास्टिक छोटे छोटे कणों में बदलकर जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। इसके कारण खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मानव शरीर तक भी पहुंच रहा है। प्लास्टिक बोतलों के निर्माण में भी बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम और ऊर्जा का उपयोग होता है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों पर काफी दबाव बढ़ता जा रहा है और कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि देखी जा रही है, जो जलवायु परिवर्तन की समस्या को और गंभीर बनाने का काम कर रहा है। इसलिए प्लास्टिक बोतलों का कम उपयोग करना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अब सवाल ये है कि हम प्लास्टिक बोतलों का विकल्प क्या अपनाएं। इसके लिए हम स्टील, तांबे, कांच या फिर अन्य टिकाऊ सामग्री से बनी बोतलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बोतलें लंबी समय तक चलती हैं, सुरक्षित होती हैं और पर्यावरण के लिए भी बेहतर विकल्प बन सकती हैं। जब भी घर से बाहर जाएं, अपनी पानी की बोतल साथ लेकर जाएं, लेकिन ध्यान रखें कि वो बोतल प्लास्टिक की ना हो। इससे बार बार प्लास्टिक की बोतल खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हमें लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि लोग

0: ये सर्टिफाइड योगा कोच हैं भारतीय खेल प्राधिकरण से, और हम सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं प्रियंका जी।
1: नमस्कार।
0: अगर हम बात करें वर्तमान जीवन शैली में योग के फायदे के बारे में, तो आज हर एक व्यक्ति खुद को स्वस्थ रखने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। सुबह में उठ करके रनिंग करना, साइकिलिंग करना, या फिर वो तरह तरह के योग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक जानकारी की कहें कमी, तो लोगों को जानकारी की कमी है कि योगासन कितने प्रकार के हैं और कैसे करना चाहिए। तो इन सभी चीजों को लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो आपसे प्रश्न है वो यही है कि योग और सामान्य व्यायाम में क्या अंतर है, इसके बारे में बताएं।
1: सबसे पहले योग की बात करें तो अगर हम बहुत सदियों पहले जाएं तो विश्व गुरु भारत एक योग विद्या प्रदान करता है हमें, जो काफी समृद्धशाली विद्या है। इसमें इसके अभ्यास से हम अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच एक समन्वय बैठा के रखते हैं, जो आज की इस स्ट्रेसफुल लाइफ में हमें काफी हद तक मदद कर सकता है कि हम अपने जीवन शैली को कितने स्मूथली आगे बढ़ा सके। कोई भी छोटा स्ट्रेस हो या बड़ा स्ट्रेस हो, या घर में किसी भी मेंबर का, या बाहर ऑफिस जाते ऑफिस वर्कर्स का, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन का, या कोई बीमार किसी अवस्था में इंसान है, तो वो अपने स्थिति से कैसे अच्छे से उभर सकता है और अपने सामान्य स्थिति को इतनी बेहतरीन ढंग से बढ़ा सकता है अपने लाइफ में। इसलिए योग आजकल के लाइफ स्टाइल में बहुत हद तक मदद करता है।
0: तो हम सामान्य व्यायाम में और इसमें अगर फर्क करने की बात करें तो दोनों में क्या अंतर?
1: जब सामान्य व्यायाम की हम बात करें तो सामान्य व्यायाम में हम कोई भी बॉडी मूवमेंट या अलाइनमेंट देखते हैं और उसमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं होता है। हमें स्वेटिंग हो जाती है और हम सोचते हैं कि हाँ हमने व्यायाम कर लिया है। बहुत सारे इक्विपमेंट्स की नीड होती है, या फिर हम जिम को भी ऐड करें तो उसमें भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स की नीड होती है। और उसके साथ ही जब हम योग की बात करें तो जब भी हम योग में किसी अलाइनमेंट का या फिजिकल एट्रीब्यूट्स, जैसे स्टेमिना हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हुआ, कोऑर्डिनेशन हुआ, स्ट्रेंथ हुआ, एंड्योरेंस हुआ, तो इन सब के साथ हम जो भी बॉडी मूवमेंट्स करते हैं या फिर जो भी योगासन करते हैं उसमें हम अवेयरनेस लेके आते हैं, तो वो जो अवेयरनेस है वो हमारा मैक्सिमम किसी भी प्रकार के इंजरी को भी कम करता है और हमें बेनिफिट भी ज्यादा अच्छा देता है।
0: यानी दोनों में काफी अंतर है।
1: काफी अंतर।
0: अगर आप सामान्य प्रकार से व्यायाम कर रहे हैं तो आप उसमें थक जाते हैं, पसीना आता है, आप समझते हैं कि हम ठीक हो चुके, लेकिन ऐसा नहीं है। आप योग करते हैं उसके अलग तरीके हैं, अलग आसन है, अलग
1: अलग आसन है। और योग सिर्फ आसन नहीं है, एक्चुअली ये 8 प्रकार के अलग अलग इवेंट्स को जोड़ता है, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि। तो इसमें जो आसन है इसमें हम बहुत सारे फिजिकल मूवमेंट्स करते हैं,
0: यानी जो पूरा शरीर है उसमें अलग अलग चीजों को ठीक करने के लिए अलग अलग आसन है, अलग अलग क्रियाएं हैं।
1: सबसे पहले क्लिंजिंग क्रिया है, फिर हमारे नियम है जो हमें सामाजिक अर्थव्यवस्था से या सामाजिक लोगों से जोड़ती है, उसके बाद आसन है जिसमें हम अपने शरीर शारीरिक किसी भी प्रकार की मूवमेंट्स को या फिर बेंडिंग को, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ट्विस्टिंग, हैंड बैलेंस, लेग बैलेंस जैसे कुछ आसन है उनको करते हैं, जिसमें सूर्य नमस्कार वगैरह भी आते हैं। उसके बाद प्राणायाम है, क्योंकि सटल योग जो है सूक्ष्मता की ओर लेकर जाता है, तो प्राणायाम हमें और सूक्ष्म बनाता है, हमारे प्राण शक्ति को और ज्यादा उजागर करता है, जिसमें इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी को बैलेंस करते हैं ताकि हम कोई भी वर्क करें तो उसकी इफिशियंसी भी बढ़े और बेनिफिट्स भी बढ़े। और समन्वयता में अगर हम कोई काम करें तो उसका अचीवमेंट भी काफी हाई होता है।
0: आपने इतनी बारीकी से समझाया है कि हमारे जितने भी सुनने वाले हैं श्रोता, उनको काफी अच्छा भी लग रहा होगा और ये चीजें उनको समझ में आ रही होंगी। लेकिन अगर हम आज के वर्तमान जीवन शैली में योग की बात करें तो ये लोगों को किस तरीके से फायदा पहुंचा सकता है, अगर लोग अपने जीवन शैली में इसको शामिल करते हैं और योग करना शुरू करते हैं तो उनको क्या क्या फायदा हो सकता है, और अगर नहीं करते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है?
1: ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले मैं चाइल्डहुड से बात करना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैं इस बार के थीम की बात करूं तो स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग लिया गया है।
0: अच्छा।
1: तो हम जब चाइल्डहुड से बात करते हैं तो चाइल्डहुड के बाद एडल्ट्स, उसके बाद एक अवस्था आता है वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था वो स्थिति है जब हम लोगों में देखते हैं कि झुरियां आ रही हैं, ग्रे हेयर हो रहा है, बोन वीक हो रहा है, मसल्स लूज हो रहा है, एफिशिएंसी घट रहा है काम करने का, और फ्रीडम कहीं ना कहीं चला जाता है, हमेशा साथ किसी को होना नीड होता है। तो अगर हम शुरुआत चाइल्डहुड से लेकर एडल्ट से लेकर वृद्धावस्था तक देखे, इन सारी चीजों से दूर रहना चाहते हैं तो हमें योग अपने लाइफ में 100% जोड़ना चाहिए।
0: इससे काफी फायदे हैं।
1: काफी फायदे।

0: हैं, क्योंकि जितने सारे अभी मैंने चीजें बताई वो सारी चीजों से लोग दूर होना चाहते हैं। तो पहला तो एक फिटनेस देगा, सेकंड कि हमें अपने मन शरीर और आत्मा तीनों को जोड़ के रखता है, तो ये हमें इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल फिजिकल फिटनेस और अंदर से स्ट्रांग बनाता है।
1: जी
0: तो ये सारे जब हमें इतने अच्छे एफिशिएंट रहेंगे, तो चाहे किस भी फील्ड से आप रिलेट करते हैं, आप अपने वर्क में हाईएस्ट अचीवमेंट ही करेंगे, और वो भी लेस स्ट्रेस के साथ, क्योंकि आजकल छोटे बच्चों से लेके चाहे स्कूल गोइंग हो,
1: सभी
0: चाहे
1: के पास में
0: हाँ
1: मानसिक तनाव है।
0: मानसिक तनाव है, डिप्रेशन है, या छोटे छोटे बात पे वो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो जाते हैं। तो ये सभी चीजों को काम करने के लिए प्राणायाम और मेडिटेशन
1: जी
0: बहुत मदद करता है।
1: यानी कि योग करने से बहुत सारे फायदे हैं अगर आप नियमित योग करते हैं
0: नियमित
1: और सही योग करते हैं तब।
0: हाँ, एक अच्छे योगा ट्रेनर के अंदर आप अगर योग सीखते हैं, तो आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलता है
1: तो अगर
0: अपने
1: हम
0: आसपास।
1: रोगों की बात करें योग से
0: हाँ
1: ठीक होने की, तो कितने प्रकार के रोग हैं जो प्रमाणित हो चुके हैं कि योग से ठीक हो सकते हैं?
0: एक्चुअली योग जो है वो सपोर्टिव काम करता है, सपोर्टिव काम करता है। दैट मींस कि आपको आपके जो लाइफ स्टाइल में भोजन का तरीका है, या जो भी रोग हो चुके हैं उससे क्योर करने के लिए आप जो भी डॉक्टर से दिखा रहे हैं, उसके साथ अगर आप योग अपने लाइफ में जोड़ते हैं, तो उसका रिजल्ट्स बहुत अच्छा है। जैसे कि जो कुछ साइकोसोमेटिक डिजीज होते हैं, जैसे माइग्रेन हो गए या शुगर बीपी है, तो उनमें हम लोग कुछ योगासन, कुछ प्राणायाम और मेडिटेशन कराते हैं। जैसे अगर शुगर है तो योग मुद्रासन, मंडुकासन, और जितने फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास हैं, पादहस्तासन, अर्ध बैकवर्ड बेंडिंग है, अर्ध चक्रासन, कुछ ट्विस्टिंग है जैसे मत्स्येंद्रासन,
1: जी
0: वक्रासन, ये सब ऐड करते हैं। साथ में अगर सूर्य नमस्कार कर लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि वो 7 आसनों की सीरीज होती है,
1: अच्छा।
0: जिसमें 12 बारी हम लोग उस आसन को, फिर से कुछ आसनों को रिपीट करते हैं। तो उससे बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाता है, जॉइंट्स मूवमेंट भी होता है, और मेंटल स्टेबिलिटी आती है।
1: कहने का मतलब है कि अगर आपका शरीर ठीक रहेगा तो आपको बीमारियां होंगी ही
0: होंगी
1: नहीं,
0: ही नहीं,
1: इसलिए योग करना फायदेमंद है।
0: फायदेमंद है
1: शारीरिक, मानसिक और आप सामाजिक तौर पर भी
0: सामाजिक तौर पे
1: जुड़े
0: भी।
1: रहेंगे लोगों से। अब हम लोग बात करते हैं आज के युग की। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके हाथ में मोबाइल नहीं है, और
0: हाँ,
1: ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पर लोग मोबाइल और लैपटॉप
0: लैपटॉप
1: कंप्यूटर
0: नहीं।
1: यूज ना कर रहे
0: हाँ
1: हों, या फिर
0: सही
1: कोई ऐसा दफ्तर ना होगा जहाँ पे लोग घंटों बैठकर ऑफिस में काम कर रहे हों। तो घंटों बैठकर कंप्यूटर में काम करने वाले लोग और जो लगातार मोबाइल चला रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ शारीरिक समस्याएं, मानसिक तनाव हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए या फिर उससे बाहर निकलने के लिए योग के ऐसे कौन से आसन हैं जो अगर लोग करें तो उनको फायदा हो सकता है और इन सभी चीज़ों से उनको राहत मिल सकती है?
0: तो सबसे पहले मोबाइल की दुनिया की बात करें, तो मैक्सिमम लोगों का कंधा आगे या सिर आगे झुका रहता है। कंप्यूटर पे काम करने वाले लोगों की बात करें, तो कमर से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या उन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने
1: जी
0: लगती है, या हेडेक, माइग्रेन जैसे प्रॉब्लम्स वो रोज़मर्रा की लाइफ में देखते हैं। तो आप चाहे मोबाइल पे कोई वर्क कर रहे हो या कंप्यूटर पे कोई वर्क कर रहे हो, आप अपना शेड्यूल ऐसा बनाइए कि आप अगर आधे घंटे काम करते हैं, तो बीच में 5 मिनट या 10 मिनट निकालिए, अपने टेबल से उठिए, ताड़ासन, तीजक ताड़ासन, कटि चक्रासन, इसमें हमने स्पाइन का कंप्लीट एक्सरसाइज किया है। जैसे ताड़ासन किया तो ये इलोंगेट हुआ, तीजक ताड़ासन किया तो साइड्स का पूरा एक्सरसाइज हुआ है, और कटि चक्रासन किया तो ट्विस्टिंग भी हुआ है। तो जितना स्टिफनेस रहता है वो रिलीज होता है हमारे स्पाइन में, चाहे लंबर रीजन में हो, थोरैक्सिक रीजन में हो, या फिर हमारा सर्वाइकल रीजन में हो। तो जितना स्ट्रेस है वो रिलीज हो रहा है, साथ में कुछ फॉरवर्ड बेंडिंग जैसे पादहस्तासन किया, हस्तोत्तानासन किया, इसमें करने में आपको ना स्पेस की जरूरत है ज़्यादा, ना कोई बहुत इक्विपमेंट की जरूरत है। आप जहाँ बैठे हैं उसके जस्ट बगल में खड़े होना है, और ये कुछ आसना है जो करना है। साथ में जब हम भोजन कर रहे हैं, तो उसके पहले 5 मिनट निकालना है अपने लिए। 5 मिनट बैठकर आप नाड़ी शोधन टेक्निक टू ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कर सकते हैं।
1: आजकल लोग घंटों ऑफिस में बैठ करके काम करते हैं और ऐसी दिनचर्या हो गई है कि लोगों के शरीर का जो बनावट है वो भी बिगड़
0: स्ट्रक्चर
1: रहा
0: भी
1: है,
0: कर
1: और
0: रहा है,
1: कहीं ना कहीं उनमें मोटापा बढ़ने का जो
0: ओबेसिटी।
1: बीमारी है वो बढ़ रही है। तो अगर किसी प्रकार से किसी को इस तरह की समस्या है तो योग करने के फायदे हो सकते हैं क्या?
0: 100% हो सकते हैं, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि ये शरीर मन और आत्मा तीनों को जोड़ के करता है। तो जिस चीज में भी, जैसे हम कोई वर्क करते हैं तो जब तक हम उसमें दिमाग नहीं लगाते वो अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, वैसे ही अगर हम आसन अपने लिए 24 घंटे में अगर 1 घंटे भी नहीं निकाल रहे हैं तो आप कैसी लाइफ जी रहे हैं। तो अगर आप 6 घंटे या 9 घंटे काम करते हैं तो उसमें 1 घंटे तो एटलीस्ट अपने नहीं निकाल सकते, और 1 घंटे लगातार निकालना भी नहीं है। आप 5 मिनट या 10 मिनट बैठ के प्राणायाम कर ले रहे हैं, रात में अगर अपने बेड पे जाते हैं तो 15 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ भी नहीं आता है तो बैठकर आंख बंद करके जो पूरी जो दिनचर्या रही है
1: ध्यान
0: उसको,
1: लगा सकते
0: हाँ,
1: हैं।
0: उसको रिवाइंड कर सकते हैं, वहीं आपको बहुत सारी क्लैरिटी भी मिलती है।
1: अब हमारा आखिरी प्रश्न आपसे है कि विश्व योग दिवस है 21 जून को, और योग दिवस पर आप हमारे जितने भी सुनने वाले श्रोता हैं जो आपको सुन रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: अभी तो मैं यही सलाह देना चाहूंगी कि अब तो योग को एज अ स्पोर्ट्स भी जोड़ लिया गया है। हाल में ही अभी वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप हुआ है जिसमें अपने भारत को लगभग 114 मेडल्स मिले हैं और काफी उम्दा प्रदर्शन रहा है। और इस बार का जो थीम है स्वास्थ्य वृद्धावस्था के लिए योग, तो आप कोई ये बहाना भी नहीं कर सकते कि अभी मेरा एज नहीं है या मैं नहीं कर सकता। हर किसी के लिए योग है और हर किसी को बेनिफिट पहुंचा सकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने डेली लाइफ में योग को जरूर ऐड कीजिए। आप किसी भी सिचुएशन में हैं आप उससे उबर सकते हैं, ये सिर्फ आपका माइंड सेट है। और हर दिन अपने अपने लाइफ में छोटा छोटा गोल्स बनाइए, उसको अचीव करने के लिए ट्राई कीजिए और अपने न्यू वर्जन को खोलिए और
1: आपने
0: हमेशा
1: बहुत अच्छी
0: हेल्दी रहिए।
1: जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि वर्तमान जीवन शैली में योग के क्या फायदे हैं और क्या क्या चीजें आपको लाभकारी हो सकती हैं। तो आपने इतना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और आप इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: तो अभी हम बात कर रहे थे भेंटवार्ता में वर्तमान जीवन शैली में योग के क्या फायदे हैं इसके बारे में। इस विषय पर जानकारी दे रही थी प्रियंका विश्वकर्मा जो कि सर्टिफाइड योगा कोच हैं भारतीय खेल प्राधिकरण से। अब बारी है वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, और आज हम बात करने वाले हैं वैज्ञानिक रेने लेनियक के बारे में। हम बात कर रहे हैं रेने लेनियक के बारे में जिन्हें आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में स्टेथोस्कोप का आविष्कारक माना जाता है। इनका जीवन समर्पण, मेहनत, वैज्ञानिक सोच और मानव सेवा का अद्भुत उदाहरण भी माना जाता है। इनका जन्म 17 फरवरी सन 1781 को फ्रांस के सुंदर नगर में हुआ। इनके बचपन का समय बहुत कठिनाइयों से भरा रहा। जब ये बहुत छोटे थे तभी इनकी माता का निधन हो गया। इसके बाद इनका पालन पोषण इनके चाचा ने किया जो स्वयं एक प्रतिष्ठित चिकित्सक थे। चाचा के मार्गदर्शन में रेने लेनियक की रुचि चिकित्सा विज्ञान की ओर बढ़ गई और इन्होंने कम उम्र में ही डॉक्टर बनने का निश्चय कर लिया। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन शुरू किया। उस समय फ्रांस में चिकित्सा शिक्षा तेजी से विकसित हो रही थी और लेनियक ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। पढ़ाई में अत्यंत मेधावी और शरीर रचना विज्ञान, रोग विज्ञान तथा शल्य चिकित्सा जैसे विषयों में विशेष रुचि रखते थे। बाद में इन्होंने पेरिस के प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थानों में अध्ययन किया और एक सफल चिकित्सक के रूप में अपनी पहचान भी बना ली। उस समय डॉक्टरों के पास रोगों की जांच के सीमित साधन हुआ करते थे। हृदय और फेफड़ों की धड़कनों को सुनने के लिए डॉक्टर सीधे रोगी के सीने पर कान लगाया करते थे। ये तरीका न केवल असुविधाजनक था बल्कि कई बार सही परिणाम नहीं मिलने के कारण बहुत समस्या भी हो जाती थी। वर्ष 1816 में एक ऐसी घटना घटी जिसने चिकित्सा विज्ञान का इतिहास बदल कर रख दिया। एक दिन लेनियक के पास हृदय संबंधी समस्या से पीड़ित एक महिला रोगी आई। रोगी की जांच करते समय उन्हें सीधे कान लगाकर धड़कन सुनना उचित नहीं लगा। तभी उन्हें बच्चों के एक खेल की याद आई जिसमें ध्वनि एक छोर से दूसरे छोर तक किसी खोखली वस्तु के माध्यम से पहुंचती थी। इन्होंने एक कागज को मोड़कर लंबी नली बनाई और इसके माध्यम से इसके एक सिरे को रोगी के सीने पर और दूसरे सिरे को अपने कान में लगा लिया। इन्हें आश्चर्य हुआ कि हृदय की धड़कन पहले से कहीं अधिक साफ सुनाई दे रही थी। इस प्रयोग ने उन्हें एक नए उपकरण के निर्माण की प्रेरणा दे दी। बाद में इन्होंने लकड़ी से एक विशेष नली बनाई जिसे इन्होंने स्टेथोस्कोप नाम दे दिया। ये शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है सीने का निरीक्षण करना। यह चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में एक क्रांतिकारी आविष्कार के रूप में साबित हुआ। स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर मरीज के हृदय, फेफड़ों और शरीर के अन्य अंगों की आंतरिक ध्वनियों को स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। इससे रोगों का निदान अधिक सटीक और प्रभावी हो गया। आज भी दुनिया भर के डॉक्टर स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं और यह चिकित्सा पेशे का प्रतीक माना जाता है।

रेने लेनियक ने केवल स्टेथोस्कोप का आविष्कार नहीं किया बल्कि फेफड़ों के रोगों के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने तपेदिक यानी कि टीबी, निमोनिया और अन्य श्वसन रोगों के लक्षणों के निदान के बारे में भी विस्तृत अध्ययन किया है। इन्होंने विभिन्न रोगों से प्रभावित फेफड़ों की ध्वनियों को पहचानने और उनके आधार पर रोग का पता लगाने की कई सारी विधियां भी विकसित की। इनका मानना था कि किसी भी रोग का सही उपचार तभी संभव है जब उसका सटीक निदान किया जाए। इसी सोच ने उन्हें चिकित्सा विज्ञान के महानतम चिकित्सकों में शामिल करने का काम किया। की बात करें जिस तपेदिक रोग का इन्होंने गहराई से अध्ययन किया था, उसी बीमारी ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया। लंबे समय तक रोगियों के संपर्क में रहने के कारण टीबी से संक्रमित होने से स्वास्थ्य लगातार बिगड़ने लगा और 13 अगस्त सन 1826 को मात्र 45 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनका जीवन बहुत लंबा नहीं था, लेकिन इनके कार्यों ने चिकित्सा विज्ञान को नई दिशा देने का काम किया। इनका आविष्कार लाखों लोगों के जीवन को बचाने में सहायक बना। इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ज्ञान, जिज्ञासा और मानव सेवा की भावना से किया हुआ कोई भी कार्य सदियों तक मानवता का मार्गदर्शन करता है। तो हमने आपको बता दिया कि रेने लेनिये कौन थे और इन्होंने चिकित्सा विज्ञान में क्या योगदान दिया था इसके बारे में। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खोज और आविष्कार में आज परमाणु रिएक्टर के बारे में। विश्व में ऊर्जा की मांग को अगर लेकर आज बात की जाए तो लगातार इसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। बिजली उत्पादन के लिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे पारंपरिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन इनके सीमित भंडार और पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के कारण वैज्ञानिकों ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज शुरू कर दी। इसी खोज का परिणाम है परमाणु ऊर्जा और इससे उत्पन्न करने वाला उपकरण जिसे परमाणु रिएक्टर कहा जाता है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि परमाणु ऊर्जा है क्या। परमाणु ऊर्जा वो ऊर्जा है जो किसी परमाणु के नाभिक से प्राप्त होती है। जब किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम का नाभिक टूटता है तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है और इसी ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। परमाणु रिएक्टर के विकास की बात करें तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। बाद में वैज्ञानिकों ने समझा कि इस प्रक्रिया से अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु ऊर्जा पर व्यापक शोध शुरू हो चुका था। इसी क्रम में इटली के महान वैज्ञानिक एनरिको फेर्मी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने दुनिया का पहला सफल परमाणु रिएक्टर बना लिया। इसके बाद परमाणु रिएक्टरों का उपयोग बिजली उत्पादन, चिकित्सा, कृषि और अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में शुरू हो गया। परमाणु रिएक्टर एक विशेष उपकरण है जिसमें नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित तरीके से संचालित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रूप से ऊर्जा उत्पन्न करना, रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग भाप बनाने और टर्बाइन चलाने के लिए किया जाता है जिससे बिजली पैदा होती है। परमाणु रिएक्टर कई महत्वपूर्ण भागों से मिलकर बना होता है। इसमें ईंधन, मॉडरेटर, नियंत्रण करने वाली छड़ें, शीतलक, शीतलक, सुरक्षा कवच जैसी चीजें शामिल होती हैं। अब अगर इसके लाभ की बात करें तो सबसे पहले तो बहुत कम ईंधन से अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। बड़े पैमाने पर लगातार बिजली उत्पादन संभव है। चिकित्सा, कृषि और वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोगी रेडियो आइसोटोप तैयार किए जा सकते हैं। परमाणु ऊर्जा अत्यंत उपयोगी है, फिर भी इसके साथ कुछ चुनौतियां जुड़ी हैं। रेडियोधर्मी अवशिष्टों का सुरक्षित निपटान, दुर्घटनाओं की संभावना और रिएक्टरों की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए परमाणु संयंत्रों में उच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्था अपनाई जाती है। भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास में होमी जहांगीर भाभा का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। आज भारत में अनेक परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्यरत हैं जो देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। परमाणु रिएक्टर विज्ञान की एक ऐसी उपलब्धि है जिसने ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। इसका आविष्कार मानव बुद्धिमता, अनुसंधान और तकनीकी प्रगति का उत्कृष्ट उदाहरण है। यदि इसका उपयोग सावधानी और जिम्मेदारी के साथ किया जाए तो ये भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो अगर विज्ञान के क्षेत्र में आपका भी कुछ योगदान है, आप कुछ नई चीजों को ढूंढने में लगे हुए हैं तो आप मेहनत करते रहें, सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी और आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे।

तो हमने ढेर सारी आपसे बातें कर ली और अब हमारे स्टूडियो की जो घड़ी है वो आपसे विदा लेने का इशारा कर रही है। लेकिन जाने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अपने स्वास्थ्य का, अपना और अपने घर परिवार के सभी लोगों का पूरा ख्याल रखें और जीवन को अच्छे से अनुशासित होकर नियमों से जीते रहें। इन्हीं सारी बातों के साथ अब आपसे लेते हैं विदा। अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे नई रोचक जानकारी और तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे विज्ञान जगत, वाचन एवं सहयोग था वसंत कुमार का, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। और अब आइए हम आपको संक्षिप्त जानकारी दे दें हमारे आज के सांध्यकालीन प्रसारण की।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 4:35 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। मुख्य समाचार होंगे शाम 5 बजे और 5:02 से होगा हमारा कार्यक्रम युववाणी, जो संबोधित होगा युवा श्रोताओं को। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की और कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी समृद्धि और पूजा कच्छप। 5:30 पर होगा हमारा औद्योगिक प्रसारण श्रमिक लोक। प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की। प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम दीपा घोष और महिमा गोल्डन बिलूंग। शाम 6 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार। छह बजकर दो मिनट से आरंभ होगा हमारा ग्रामीण प्रसारण। पहले आप सुनेंगे किसान वाणी और 6:32 से हमारी दुनिया। प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। शाम 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:11 पर जिले में आजकल। 7:15 का समय होगा हमारे दैनिक प्रसारण आदिवासी अखड़ा का, जिसे आज आप सुनेंगे हो भाषा में। चर्चा होगी जल संरक्षण का महत्व इस विषय को लेकर और प्रस्तुति होगी प्रदीप कुमार की। सात बजकर 45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर भारती। इसमें आज आप सुनेंगे संस्कृत वार्ता प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोगाक्षयो भवेत। वार्ताकार होंगे धनंजय वासुदेव द्विवेदी। 8 बजे का समय होगा कार्यक्रम रजनीगंधा के लिए और 8:10 से आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। 8:45 पर समाचार संध्या का आज का अंक आप सुनेंगे और 9 बजे से न्यूज एट 9। 9:15 से होंगे समाचार उर्दू में, इन्हें रिले करेंगे हम अपने दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर होगा कंट्री वाइड और 9:45 से इनसाइट्स, इन्हें भी आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। 10 बजे का समय होगा कार्यक्रम सुनहरी यादें के लिए और 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। पुनः हिंदी में समाचार होंगे रात्रि 11 बजे और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुन सकते हैं। 11:10 पर मीडियम वेव पर हमारी सभा समाप्त होगी, लेकिन एफएम पर हमारे प्रसारण का आनंद आप सुबह 6 बजे तक उठा सकते हैं। ये था संक्षिप्त विवरण हमारे आज के सांध्यकालीन प्रसारण का।

कार्यक्रम सांझ सरगम में आप सभी का स्वागत है। जिंदगी का ये सफर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है। श्रोताओं, आप सभी इस मंजिल के मुसाफिर हैं और ये सफर जितना अच्छा कटे उतना ही अच्छा होता है। इस जीवन के सफर में कई लोगों से आपकी मुलाकात होती है, कुछ अच्छे कुछ बुरे, अपना अपना अनुभव दे करके जाते हैं आपको जिंदगी का। कुछ लोग आपके साथ सफर में आगे बढ़ जाते हैं, कुछ बिछड़ जाते हैं। कुछ ऐसे ही खट्टे मीठे अनुभवों को बयां कर रहा है हमारा ये गीत जिसे अब आप सुनेंगे। इसे हमने लिया है फिल्म मुनीम जी से, आवाज है किशोर कुमार की, लिखा है मजरू ने और संगीत से सजाया है SD बर्मन ने।

मतलब नियम है, परिवर्तन होता ही रहता है जिंदगी में, और मिलने वाले बिछड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर प्यार हो, खुलूस हो और जिंदा दिली हो, तो फिर आप किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो बिछड़ गया आप उसका गम मनाते रहें, आप नए का स्वागत भी तो कर सकते हैं।

मेरा ही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए। 9211 फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज थी किशोर कुमार की, शब्द थे मजरूह के और संगीत था SD बर्मन का। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं 16वां साल फिल्म का ये गीत हेमंत कुमार की आवाज में, शब्द एक बार फिर मजरूह के, संगीत एक बार फिर SD बर्मन का।

0: है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पर आएगा। 16 साल का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म माया का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मजरू के बोलों को सुरों में पिरोया है सलील चौधरी ने। हम बातें कर रहे थे शुरुआत से अच्छे दिल की, ये गीत भी कुछ इसी बात को बयां कर रहा है।
1: है अपना दिल तो।

कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला। माया फिल्म के इस गाने के बाद आइए सुनते हैं बंबई का बाबू फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल स्वरों में। नगमा निगार है मजरू और मौसीकी है एस डी बर्मन की।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखें, सवाल पूछें। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
3: सूचना आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है मुख्य समाचार।
4: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान समाप्त होते ही दोनों खेमों में बयानों का दौर तेज हो गया है। झामुमो के वरिष्ठ नेता स्टीफन वरांडी ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों की जीत पूरी तरह तय है। दूसरी ओर रांची के विधायक सीपी सिंह ने एनडीए समर्थित उम्मीदवार

परिमल नाथवानी की जीत को 100% निश्चित बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने भी परिमल नाथवानी की जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि सूर्यास्त के साथ ही पूरी चुनावी तस्वीर साफ हो जाएगी। सुदेश महतो ने भरोसा जताया कि सभी सहयोगी दलों का मजबूत समर्थन परिमल नाथवानी के पक्ष में है। मतदान के दौरान सभी की निगाहें जेएलकेएम नेता और डुमरे विधायक जयराम महतो पर टिकी रही। वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए जयराम महतो ने कहा कि उन्होंने झारखंड और अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज पर मतदान किया है। सिमडेगा पुलिस ने गांजा की अवैध तस्करी के मामले में ओडिशा के कंधमाल निवासी मुख्य तस्कर अश्विनी कुमार दिग्गल और फरिंकू को गिरफ्तार कर लिया है। इस साल 21 मार्च को बिहार के एक युवक को 8 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया था। गिरफ्त में आए उस युवक की निशानदेही पर पुलिस ने ओडिशा के इस बड़े सप्लायर को दबोचने में सफलता पाई है। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने आज किस्को प्रखंड के जनवल गांव का दौरा किया। यहां उन्होंने किसान चमरू महतो द्वारा बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत की जा रही आम की बागवानी का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक बहुफसली खेती यानी इंटरक्रॉपिंग मॉडल को अपनाने की सलाह दी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:02 हो चुके हैं। संध्याकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रमों की शुरुआत करने से पहले आइए आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर में यानी संध्या के 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता में युगल गीत। संध्या 5:30 पर समय होगा किसान भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी। संध्या 6:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। संध्या 6:02 पर हम आपको सुनवाएंगे बांग्ला कार्यक्रम सात रंग। संध्या 6:30 पर समय होगा संथाली कार्यक्रम का। संध्या 6:55 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार संध्या 7:00। संध्या 7:10 पर आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। संध्या 7:45 पर हम आपको सुनवाएंगे श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे न्यूज़ 9 रात्रि 9:00। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 10:00 हम आपको सुनाएंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि 11:00 हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार रात्रि 11:05 पर। और रात्रि 11:10 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलदस्ता। आज का गुलदस्ता हमने आपके लिए सजाया है युगल गीतों से। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं ये पहला गीत फिल्म त्रिदेव से, आवाज़ मोहम्मद अजीज़ और साधना सरगम की, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म त्रिशूल का ये गीत यशुदास और लता मंगेशकर के आवाज़ों में। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में युगल गीत, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: इन संदेशों के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम गुलदस्ता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब एक जरूरी सूचना, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिले के प्रभावित गृह रक्षकों को सूचित किया जाता है कि पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला अंतर्गत मुहर्रम पर्व ड्यूटी 2026 के अवसर पर दिनांक 25 जून 2026 से 28 जून 2026 तक कुल 4 दिनों के लिए विधि व्यवस्था संधारण हेतु 300 गृह

रक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जानी है। अतः वैसे सभी गृह रक्षक जो वर्तमान अवधि में किसी भी प्रकार की कर्तव्य में प्रतिनियुक्त नहीं हैं, वे सभी गृह रक्षक जिला समादेष्टा कार्यालय चाईबासा में आकर दिनांक 18 जून 2026 से मुहर्रम पर्व हेतु आगमन कराना सुनिश्चित करेंगे। सूचना समाप्त हुई। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में फिल्म तुमसा नहीं देखा से।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ

के जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ आ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं फिल्म सलामी का ये गीत, आवाज़ पंकज उदास और अलका याग्निक की, बोल समीर के और संगीत नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सलामी का ये गीत, और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम गुलदस्ता अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी आपने सुना कार्यक्रम गुलदस्ता में युगल गीत। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे किसान भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱱ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱮ ᱢᱚᱛᱤᱞᱟᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮ ᱱᱤᱛᱟᱹᱱ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱟᱨᱡᱽᱠᱟᱨ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ
1: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है, दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए

0: पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
1: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
0: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
2: हमने 1800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
0: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूँ व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
3: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गाँव में खुशहाली आ रही है।
0: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
4: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
0: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु, सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
5: मैं AIF का डायरेक्टर हूँ। मेरा AIF पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है, उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया।
0: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
6: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
0: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।
7: चसी भाई हम सीखने तो आज मैं थन एक बार अनुवा जरूरी संदेश को नियो संदेश तेम देला कर्ज करम बड़ा से बोला है और तेहन पुन बढ़ाया मीन गप्पा मराव लेकाते लते दर सब्जियों की खेती भी सही दिक्कत है नाकिन लई अब बहाल एन सुंडी तिकिन रकिन सला गप्पा मराव रे लिंगे ठाकुर चंद्र मुर्मू तिकिन इन कंदला पांजम लेगे नो आमीन इन गप्पा मराव ये कौन इन किसान वाणी कर्ज क्रम रे जाओगे नाम नाम चास बास ने ते सुपुर चासी आगे कलो जगह रहे ने ते मिसे मिसे तो कृषि विशेष कलो जगह रो बाव गया एंदो निंता अमिटो मिसी कोई लिन नमक ये मर एंदो अभी ना नुतुम दो
8: वाले सुंडी हाथु दो नरसंडा
7: मुंडा सही ऐसु रासर जाके बालेन में ये एंदो मर अलिंग पे ते जुआर
8: अलिंग पे ते किरुजी बनते जुआर
7: एंदो ना तो चिकने कुछ कहती है पेड़ उतरे

0: si ba si tinala yan iya nang pulo ko le bide lagi no nang la tayari na ko man
1: pulo ko swel si ondo chikina ko
0: en iya suku ko te tayar ko man le bide
1: indo na ben kajiten lika ondo ondo na ninta chikina mir se pada akad
0: amar si ling pada tada ate na to ina ko dakalin baike te do na do ling ruwaya mente
1: acha nen mir che chimin din bin pada lete kin
0: na to uba ta na 20 25 din to lagao gi
1: ओह अच्छा अच्छा पढ़ाल रहे तो 20-25 दिन लगा हुआ इन चना दो
0: इन चना तो लिंग ये डाका कोलिंग बाईटी किते तो चना तो लिंग इन ये डाका रे ये गुरी कोलिंग एम के तो लिंग बिड़ी है गुरी उधर को
1: गुरी उधर को गुरी उधर एम के तो बनिए दारू
0: ये दारू को लगे लगे तन हरा भरा के
1: इन तो ना बिन कजी तंतिया पुलु पुलु तो ना कजील का तो सीजन रे के नाम होती है
0: ये
1: इन दो नन पुलु को चास लगे तो चिल्ली की ना खेतरी हसरे आते पे तैयारी
0: है ना तो आया तलिंग सील ही है
1: अच्छा
0: सील है ते जो का रोल है ना ते लिंग कुड़म ली है हसबू को
1: अच्छा
0: कुड़म ले तलिंग चना तो इना को कुड़म सर के तलिंग डाका को लिंग बाईते ते
1: ओ अच्छा अच्छा अच्छा मतलब इना को मरंग मरंग आलो पता यू कर
0: ये ते गुंडे ली है ले
1: अच्छा अच्छा बुधर तो चिकन बुधर को पेम बाय
0: एंड तो गुरी बुधर के ले एम ली है
1: ये
0: अने चना गुरी बुधर अमोनियन बाद रहता चना तो यूरिया एंड ते डाई को ले एम
1: अच्छा इन यूरिया और डाई तो इना तो चिकन रिया पेम ये
0: एंड अंजा के हरा का मनते
1: ओ अंजा के हरा का मनते अच्छा अच्छा
0: डाई तो बूटे भाई यूरिया तो हरा
1: अच्छा इन पुलु तो चिलके ना तो रोए तो वो चिलके
0: रोए ले
1: जंग पर रोए
0: जंग ले रोए
1: ओ अच्छा इन हित दुकान है पे
0: इन दुकान है तले करिंग है बाजार दुकान में ना
1: अच्छा इन विशेष कर चिमिन नो रोए तिया बिन वो तले तो
0: पुलु
1: ये
0: हजार बुटन का ले रोए
1: हजार बुटल का अच्छा नहीं ना तो इन दो हजार बुटल के ना तो अबिन सोलते के बिन रोए चिंडो
0: मीना को वो आरहन को सबन मिले हो के तले पाइटी है
1: अच्छा नहीं ना हजार बुट्टे में केर तो इन्हें तो चिलकी उन्हें ओतर के इन्हें तो नहीं हुआ चीज कौन चिलकी के
0: ओतर नहीं होती है
1: ओतर नहीं होती है जी एन
0: जटा तो जटा है
1: अच्छा अच्छा अच्छा इना जटा है तिया तो इन्हें तो
0: एन जटा है लेकिन इन्हें ये ना तो ये मार सिताई में ना तो ले लेते हुआ
1: इन दोनों ना सिंचाई रिया तो चिलके पे बहुत था
0: एन सिंचाई रिया तो ये एन कुंहर ले बाई तेरे
1: अगर चिमिन चिमिन दिन रह सिंचाई तो बहुत नहीं
0: ना ना तीसिंग ना आयु ले दुली है तो अंदर का पाइप नंग ले दुली है
1: ओ अच्छा मिसे के मुसिंग मुसिंग रे मिसे के कच्ची ये अच्छा अच्छा अच्छा इन दो इन्हें तो विस्तार नो तो जगह नो ले बिन ना मान लीजिए एन जंग बिन बीट किटा मिलती है
0: जंग तो लिंग बीटी है बीट जंग लिंग बीट लिया दो दिन निका दा कलिंग दुली है
1: अच्छा दा आदो कबिन दुली
0: कलिंग दुली है जो का लोलो नॉले नो कमें कहते बीतेर रहे उगुम उगुम दें
1: अच्छा
0: एंड चाहे दो तीन दिन बाद रहते दा लिंग दुली है एंड तो अंजागो मन परम
1: अच्छा मंत्र मिसिम से तो का उम
0: अनो अच्छा एंड जो का एंड बीतेर ता एंड तो लोलो वाचे एंड जो अगेन अगेन तन रिके तो चाहे दा लिंग दो दिन का दा आदो कलिंग दुली है एंड चाहे तो दा लिंग दुली है चाहे तो अंजाओ मन परम
1: अच्छा अंजाओ मन परम अच्छा ठीक है तो जब उमोनी दो जब हुडिंग नो तैये के नो दो इंच तीन इंच लिखा तैये के नो इन तीन दो चिकन चिकन बुधर को चिकन चिल के पिच के ये
0: मतलब जो का हरा है ना पता को लेन बाद एन दो तीन तो पता ओ लेन बाद एन तो चनम तो ये एन बूटा भाई और दो ये डाई लिंग यमी
1: ओ अच्छा अच्छा डाई भी नमी है कि जी ना या ना अपन को जी तिन का पौधा मजबूत हो
0: मैंने कहना एन बूटे ते बन बढ़िया भाई हो
1: इन चनम दो
0: इन चना मजा के ये ओ चमने रो यूरी लिंग डलो
1: अच्छा
0: हरा तब हो अच्छा
1: हरा तब
0: इन धारा कब तब
1: इन बात तो चनम तो पूरा देखभाल ती अदर करो दर करो अतर
0: ये देखभाल तो दर कर जो मैं तना चिको मनती
1: है या या
0: मैं डो रेट नमो
1: अच्छा जा मैं को जोम के या पौधा इन बहुत सकम को पता को इन तिन इन चिकन रेट को पे
0: एक तो रेट नमो
1: अच्छा
0: इनले किरिंग लिए एंते नन पेच करती है ये बाल्टी ले लिया लिए ते एक बाल्टी एंड ले दुलिया एंते चना ते इन चिदुको को जो मैं तान तो इन पेच कर ले मारा है
1: ओ एंद चिदुको को काको जों
0: काको जों ये
1: एन इन रे असर तो जो कर तो काते यो
0: एन नियाले नियारे असर तो काते यो ना सिंगले पेच कर ये चाहिए पेन एन तो गापासीता दाले एन दुल पेच कर सपी
1: ओ अच्छा अच्छा
0: इनकले सपाया एन ये पेच कर सपाले
1: एन
0: थोड़ा थोड़ा लबिड़े तो अंदर बूटर ले चिर गली है इंदर कौन ता बूटे में नाम नहीं
1: आता अच्छा अच्छा इंद ये अब अंतर मिसे मिसे तो सिंचाई तंत्र ये अब तेगा
0: उम तेगा बंद तेगा वो इंद इनका तो कले बिड़ी है मतलब सेना थी आ हुरा लबाई थे
1: इंदो वालें माई थी किंग ना तो ऐसे बने बिन जगह तंगी है इंदो আর সেরমা তো রামবেন চাস লেতে কি না নিকা তো চিমিনিং নো এন চাস বলেন তে কি না চিমিনিং নো এনতে আই ইনকাম বলেন
0: আই ইনকাম তো বলেন না তো আলো তো কিষান হক তো চাউল ডালি হলে কিরিং ইয়া
1: ইয়া
0: তো চাপ কিরিং কে সারে এনতে তো 20 25000 রুপি না
1: ও সারে লেনতি না সবই না খরচা কেট
0: বা খরচা কেতে সারে লেনতি
1: ইয়া সেই সময় রে জান ফসল গেম অল্লি আচ্ছা এন্দো নিনা তো চিকেন চিকে হচ্ছে মতলব ইনারে বুগিন গনং নামো
0: না তো না তো আদানা চিন এন সুমারে ওপন আয়ারতলে বিড়ি আয়ারতে গনং আমেনতে দলে চিরগেল তডে ইনা মেনতে না তো আয়ারতে গেলে ইনা কদলে তৈয়ারি কেতলে আকারঙ্গে চেন রেট নামো পুরে রেট নামো মন কেতে
1: এন্দো না চিমিন নও বেন খরচা এন এন রেমার কাজি নও তা বেন
0: না লগভগ না লিং খরচা এন্দো না তো নেন্দ দলিং খরচা এত গলিং উপাওন্দো
1: ইয়া कम से कम 3-4 हजार
0: खर्चा
1: बुधर को लो सभी 5 हजार का खर्चा
0: होगा खर्चा होगी
1: कितने मेहनत तो मेना इना
0: लो मेना तो दूर करा सब ना दूर करा छे दो रेट को करेंगे ते ऐसे ते
1: इना को नो कन ना
0: जान को करेंगे ते होगा छे
1: या या
0: 500 के तो पैकेट
1: पैकेट ना मुआ कची इना तो सभी ने उपचारित बीज के तैयो ये अच्छा এসুর আসার কাজি গেমার নিমিন কাজি নো তা বেঞ্চি নেন সিরমে আবিন বিন চাষ হইতে ওন্ড চিমিন এমিনঙ্গে লাভ হতে আমি উড়ুতে চি পুরে নো
0: পুরে নো লাভ আছে মেনতে
1: ও আচ্ছা আচ্ছা ইয়ে সাবেন কোয়েন কাকে উড়ুবু পুরে নো লাভ ওলে কাকে ইন্দো নেন পয়সা কো দবিন ওয়ার করে মেরকে এক চি কোন ব্যাংক করে মেরকে এক দে
0: ওয়ার দো ইনকাকে সারে ভাই আনতে দ জুকা জুকা হন কো লাগে রো জামাইতে উবা
1: আছে ইয়া ঠিক ঠিক
0: ওয়ার দো যা চিন্তেঙ্গে খরচা মেনতে
1: আবিন কুইও নোভা কেতে রেমিন চেরা বিন নেন পাইটি করে মিনা বিন চাস বাস পাইটি করে নে ডেলবেনতে না এন্দো ওন্ডো কুইওন কো মিনা কো তব আবু নেন সাবিন পুয়েগে এন্দো নেন রেডিও কো আইম তেন গিয়া না এন্দো জাগার জাগার তে নিনা জাগার নো তা বিন চি চিল কেতে কুইওন কো ওন্ডো নেন পাইটি রে ওন্ডো আর পা কো জু কো মেনে করা সদ্দে সুরত চিকিন আবিন কাজি দেই
0: না আলিং না আলিং এন ইয়েন আলিং চাষে তান হিসাবতে আলিং আয়ে মতলব লেলকেতে সাবেন না ইনকাগে রাঁসাতে কুইয়ন কো না নীলকাগে যা দিসুম কো কাবু সেনুয়া আবু আর তো দিসুম করগে নেন চাষবাস ই পাইট কে তবু আসল না মেনতিয়া আলিং পেতি আদনা
1: আচ্ছা এ সুবড়িয়া সন্দেশ মতলব না কাজি তেন লেকে সাবেন এটা পা পার্টি নামো অতটা মেনতে কো সেনো তান গিয়া
0: ইয়া বেঙ্গালোর কো যা পা কো সেনো তান
1: ইয়া ইয়া এন্দো ইন পা এক তো পয়সা ভোগিতে কা নামো আচনা শারীরিক শোষণ কো বাও আমি সে মিছে দে ইন কে না কা ইন পা কা সেনো তিয়া আবু তে কে সাবিনে মিনা নিন তা কে চাস বাস কে তে বাসু লেন তিয়া দো এন্দো ইসুর আসা কে বিন কাজি কিডা বালেন সুন্ডি মাইতি কি মার আলে আলগের এনে তেনে নাকাসোনি পরিবার লাগা নিমিন পুরা সময় বিন এম কিডা নেনা লাগা তালিং পে তে কিরজিবন্তে ধন্যবাদ
0: আলিং এ কিরজিবন্তে জোহার
1: জোহার চাষি বই হামসে কিনে তো বন বড়ায় তহন লতেদার সবজি কে খেতে বিষয় ইদি কাতে আর নয় কিনলে তহন বালেন সুন্দি তিকিন নিয়ে গাপাল মারাও তেম দলা কাজকর্ম না সেট বলা হাঁ যোগা আর বন আজম লিগা আর হম বিন বার জরুরি সন্দেশ কো

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जलवायु परिवर्तन क्या है, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही हैं, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से

0: अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है।
1: चसी भी हम इसी को नितो ना जमे थे नौ मिनट बार जरूरी संदेश को ये संदेश तो हम दिलार हो कर्ज करा मुझे बुरस का ये लोग नौ संथली लोग गीते राम टूडू आर सावतेन को सप्लाव होते हैं।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में राज्यसभा की दो सीटों के लिए मतों की गिनती जारी है। शाम 5 बजे शुरू हुई इस मतगणना में चुनाव अधिकारी सभी 81 विधायकों के मतों की जांच कर रहे हैं। झामुमो के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परमल नाथवानी के भाग्य का फैसला कुछ ही समय में होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे, जिससे देश भर के 15 लाख से अधिक लाभार्थी सीधे लाभान्वित होंगे। झारखंड में भी इसके प्रादेशिक कार्यक्रमों की भव्य तैयारी पूरी है। रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में जंगलों और प्राकृतिक इकोसिस्टम को बचाने की जरूरत पर विशेष जोर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने जंगल की सीमाओं के पास पत्थर खनन और स्टोन क्रशर पर रोक लगाने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी चुनौती याचिका वापस ले ली है। पाकुड़ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान एसपी ने जिले में अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर सभी थाना प्रभारियों को सुरक्षा व्यवस्था के कड़े निर्देश दिए। राजधानी रांची के खेलगांव स्थित रोलर स्केटिंग स्टेडियम में आयोजित 12वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। देश के विभिन्न राज्यों से आए लगभग 1000 स्केटर्स ने पदक और राष्ट्रीय रैंकिंग अंकों के लिए ट्रैक पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱨᱟᱢᱨᱟᱭ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ
1: सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: परिवार जो इन मेटा क्रांति बेसरा आले नेहर बोले नुकान परिस्थिति बोले सब वापस को रुआड़ा धारा रे बोले रुआड़ तबन में।

निशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, दिल बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: बुयाम सी को तेहेन नुआ विज्ञापन सदा तेगे नुआ अखड़ा दो नुड़ेगे केचेदोकना मातुबे अलिंग बढ़ा हंसदा आपे ठेन कोन बिदेली नतावया जोहार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संथाली। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101.7 MHz पर।

और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: पैसे दो हस्बैंड जी।
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूँ?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
5: PLI है ना?
6: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखें, सवाल पूछें। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं, महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
5: भाइयों एवं बहनों, जोहार। झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
4: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित। झामुमो के वैद्यनाथ राम और एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी ने दर्ज की शानदार जीत। प्रधानमंत्री कल 2400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का करेंगे वितरण। रांची और बोकारो में भी आयोजित होंगे कार्यक्रम। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और सांसद टुल्लू महतो होंगे मुख्य अतिथि। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के स्टोन क्रशर और पत्थर खनन पर रोक के आदेश को रखा बरकरार। झारखंड में जंगलों और प्राकृतिक इकोसिस्टम को बचाने की जरूरत पर दिया जोर। राज्य के 17 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने रांची, हजारीबाग और धनबाद सहित कई इलाकों में आज और कल वज्रपात और तेज आंधी की दी चेतावनी। और FIH महिला नेशंस कप में भारतीय टीम ने उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। झारखंड की दीपिका सोरेंग ने दागा शानदार गोल। और अब समाचार विस्तार से। राज्य की 2 राज्यसभा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार वैद्यनाथ राम और एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी ने जीत दर्ज कर ली है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। इस मतगणना में सबसे चौंकाने वाला मोड 3 वोटों का अमान्य होना रहा। अंतिम परिणामों के अनुसार विजयी प्रत्याशी वैद्यनाथ राम को 31 वोट और परिमल नाथवाणी को 28 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रणव झा को केवल 19 मतों से संतोष करना पड़ा। परिमल नाथवाणी की जीत पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड से 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके नाथवाणी के अनुभव का लाभ राज्य को फिर मिलेगा।
8: एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं को और साथ ही तमाम 81 विधायकों को भी हमारे ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। तो इसे आप समझ सकते हैं झारखंड के जो मतदाता है, खास करके हमारे जो विधायक काफी सुलझे हुए हैं, काफी समझदार हैं। परिमल नथवानी ने 8 से 14 और 14 से उनका कामों को लोग देख चुके हैं, उनको लोग नजदीक से देख रहे थे और उन्होंने भी झारखंड को देखा है और झारखंड के लोगों से भी उनका अच्छा परिचय है।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे, जिससे देश भर के 15 लाख से अधिक लाभार्थी सीधे लाभान्वित होंगे। झारखंड में भी इसके प्रादेशिक कार्यक्रमों की भव्य तैयारी है। रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि होंगे, जबकि बोकारो स्टील लिमिटेड के सभागार में होने वाले कार्यक्रम में सांसद दुल्लू महतो शिरकत करेंगे। गुमला के केंद्रीय प्रभारी अधिकारी अमित सतीजा ने आकांक्षी प्रखंड डुमरी का दौरा कर समाहरणालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिले में गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण को 100% करने और डॉक्टरों की कमी दूर करने के कड़े निर्देश दिए। बच्चों में कुपोषण पर चिंता जताते हुए उन्होंने रेडी टू ईट पोषण वितरण प्रणाली को तुरंत दुरुस्त करने को कहा।
9: जो हम लोगों ने कार्य किया है नीति आयोग के तत्वाधान और जिला प्रशासन के नेतृत्व में, उसमें जो गांव वालों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें कि बकरी पालन और मशरूम की खेती और एक जो कॉम्प्रिहेंसिव विकास की तौर पे जो पहल स्कीम है, उसमें गांव वालों को देख के बहुत अच्छा लगा। गांव वालों को बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले महीनों में इसका जो रिज़ल्ट है वो ज़मीनी स्तर पर देखने को मिलेगा।
7: पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच केंद्र सरकार ने देशवासियों को आश्वस्त किया है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं, जिससे पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 3 दिनों में देश भर में 1,47,00,000 घरेलू LPG सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं।
10: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। LPG बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख PNG कनेक्शंस गैसिफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
7: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में जंगलों और प्राकृतिक इकोसिस्टम को बचाने की जरूरत पर विशेष जोर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने जंगल की सीमाओं के पास पत्थर खनन और स्टोन क्रशर पर रोक लगाने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी चुनौती याचिका वापस ले ली है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं, महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
5: भाइयों एवं बहनों, जोहार। झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी

0: उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद। जोहार।
1: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। राजधानी रांची के आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंकने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्ध को हिरासत में लिया है। पुलिस ऑपरेशन के दौरान एक संदिग्ध घायल हुआ है, जिसका फिलहाल अस्पताल में उपचार चल रहा है। सिटी एसपी पारस राणा ने इसकी पुष्टि की है।
4: रांची पुलिस के द्वारा जो मुख्य 3 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया था और जब थाना में उनको पूछताछ के लिए रखा गया था तो उसी क्रम में जो एक आरोपी है जिसने बाथरूम जाने का बहाना किया और फरार हो गया था और उसके पश्चात उसको दोबारा गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसने दूसरी बार फिर से भागने का प्रयास किया। इसमें इस बार उसने पुलिस का जो वेपन था उसको भी छीन कर भागने का प्रयास किया और उसी प्रयास में जब पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई तो उसके द्वारा भी 2 से 3 राउंड फायर किए गए हैं। पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई है, उसमें उसके पैर में गोली लगी है।
3: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने इरबा स्थित आईक्यूब डिजिटल परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा 22 से 24 जून तक जारी रहेगी। भाकपा के झारखंड राज्य परिषद सदस्य और गुड्डा जिले के वरिष्ठ मजदूर नेता कॉमरेड रामस्वरूप पासवान का कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद आज निधन हो गया। उनके निधन पर भाकपा झारखंड के राज्य परिषद ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए पार्टी कार्यालय में झंडा झुकाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर कोडरमा जिले में तैयारियां जोरों पर है। इन तैयारियों के बीच झुमरी तलैया के रहने वाले एक दंपति की अनूठी पहल क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रदीप सुमन और सुषमा सुमन नामक यह दंपति पिछले 22 वर्षों से लगातार योग के प्रचार प्रसार में जुटे हैं। इस दंपति ने अब तक क्षेत्र में 10,000 से अधिक योग प्रशिक्षक तैयार किए हैं। योगी सुषमा सुमन ने बताया कि वे विशेष रूप से बुजुर्गों और महिलाओं को नियमित योगाभ्यास करा रही हैं।
5: एक ऐसा समय था कि जब कोई योग के बारे में जानता भी नहीं था और धीरे धीरे प्रचार प्रसार करते आज पूरे कोडरमा जिला में लगभग 10,000 से ज्यादा योग शिक्षक भी तैयार हो गए हैं, जो जगह जगह योग क्लास लगाते हैं। लगभग 22 वर्ष से मोहल्ले मोहल्ले में जा करके प्रतिदिन योग सिखा रही हूँ।
3: और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत 17 जिलों में आज और कल भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद और देवघर जैसे जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की प्रबल आशंका व्यक्त की है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने उरुग्वे को 3-2 से हराकर नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस मुकाबले में झारखंड की दीपिका सोरेंग ने शानदार गोल दागा। दूसरी ओर राज्य की उभरती साइकिलिस्ट सरिता कुमारी का चयन वर्ल्ड स्पोर्ट्स एक्सपोजर टूर के लिए भारतीय टीम में हुआ है। वह 1 महीने तक यूरोपियन सर्किट की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित। झामुमो के वैद्यनाथ राम और एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी ने दर्ज की शानदार जीत। प्रधानमंत्री कल 2400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का करेंगे वितरण। रांची और बोकारो में भी आयोजित होंगे कार्यक्रम। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और सांसद ढुल्लू महतो होंगे मुख्य अतिथि। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के स्टोन क्रशर और पत्थर खनन पर रोक के आदेश को रखा बरकरार। झारखंड में जंगलों और प्राकृतिक इकोसिस्टम को बचाने की जरूरत पर दिया विशेष जोर। राज्य के 17 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने रांची, हजारीबाग और धनबाद सहित कई इलाकों में आज और कल वज्रपात और तेज आंधी की चेतावनी जारी की। और FIH महिला नेशंस कप में भारतीय टीम ने उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। झारखंड की दीपिका सोरेंग ने दागा शानदार गोल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में,

0: एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स, और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें।
1: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत में पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था। थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, जमीन पर उतर कर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
0: कई राज्यों में, इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। बालेडूंगा में जो ये स्काई वॉक की आप जो बात कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहाँ मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो ना केवल जो स्काई वॉक वहाँ पे तैयार हो रहा है पर जो ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहाँ पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काई वॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज़्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज़्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहाँ पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है, जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5-स्टार हो या 3-स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहाँ जो उसका इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पर सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
1: आपने जैसा कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
0: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, ना केवल भारत के लिए, मैं तो कहूँगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब जो यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वेराइटीज़ हैं, चाहे वो लेकाडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइनएप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
1: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बनेगा। इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में और सरकार इसे कैसे देख रही है?
0: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है उसी के अनुपात में अब बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर

0: और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है, ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था,
1: जी
0: लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएँ और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
1: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
0: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है। और उस शांति का जो बेसिस है वो है एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल इंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खास तौर पे लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुँचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं। और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहाँ पर शांति को बरकरार रखने के लिए और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
1: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
0: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज़ अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट विद द ईस्ट, एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एंड इट मीन्स दैट बाय स्ट्रेंथनिंग द फिजिकल कनेक्टिविटी, प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, पीपल टू पीपल लिंक्स, एंड इंटीग्रेटिंग द रीजन इन टू ए रीजनल वैल्यू चेन विद द साउथ ईस्ट एशिया। एंड आई थिंक ऑल द स्टेट स्पेसिफिक इनिशिएटिव एक्चुअली टेक अस टू दैट पर्टिकुलर पैराडाइम, एंड इट्स ऑल्सो एसेंशियल दैट दिस अप्रोच रिकग्नाइजेज नॉर्थ ईस्ट एज बोथ अ नेशनल एसेट एज वेल एज अ गेटवे टू एक्सटर्नल मार्केट्स, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस बैलेंस द स्ट्रेटेजिक एंड डेवलपमेंट प्रायोरिटीज।
1: सो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं?
0: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में। माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में हमें शामिल हुए थे। और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी, और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे, और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2047 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर, स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा, और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है। हर स्टेट डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हासिल कर रहा है, हर स्टेट 5-5, 6-6 साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में। तो ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल नेशनल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में और आगे जा सके, इस सब का इसमें प्रयत्न पूरा शामिल है। तो आने वाले समय में मैं पूरी उम्मीद है कि हमारा फोकस जो है इट विल रिमेन ऑन कॉन्वर्जेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट, सो दैट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर इंटीग्रेटेड इन टू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। एंड वेन दे डू दैट they also retain their unique identity.
1: Thank you so much, sir.
0: बहुत बहुत धन्यवाद.
2: बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के. विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत. यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया.
3: दिस इज आकाशवाणी. इन दिस स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के. नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद आर मुकुंदन, प्रेसिडेंट कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII. इंटरव्यूअर इज शिशिर सिन्हा, जर्नलिस्ट.
4: नमस्कार. मोदी गवर्नमेंट इज कंप्लीटिंग 12 इयर्स. ड्यूरिंग दोज 12 इयर्स वी हैव सीन वेरियस अप्स एंड डाउन इन द इंडियन इकॉनमी. We have seen challenges like COVID. We have seen challenges like Russia-Ukraine war, and now the current West Asia crisis. Despite all those things, Indian economy has grown more than 7% during those 12 years. And now the expectation is it will grow at much faster rate. So what kind of role India Inc. has to play in this entire growth journey? To talk about all those things, we have with us Mr. R. Mukundan, President, Confederation of Indian Industry. Mr. Mukundan, thank you very much for joining us from Morocco, and it's a pleasure to have you on the show.
5: Thank you very much.
4: Mr. Mukundan, my first question to you, how do you assess the Indian economy of last 12 years?
5: So I think a lot of positives happened, and if I were to say what are the way I would put, sort of contextualize what has happened, you've already given the environment. There were challenges like COVID. External environment is very volatile. There's a challenge of AI coming in. What I think we have achieved is to have a more frictionless economy. There is less friction. And I'll explain what I mean by that. The whole digital payment, Jan Dhan, Jam Trinity, if you really look at it, it has reduced the friction in the economy. Also, the GST, for example, it's a landmark reform. It has ensured that, again, the friction in transaction of goods. If you recall, in the past, trucks would be waiting at state borders for hours. Today, actually, you can reach any part of India and has reduced logistic costs. I think the first F which they have achieved is to get to more frictionless economy. Second, I think what India has done is to use force multiplier, multiple force multiplier. And I'll give you examples. One is, for example, if you look at the way we have handled the PLI scheme, the defense exports, for example, 33 times from what it was at the beginning. So it's not a small feat to start from where we are and we are 33 times. People don't talk about it. And from a net importer, I think we are also now a good exporter of the defense equipment. Mobile phone, for example, has grown 6 times, mobile assembly. Again, of course, aided by PLI scheme. But these schemes were important. They were thought of at various times. And various other elements of reforms were carried through, in my view. For example, the labor codes, the issue related to Bharat Mala Pariyojana, the Sagar Mala Pariyojana for logistics, PM Mudra Yojana, all these were parts of what I would call force multiplier. Add to that what Udaan scheme did for air transport, add to that what Smart City Mission has done to over 7,500 projects have been implemented with an outlay of 1.5 lakh crore. So all these adds up to what I would call the second part of the story, which is force multiplier. The third I would call is a factor social stability. I think while we do all this, if social stability is not there, it is not going to be good for any economy. I think, for example, several elements, PM Kisan Yojana, where almost 4 lakh or 4.1 lakh crore were transferred directly to farmer benefit. PM Awas Yojana, which is fundamentally over 4 crore houses have been sanctioned or constructed. And look at railway, for example, for the common man, Vande Bharat, 164 Vande Bharat services operationalized already, and more coming in the way. And when I say social stability, it also has some business elements to it. For example, insolvency and bankruptcy code actually augurs well because it brings unproductive assets into productive economy, thus creating jobs. So again, that 12 lakh crores of stress debt were resolved. I think in addition to these three broad areas, which I explained, which is frictionless, force multiplier, and social factor stability. There's one key theme the government has done in the last few years, looking at opening India and bringing India to the world and bringing world to India through free trade agreements,

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
4: PLI है ना?
5: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आप सुन रहे थे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ रेखा, नमस्कार। सुनवाते हैं ये पहला गीत आशा भोसले के स्वर में, फिल्म है उमराव जान, बोल सैयार के और संगीत खय्याम का। पसंद आप सबों की है। सेंटोला चाईबासा से भोला राम मधुर, बेबी देवी नताशा, बड़ी बाजार चाईबासा से विनोद कुमार पवन, मीना पवन, पोंडाकाटा से नरसी महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हरसमणि महली, पार्वती महली, सुहानी महली, संजय सोरेन, नंदनी महली, साजीव सोरेन, गोपाल महली, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नशीम बेगम, आयशा खान, हृदिया खान, आसमा सालिया, सोएब खान, गांधीबागा कोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी। आप सबों की पसंद पर सुनवाते हैं फिल्म उमराव जान का ये गीत, आवाज़ आशा भोसले की।

और अब सुनवाते हैं कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में फिल्म गुंडा राज का ये गाना। पसंद आप सबों की है। बड़ा बम्बो सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, सुशीला, श्यामदेव नायक और सीमा, ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बासंती, रमेश, अन्नू बनमाली और सिद्ध कुमारी, खरसावा से नायडू महतो, खेत्रो मोहन साहू, कैलाश बाबा, उषा महतो, प्रिया महतो, डोली महतो, तरुण महतो, महोलडिया सोनवा से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी बंदनी संतोषी, दीपक संतोष, राहुल अनु तन्नु भाई नंदू महतो, मेन रोड सोनवा से गुरुचरण नायक, अनुसुईया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, आयुष महतो, गीतेश महतो, गांधी चौकड़ों पर पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक, मीका बीरक, खमहरिया बिलासपुर छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, मानस साहू, प्रतीक कुमार, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक। आप सबों की पसंद पर सुनवा रहे हैं कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में फिल्म गुंडा राज का ये गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम आपकी पसंद अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और अब प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम रजनीगंधा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। फरमाइशी गीतों के इस सिलसिले को शुरू करते हैं और सुनवाते हैं ये पहला फरमाइशी गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों में। फिल्म है सत्यम शिवम सुंदरम। इस गीत के फरमाइश करता है गांव कीता सरायकेला से राधा कृष्णा गोप, सुनीता गोप, उमा गोप, गीता गोप, रीता गोप, सरस्वती गोप, आराध्या गोप, अमित गोप, सुमित गोप, अभिषेक गोप, विनोद गोप, आशीष गोप, राजू गोप, विकी गोप, राजन गोप, शुभम गोप, माहिर गोप, माहौलडिया सोनवा से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी बंदनी, संतोषी, दीपक संतोष, राहुल, अन्नू, तन्नू भाई, नंदू महतो, मेन रोड सोनवा से गुरुचरण नायक, अनुसुईया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, किशोर महतो, गीतेश महतो, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया, सरायकेला पारापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम शिवाजी मुंडरी, सुरुमानी मुंडरी, हीरामानी मुंडरी, हिमांती मुंडरी, डोबरो मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पारापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरी, जानुम सिंह मुंडरी, सिद्धि बोस, सोना बाबू और FM शिवा मुंडरी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दंतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवेई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी छत्तीसगढ़ से करुणा वर्मा, प्रियंका बंछोर, मेहरनगर उमरखेर महाराष्ट्र से अभिजीत गौहानकर, राही सरिता गौहानकर, प्रिंस एकांश गौहानकर, सिद्धांत गौहानकर, विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गौहानकर, वैशाली गौहानकर, कुमारी ध्वनि गौहानकर, परी,

0: जब मैं 18 साल का था 1984 में, तो जो उस उम्र में सब करते हैं मैंने भी किया, मुझे एक
1: और अब सुनवाते हैं यशुदास के स्वर में फिल्म चितचोर का ये गीत। फरमाइश आप सबों की है बेर्डी से। राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सवा सेरे, पंचशील रेडियो श्रोता संघ, इस्लामपुर जिला बुल्ढाना से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमेध कुमार दामोदर, गोपाल पाटिल, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिस्का और तन्मय गजभिये, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरभ शर्मा।

इस गीत को सुनना चाहा था पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान, दुर्गाई सैलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता परभनी से सी आर कुलकर्णी, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, भटिंडा रोड डबवाले से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनी गंधा, और अब कार्यक्रम में सुनवाते हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर को, फिल्म है गीत। इस गीत की फरमाइश करता हैं बेड़ी से हुकुम करमकार, सुनीता करमकार, हार्दिक करमकार, प्राची करमकार, तन्नू करमकार, रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख, अब्दुल सत्तार अंसारी, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिस्का और तन्मय गजभिये, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से सुभचंद्र बजाज, करनाल से जग्गी दुआ। आप सब की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर को फिल्म गीत में।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के चाय बासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: आले नवागे नेहर में ना बले नवा नुकान परिस्थिति रे बले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहेगी आम बले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: वरना मंगलोरा एक गांव बरगरा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम्हें ठीक हुए है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आए में हमरे घरे बहुत दुख के बात होते कम बात हो जाए
5: तुम लोग बुरन सिंह तमसोए अनिता तमसोए भरूपा सेना करना ऐसा दुकुरा में ना आया यापा में रिया तपा में रिया वाह बेटा मिका
6: आया न तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम दूंडे कोड़ा आया हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन तुम कितना ही कोड़ा मैंने मैं उड़ीने बागिया तो किन्हें दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तमे दुर्गम कोई यहाँ तो जाए तेरे काका गुंगो उन्हें बुको को काको मेल मिया
7: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लिंग सी जा हुरा रे मिने रो जिता हुरा रे मिने रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया न तुम ते ना मिल आप ही लेते ना।
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
8: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
9: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
8: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
9: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
8: डायल कीजिए 8700014242।
9: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
10: जिसके सपने
11: इन संदेशों के बाद श्रोताओं कार्यक्रम रजनीगंधा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं फिल्म आ अब लौट चले का ये गीत, आवाज़ कुमार सानू, सोनू निगम और साथियों की। इस गीत को सुनना चाहा है नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से, अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इसरत अकरम, बहू रुबीना वसीम, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबीहा नाज, साजिन साजिया नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू सैख, चीना सैख, कोकिलवारा और आई जिला मुजफ्फरपुर से, मोहम्मद फैजल सैख, नुजहत जहां नाज, कांति निकेतन राजनगर से, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्र गुप्ता, छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेंगी से, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, ग्राम परजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से, सत्येंद्र चंसौलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक आराध्या चंसौलिया, ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर, बाबा कुटी उफरा पाटन से प्रेमो साहू, यमुना साहू,

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे फिल्म अब लौट चले का ये गीत आवाज़ कुमार सानू सोनू निगम और साथियों की। इसी गीत को सुनना चाहा था गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य अभयनंद आर्य परमानंद आर्य पंकज प्रमोद रोहित एवं मोहित। लक्षनपुर से रामजी साहू जीवन लाल रजक भाटापारा से भेवेंद्र कुमार साहू लकी हर्षित सुमित्रा साहू। इन्हीं फरमाइशी गीतों के साथ श्रोताओं आज का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम।
1: प्रस्तुत चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
2: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
2: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी कंक्लूडेड the historic India-EU free trade agreement. This agreement will expand our trade and investment and it will open up many pathways for the exchange of

0: टैलेंट टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म।
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्ट्रोम के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को

0: निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
1: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
2: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
0: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
3: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
0: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. Four Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी से तरक्की की राह सिर्फ इसी सूरत में हमवार होती है जब इसकी रसाई सब तक हो। उन्होंने पेरिस में वीवाटेक समिट में भारत की तेज रफ्तार डिजिटल कायापलट में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांस के बड़े कारोबारी लीडरों के साथ भारत में सरमायाकारी के मौके और तौसी के मंसूबों पर तबादला ख्याल भी किया। वज़ीर-ए-तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के इतवार को होने वाले दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की। ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमरीका के दरमियान 9 दस्तखत शुदा मफाहमतनामों को एक तारीखी दस्तावेज करार दिया। यूक्रेन ने एक हफ्ते में दूसरी मर्तबा मॉस्को तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। और मीनाक्षी हुडा चीन में जारी मुक्केबाजी के आलमी कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। कल चार भारतीय मुक्केबाज क्वार्टर फाइनल में मुकाबला करेंगे। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस में वीवाटेक 2026 समिट से खिताब करते हुए भारत को इख्तिराआत और टेक्नोलॉजी के एक आलमी मरकज के तौर पर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी से तरक्की की राह सिर्फ इसी सूरत में हमवार होती है जब इसकी रसाई सब तक हो। उन्होंने कहा कि भारत ये मानता है कि रखना अंदाजी के इस अहद में टेक्नोलॉजी हर हाल में सब तक पहुंचाई जाए। उन्होंने आलमी इख्तिराआतकारों से भी जोर देकर कहा कि वो भारत के साथ मिलकर काम करें और सब तक इसे पहुंचाएं।
2: इंडिया बिलीव दैट इन दिस एरा ऑफ डिसरप्शन टेक्नोलॉजी मस्ट डिलीवर फॉर ऑल। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ एआई। एआई मस्ट इंप्रूव लाइव्स, वाइडन एक्सेस, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation at the AI Country Partner at VivaTech 2026 reflects this very vision.
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछली एक दहाई में भारत में एक तेज रफ्तार कायापलट हुई है जो टेक्नोलॉजी की नहीं निमित है। जनाब मोदी ने फ्रांस के सरकर्दा कारोबारी लीडरों के साथ भी मीटिंग की ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी और तकनीकी तआवुन को और भी मजबूत किया जा सके। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: पेरिस में वीवाटेक 2026 समिट से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी हर हाल में सब तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने मालियाती शमूलियत, तालीम, हिफ्जान सेहत और ज़राअत जैसे शोबों में भारत की तेज रफ्तार डिजिटल कायापलट को उजागर किया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अब दुनिया के बरवक्त होने वाले डिजिटल लेन देन का तकरीबन आधा हिस्सा यूपीआई से तय पाता है और अब ये फ्रांस में भी दस्तयाब है। इससे कबल दिन में आज जनाब मोदी ने फ्रांस के बड़े सीईओ से मुलाकात की। सेंट गोबेन, मिस्टर ले आए और सीएमए सीजीएम लीडरों ने भारत की तरक्की के इम्कान में एतमाद का इजहार किया और मैन्युफैक्चरिंग, मसनूई जहानत और सब जहाजरानी के शोबों में ज्यादा सरमायाकारी और शराकतदारी के मंसूबों का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त एक अदीमुशान सकाफती प्रोग्राम बोंजो में शिरकत कर रहे हैं जिसे पेरिस में सॉल पेलेल सेंटर में भारतीय बरादरी ने मुनाकिद किया है। फ्रांस के शहर पेरिस से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीब रहमान।
1: वज़ारत खारजा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे के अहम नतायज को उजागर किया। पेरिस में मीडिया से बातचीत करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बताया कि दौरे के दौरान तीन अहम सुतूनों तिजारत, टेक्नोलॉजी और इलाकाई नीज बैनल अक्वामी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज की गई। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने नीज में मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स स्कीम का इफ्तिताह किया जो भारत में टेक्नोलॉजी की महारत वाले स्टार्टअप्स के लिए एक आलमी प्लेटफॉर्म

0: मुहैया करता है। इस प्रोग्राम में भारत के 120 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने शिरकत की। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इतवार को नीट यूजी के दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने की गरज से आज आला सतह की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान वजीर मौसूफ ने इम्तिहान के अमल में सालमियत, शफाफियत और सलाहियत के आला तरीन मेयार को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने तमाम मुतालिका अहलकारों को हिदायत दी कि वो निगरानी कायम रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि दोबारा होने वाले इम्तिहान को आजादाना और सिफाना तौर पर मुनक्किद किए जाने के लिए तमाम जरूरी इंतजामात हों। जनाब प्रधान ने कहा कि वजारत की जानिब से नामजद अफराद तमाम रियासतों में तैनात होंगे ताकि वो इम्तिहान से मुतालिक सरगर्मियों से तालमेल कायम रखें और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की सदारत में कायम मरकजी कमान सेंटर को रिपोर्ट करें। मीटिंग के दौरान रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से भी ये कहा गया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उम्मीदवारों को सभी जरूरी सहूलियात मुहैया कराई जाएं, जिसमें इम्तिहान में बैठने के मुनासिब इंतजामात और पीने का पानी शामिल है, ताकि वो हर किस्म के दबाव से पाक माहौल में इम्तिहान दे सकें। नीट यूजी इम्तिहान 2026 में अब जबकि सिर्फ 3 रोज बाकी रह गए हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने एक पैगाम जारी करते हुए कहा है कि उम्मीदवारों को चाहिए कि पुरसुकून रहें और अपनी तैयारी पर भरोसा रखें। एजेंसी ने कहा कि उम्मीदवारों ने पूरे साल सख्त मेहनत की है, लिहाजा अब उन्हें मुनासिब सुकून और इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए। NTA ने एक महफूज, मुनसिफाना और शफाफ माहौल में इम्तिहान मुनक्किद कराए जाने की यकीन दहानी भी कराई है। वजारत तालीम ने आज बताया कि यूनिवर्सिटी की QS आलमी दर्जाबंदी 2027 में 52 भारतीय तालीमी इदारे शामिल हैं। भारत की जानिब से सबसे ऊपर के दर्जे में IIT दिल्ली है, जो आलमी सतह पर 118वें नंबर पर है, जबकि IIT बॉम्बे और IIT मद्रास भी दुनिया की बेहतरीन 200 यूनिवर्सिटीज में शामिल हैं। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि आलमी सतह पर भारत के तालीम से मुतालिक नक्शे कदम मुसलसल वसत इख्तियार कर रहे हैं। अकलियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में 2027 की हज जायजा मीटिंग की सदारत की। जायजा मीटिंग के बाद नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए जनाब रिजिजू ने 2026 के हज को भारत की तारीख में सबसे ज्यादा कामयाब हज करार दिया। वजीर मौसूफ ने बताया कि 2026 के हज के लिए सऊद अरब के हज और उमरे की वजारत ने भारत को 2 लब्बैतुल अवार्ड अता किए। उन्होंने बताया कि सरकार 2027 के हज के लिए जल्द ही नई हज पॉलिसी का ऐलान करेगी। मरकजी वजीर अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई जायजा मीटिंगों की सदारत की और कोऑपरेटिव बैंकिंग, नामियाती मसनूआत और कोऑपरेटिव बरामदात को मुस्तहकम करने के कौमी लाए अमल का जायजा लिया। कोऑपरेटिव बैंकिंग की बड़ी स्कीमों का जायजा लेने के दौरान जनाब शाह ने टेक्नोलॉजी को इख्तियार करके हुक्मरानी को बेहतर बनाकर और साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल अदायगी, खिदमात के मुश्तरका प्लेटफॉर्म और खिदमात की फरोख्तशुदा डिलीवरी के जरिए कोऑपरेटिव बैंकिंग को मुस्तहकम करने की गरज से किए गए मुख्तलिफ इकदामात की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। कॉरपोरेट उमूर की वजारत ने एक बयान में बताया कि आने वाले बरसों में मुजव्वजा कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया और कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के तआवुन में उसके किरदार के मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कोऑपरेटिव बैंकों के लिए सहकार सारथी टेक्नोलॉजी की मदद से किए जाने वाले इकदामात की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ईरान के सदर मसूद पेसिशकियान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पाए नए मफाहमत नामे को एक तारीखी दस्तावेज और एक मजबूत ईरान की जानिब से पैगाम दिया। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि अमन सिर्फ बाहमी एहतराम के जरिए हासिल किया जा सकता है और उन्होंने अपने वक़ार, आज़ादी और इलाकाई तआवुन के तहफ्फुज़ के साथ आलमी अमन के तई ईरान के अज़्म की तौसीक़ की। वर्साय में G7 समिट से अलग फ्रांस के सदर इमानुएल मैखों के साथ एक इशाइये के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए थे। दस्तावेज पर दस्तखत करने से कबल सदर ट्रंप ने कहा था कि ये समझौता तय पाना आसान नहीं था। दस्तखत किए गए मुआहदे को बाद में तेहरान भेजा गया और फिर सदर पेजिश्कियान ने इस पर दस्तखत किए। फ्रांस के सदर इमानुएल मैखों ने इस मुआहदे का ये कहकर खैर मकदम किया कि इससे देरपा अमन और आबनाए हुरमुज के दोबारा खोले जाने के लिए राह हमवार होगी, जिससे आलमी सतह पर तवानाई की कीमत में कमी आने में मदद मिलेगी। यूक्रेन ने मॉस्को की एक तेल रिफाइनरी पर इस हफ्ते के दौरान दूसरी मर्तबा रातों रात हमला किया। इसके अलावा रूस के रोस्तोव खित्ते में कई मकामात को निशाना बनाया गया है। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने यह कहकर इन हमलों की तस्दीक की कि मॉस्को के जुनूब मशरकी मजाफात में वाकई मॉस्को तेल रिफाइनरी पर कई ड्रोन से हमला किया गया। रूस की वजारत दिफा ने बताया कि मुल्क भर में यूक्रेन के 555 ड्रोन को बीच में ही रोककर जाया किया गया। रूस की ट्रांसपोर्ट वजारत ने बताया कि हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से परवाजें रोक दी गईं। रूस की सरकारी खबर रसा एजेंसी ने कहा है कि मॉस्को पर यह हमला इस बरस के सबसे बड़े हमले में से एक है। इधर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यूक्रेन के सदर व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों को रूस की जारी फौजी कार्रवाइयों के जवाब में एक काबिले जवाज रद्द अमल करार दिया। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क की तमाम रिफाइनरीज अपनी आला तरीन गुंजाइश के साथ काम कर रही हैं और उनके पास खातिर ख्वाह खाम तेल दस्तियाब है। साथ ही पेट्रोल और डीजल का मुनासिब जखीरा भी बरकरार रखा गया है। मगरबी एशिया में हालिया वाकयात के तनाजुर में नई दिल्ली में आज बैन वजारती ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,36,00,000 LPG सिलेंडर की बुकिंग मौसूल हुई है, जबकि 1,47,00,000 सिलेंडरों की डिलीवरी दी गई है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। LPG बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख PNG कनेक्शंस गैसीफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
0: बंदरगाहों जहाजरानी और आबी रास्तों की वजारत में डायरेक्टर उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि माल्टा के झंडे वाला LNG जहाज दिशा, जिस पर 62,370 मैट्रिक टन LNG है, कल सुबह गुजरात के दहेज बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। ये जहाज पीर को आबनाए हुरमुस से निकला था। मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक बड़े नए जाब्ते को मंजूरी दी है, जिसके तहत सोशल मीडिया के लिए कम से कम उम्र 15 बरस तय की गई है। इस बड़े कदम का मकसद डिजिटल स्पेस में बच्चों के तहफ्फुज को मुस्तहकम करना है। शेख मोहम्मद बिन राशिदुल मख्तूम की सदारत में मुत्तहिदा अरब अमारात की काबीना ने यह फैसला किया। इस करारदाद के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और चलाने की इजाजत नहीं होगी और न उन्हें इंटरेक्टिव फीचर्स से, जैसे किसी मवाद को पोस्ट करने, उस पर कमेंट करने या उसे शेयर करने या पब्लिक ग्रुपों को ज्वाइन करने तक रसाई हासिल होगी। 15 से 16 साल तक की उम्र के बच्चों को महदूद रसाई हासिल होगी, लेकिन वो सख्त निगरानी में ही रसाई हासिल कर पाएंगे। प्लेटफॉर्म्स को इन जाब्तों पर पूरी तरह से अमल करने के लिए 12 महीने का वक्त दिया गया है। चीन के गियांग में जारी आलमी मुक्केबाजी कप 2026 में आज भारत की मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। मीनाक्षी ने खवातीन के 51 किलोग्राम जुमरे के 16 प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में पोलैंड की नतालिया को 5-0 से शानदार जीत हासिल की। 51 किलोग्राम के खवातीन के जुमरे में मीनाक्षी का मुकाबला कजाकिस्तान के अलाऊ बाल्की बेकोवा से, जबकि 65 किलोग्राम जुमरे में स्नेह का मुकाबला पोलैंड की किंग करोका से होगा। क्वार्टर फाइनल में 57 किलोग्राम जुमरे में प्राची का मुकाबला चीनी ताइपे की चैंग यू यांग से होगा। 55 किलोग्राम के मर्दों के जुमरे में निखिल का मुकाबला आजरबाईजान के अमीन मोहम्मद ज़ादा से होगा। खवातीन मुकाबलों में 48 किलोग्राम जुमरे में ज्योति और 85 किलोग्राम में जुगनू ने पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाकर भारत के लिए तमगे को यकीनी बना लिया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ٹیکنالوجی سے ترقی کی راہ صرف اسی صورت میں ہموار ہوتی ہے جب اس کی رسائی سب تک ہو. انہوں نے پیرس میں ویوا ٹیک سمٹ میں بھارت کی تیز رفتار ڈیجیٹل کایا پلٹ میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو اجاگر کیا. وزیر اعظم نے فرانس کے بڑے کاروباری لیڈروں کے ساتھ بھارت میں سرمایہ کاری کے مواقع اور توسیع کے منصوبوں پر تبادلہ خیال بھی کیا. وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے نیٹ یو جی کے اتوار کو ہونے والے دوبارہ امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اعلی سطح کی ایک میٹنگ کی صدارت کی. ایران کے صدر مسعود پیزشکیان نے ایران اور امریکہ کے درمیان 9 دستخط شدہ مفاہمت ناموں کو ایک تاریخی دستاویز قرار دیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए रोजगार के नए अवसरों को गति देती प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: श्रोताओं, पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी थी। देश में रोजगार बढ़ाने की दिशा में ये योजना महत्वपूर्ण योजना के तौर पर उभर कर सामने आई है। श्रम व रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफओ के माध्यम से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की थी, जिसे लगभग 1,00,000 रुपए के कुल बजट के परिव्यय से शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है कि देश भर में 2 साल के अंदर करीब 3.5 करोड़ रोजगार पैदा किए जाएं। अगर कहा जाए कि ये एक ऐसी योजना है जिसमें रोजगार देने पर या रोजगार प्राप्त होने पर एक तरह से प्रोत्साहन सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो इस संदर्भ में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण इस योजना का तथ्य है। और हम आज कार्यक्रम में इस योजना के संदर्भ में एक विशेष चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि कल एक महत्वपूर्ण दिन है जिसमें पहली बार इस योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की जा रही है। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, और साथ में हम इस कार्यक्रम में ऐसे लाभार्थियों से जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया है, साथ ही जिन कंपनियों ने रोजगार दिया है उनके उन नियोक्ताओं से भी हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो आशुतोष जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। किस तरह से आप देखते हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को, कि 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार को पैदा करने का जो इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है, कितनी महत्वाकांक्षी योजना है ये?
2: सच्चाई ये है, समाज में इसकी जरूरत थी कि सरकार की ओर से आप ऐसा कुछ करें कि इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इसके लिए आगे बढ़े कि भाई हमें नौकरी देनी है लोगों को। तो उस दिशा में जब ये सरकार ने सोची और बजट में ही इसकी घोषणा हुई थी और उसके लिए फिर पूरी तैयारी हुई, कल पहली बार 2400 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी थी। ये पहली किस्त है क्योंकि अदरवाइज ये कुल बजट इसका करीब करीब 1,00,000 करोड़ है, 99 लाख समथिंग कुछ इस तरीके से इसका है। तो वो चीजें पहली किस्त जा रही है। और आपने ये बात जो कही कि आप कुछ ऐसे लाभार्थियों से भी बात करेंगे और कंपनियों से भी बात करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए कि जो औपचारिक नौकरी पाने वाले जो युवा हैं उसके इसमें जो है 2 किस्तों में 15,000 रुपीज तक की कोई प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वो दी जाएगी। और इससे जाहिर तौर पर कंपनियों को भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि चलिए एक असिस्टेंट सरकार की ओर से मिला हम लें, उनको भी जरूरत है। देखिए आज के दिन क्या है, अब जब फिर से वर्ल्ड ओपन अप होने वाला है, बहुत अच्छी बात हो गई कि वेस्ट एशिया क्राइसिस भी खत्म हो गया, अभी एक बार भी बहुत तेजी से काम भी बढ़ेंगे, कंपनियों के लिए भी बहुत काम आने वाला है हर क्षेत्र में, उसमें सरकार की ओर से ये मदद भी जब जाएगी तो और एक अच्छा माहौल बनेगा
1: निश्चित तौर पर। और इससे पहले कि हम एक लाभार्थी को जोड़े, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस योजना में जो रोजगार पाने वाले की मासिक अधिकतम जो सैलरी है वो 1,00,000 तक रखी गई है, यानी हम देखें तो इस योजना के तहत रोजगार पाने वाला एक बड़ा मध्य वर्ग भी स्थापित होने जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से इसमें जो सैलरी का प्रावधान रखा गया है कि जो ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी में 1,00,000 रुपए तक की मासिक सैलरी या वेतन पाने वाला कोई भी व्यक्ति है उसको ये लाभ मिलने वाला है,
2: कि 1,00,000 तक की किसी को नौकरी मिल रही है, बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है।
1: बिल्कुल।
2: दूसरी तरफ देखिए कि इस 1,00,000 से जोड़ते हुए सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही बजट में 12,00,000 रुपए तक के लिए जो है सो टैक्स
1: फ्री किया था। बिल्कुल,
2: ये देखिए ये दोनों चीजें जोड़ती हैं कि 1,00,000 रुपए वेतन पाने वाला एक युवा जिसकी कि समाज में एक प्रतिष्ठा होगी, लेकिन जिस तरीके से समाज बढ़ रहा है, जिस तरीके का आकांक्षी समाज है, उसमें 1,00,000 रुपए में बहुत सारी चीजें उसे जुटानी होती है, तो उस पर सरकार की ओर से एक्स्ट्रा भार न पड़े तो उसको टैक्स पे किया गया। कंपनियों को ये राहत दी गई कि आपको हम मदद करते हैं इसमें, तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छा स्ट्रक्चर हुआ है आज के।
1: बिल्कुल, जुड़े रहिए आशुतोष जी। एक लाभार्थी को हम शामिल करते हैं, अमन त्रिवेदी जो एक डेटा इंजीनियर हैं हमारे साथ जुड़े हैं। अमन जी स्वागत है आपका।
3: नमस्कार।
1: अमन जी अपना अनुभव बताएं, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आपको किस तरह से लाभ मिला है, और थोड़ा अपनी प्रोफाइल के बारे में भी बताएं, किस तरह से आप एक ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी में काम कर रहे हैं और कैसे आपको इस योजना का प्रोत्साहन मिला है।
3: अगर सबसे पहले बात करें कि मुझे लाभ कैसे मिला है, तो उसमें सबसे पहले बात करें तो कंपनीज जो है, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनको सबसे पहले तो इंसेंटिवाइज करा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप फ्रेशर्स जो होते हैं, जिनका पहली बार ईपीएफओ का अकाउंट खुला है, उन्हें हायर करिए।
1: बिल्कुल
3: तो मैं एक फ्रेशर हूँ, मैं इंजीनियरिंग करा हूँ, राइट, मैं और अभी मैं एज ए डेटा इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। तो पहले क्या होता था कि इंटरव्यू से पहले ही आपसे पूछते थे एक्सपीरियंस है, नहीं है तो नहीं इंटरव्यू होगा, तो स्किल सेट पे बात ही नहीं आती थी। अब एज ए फ्रेशर भी मौका मिलेगा बहुत लाखों करोड़ युवकों को कि एटलीस्ट इंटरव्यू तक जा, तक इंटरव्यू में जाए और बता पाए कि उनकी प्रतिष्ठा कितनी है और उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में। और बात करें तो जैसे कि जो 15,000 रुपए की राशि जो इम्प्लॉयज को भी दी जा रही है, वो दो टाइप, या तो वो कुछ 6 महीने बाद जो 7,500, और उसके 6 महीने बाद वापस 7,500। मेरा मानना है कि वो कुछ के लिए रिवॉर्ड है और कुछ के लिए मोटिवेशन है, वो कि कॉरपोरेट में गए हैं जो इम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय 6 महीने, उसके बाद जो ये राशि आती है वो एक रिवॉर्ड लगता है कि ये मेरे एक नया कदम था और इसके साथ एक रिवॉर्ड मिला है। तो और वर्कफोर्स में इसके बाद मैं जो हमारी यंग जनरेशन है वो ज्यादा दिख रही है और ज्यादा दिखेंगी। तो आई थिंक जॉब सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भी ये योजना जो है ये बहुत मददगार साबित हुई है यंग जनरेशन के लिए। उस हिसाब से बहुत यंग एज के अंदर भी एक इस कॉरपोरेट के अंदर घुसने में भी बहुत मदद की है इस योजना ने मेरी और लाखों युवाओं की।
1: आशुतोष जी, आपको मैं फिर से जोड़ना चाहूंगा और कि इस योजना के तहत नए लोगों को सामने लाने का मौका मिलेगा जो रोजगार की तलाश में है, और इसमें जैसे कंपनी और नियोक्ताओं के लिए भी ये शर्त है कि अगर 50 कर्मचारियों से कम संख्या की कंपनी है तो उन्हें 2 नए लोगों को हायर करना होगा, और अगर 50 से ज्यादा बड़ी कंपनी है तो 5 नए लोगों को हायर करना होगा। यानी जो नियोक्ता है उन पर फोकस है कि वो नए लोगों को रोजगार दें। किस तरह से इस दिशा में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है कि जो फ्रेशर्स हैं और जैसा कि अमन जी ने भी बात की, जो स्किलफुल लोग हैं वो सामने आए। हाँ
2: अब क्या है कि दो इसके पहलू देखिए इस योजना के। 1 लाख रुपए तक के लिए ये है जो किसी यूथ को मिलता है, उसमें सरकार इस योजना में लेकर के आई है। दूसरी तरफ जो फर्स्ट टाइम ईपीएफओ में एनरोल हो रहे हैं, अब आज के दिन आप थोड़ी सी अगर पीछे थोड़ा पीछे घूम कर देख लें तो आप देखेंगे कि इतनी कितनी संख्या है ऐसे लोगों की जो कि बिल्कुल फ्रेशर आ रहा हो और उसे सीधे 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए मिल रहा नहीं। ये यहाँ पर आप जो है सो एक माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं कि कंपनियां जो है, और उसमें आपने ये बात भी कही कि 50 से कम है तो 2 और उससे ऊपर है तो कम से कम 5 की जो बात है वो एक लिमिट भी डाल करके, क्योंकि कंपनियां ये दोनों चीजों से चलती है, एनर्जी के साथ भी चलती है, अनुभव के साथ भी चलती है, तो वो अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन उस बीच में फ्रेशर्स के लिए जो नए युवा आ रहे हैं स्किल लेकर के, उनको कैसे एक मौका मिले उसके लिए माहौल बने।
1: बिल्कुल, तो यहाँ पर मैं निलेश वर्मा जी को भी शामिल करना चाहूंगा जिन्होंने रोजगार को लेकर एक अपनी कंपनी में भी इस योजना के तहत रोजगार देने में मदद की है। निलेश जी, स्वागत है आपका, अपने बारे में बताएं, अपना परिचय दें पूरा, और साथ ही इस योजना को किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट किया अपने लिए इसके बारे में भी बताएं।
4: धन्यवाद। मेरा नाम निलेश वर्मा है। आई एम वन ऑफ दी को फाउंडर ऑफ इंटेलीडीबी एंटरप्राइज। वी आर वन ऑफ दी प्रीमियम स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन जो AI के तहत एंटरप्राइज डेटाबेस में काम कर रही है। हम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी हायरिंग थी, और हायरिंग के साथ साथ लोगों को रिटेन करना था, बिकॉज हायरिंग वॉज वन पार्ट एंड रिटेंशन वॉज दी अनदर पार्ट। जितने भी न्यू ब्लड हैं आज की डेट में, नए लोग हैं जो कॉलेज पास आउट हैं, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेशर्स, द प्रॉब्लम विद दीज फ्रेशर्स वर देयर रिटेंशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दे ऑलवेज लुक एट money over the career, most of them. I would not say all of them, but most of them, they look at hopping from one place to another, looking at their career more rather than sticking to one of the or one any of the organization. अभी recently जब से ये प्रधानमंत्री

0: रोजगार योजना लागू हुई है, इससे हमारे जैसे एम्प्लॉयर्स को काफी बेनिफिट मिला है इन टर्म्स ऑफ यू नो हायरिंग द राइट सेट ऑफ रिसोर्सेज एंड मेकिंग देम स्टिक टू द ऑर्गेनाइजेशन. ये एक बहुत ही फोकस्ड अप्रोच है और इसको मैं यू नो आई एम ग्रेटफुल टू द ईपीएफओ एंड द ईएम ऑर्गेनाइजेशन फॉर रोलिंग दिस आउट. हालांकि इस योजना के बारे में आज भी बहुत लोगों को पता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू नो आई बीइंग एन एम्प्लॉयर आई गॉट टू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन कपल ऑफ मंथ्स अगो, बट मैं इसके बारे में और डीप जानना चाहूंगा, अंडरस्टैंड करना चाहूंगा एंड आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी लेवरेज इट टूवर्ड्स द यंग जनरेशन एम्प्लॉयमेंट.
1: बिल्कुल. तो आपको क्या उम्मीद है इस योजना से, जैसे आप जैसे जो एक तरह से मैं कहूं कि देश के योग विकास में भी आप जैसे जो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं बिजनेसेस एंटरप्रेन्योर्स, तो कैसे इस योजना से आगे आने वाले समय में एक बहुत स्किलफुल वर्कफोर्स आपको मिलने वाली है और जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं उससे भी कैसे अट्रैक्ट होंगे आजकल के जो यूथ हैं वो इस योजना के जरिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में टैलेंटेड पूल हमारे सामने आ पाए.
0: जी जी. सो मेरे लिए इनफैक्ट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह योजना केवल एक फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है फॉर द एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, यह एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज एंड मैकेनिज्म है एंड इट एक्चुअली एनकरेजेस कंपनीज टू क्रिएट मोर जॉब एंड इट एनकरेजेस यंग प्रोफेशनल टू एंटर इनटू द फॉर्मल वर्कफोर्स विद कॉन्फिडेंस. जब सरकार रोजगार देने वाले संस्थानों को समर्थन देती है तो उसका प्रभाव केवल कंपनी तक सीमित नहीं रहता है. It actually creates a multiplier effects across families, communities, and the broader economy. Every new employee supports a household, and every household contributes towards the consumption, and every successful business contributes towards the nation building. So basically, जितने भी नए रोजगार को हम प्रोत्साहन देते हैं, अलग-अलग योजनाओं को के तहत सरकार हमें you know incentive देती है as an employee, as an employer. ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की, हमारी कंट्री की कंट्रीब्यूशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है.
1: बिल्कुल. आशुतोष जी, आपसे अब मैं जुड़ना चाहूंगा. कुछ आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस योजना से संबंधित, जैसे जो कुल रजिस्ट्रेशन इस योजना के तहत अब तक हुआ है कर्मचारियों का, जो नए कर्मचारी जुड़े हैं लगभग 60 लाख के करीब नए कर्मचारी इससे जुड़े हैं, और युवाओं की संख्या अगर हम देखें तो 71% के आसपास है इसमें. और साथ में एक और महत्वपूर्ण तथ्य इस योजना के तहत निकल कर आया है कि महिलाएं भी 30% के आसपास जुड़ी हैं, यानी विमेन वर्कफोर्स भी इस योजना से बढ़ता हुआ देश भर में देखा जा रहा है. और कैसे आप देखते हैं जिस तरह से ये आंकड़े हैं कि इतनी कम समय में और इतना अच्छा उत्साह है रोजगार के सृजन में, और साथ ही जैसा कि मैंने युवाओं की और विमेन वर्कफोर्स की तो बात की ही, क्या आपका कहना है?
2: दोनों चीजें हैं, एक तो इसकी जरूरत थी और दूसरी बात कि सरकार की ओर से मदद तो कंपनियां भी आगे बढ़ी, तो ये रजिस्ट्रेशन तो आपको दिखना ही था, ये जो जोश है वो तो दिखना ही था. जैसे अभी निवेश जी ने बात कही ना, इनके ऑर्गेनाइजेशन में 15 लोग हैं जो फ्रेशर हैं, बिल्कुल जो जाकर के इन्होंने कॉलेज से पिक किया, कैंपस से उठाया और लेकर के आ गए. अब यही इस योजना की जो खूबी है वो यही है.
1: बिल्कुल.
2: तो ये और जाहिर तौर पर ये फोकस ही किया गया है उस एज ग्रुप पे, जो बात अभी शुरुआत में अमन जी ने भी कही ना कि 21 से 30 के बीच में जो सबसे ज्यादा फोकस भी वही है, क्योंकि वही जरूरत है, वही आने वाले दिनों में बदलेंगे विभाग को.
1: बिल्कुल जी. बिल्कुल. निश्चित तौर पर जैसा कि नाम में ही है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, तो विकसित भारत का एक रोडमैप ये योजना देती है, क्योंकि इसमें एक तरफ इंसेंटिव है नियोक्ताओं को और रोजगार पाने वालों को, दूसरी तरफ देश में एक स्किल्ड वर्कफोर्स को औपचारिक सेक्टर में लाने की इस योजना के तहत पूरी कवायद है, जिससे कि रोजगार बड़ी संख्या में बढ़े और एक पूरा स्किल सेट तैयार हो युवाओं का, जिससे कि देश के विकास में वो अपना योगदान दे सकें. बहुत धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम में जुड़े और इस योजना के जो फायदे हैं और आने वाले समय में जो एक बड़ा इसका आउटकम निकल कर सामने आएगा, इन सभी बातों पर आप सभी ने विस्तार से बात की. बहुत बहुत धन्यवाद.
3: धन्यवाद. अभी आप सुन रहे थे रोजगार के नए अवसरों को गति देती प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: Countrywide.

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं और अब समय है गज़लों के कार्यक्रम महफिल का। कार्यक्रम महफिल में सुनवाते हैं चंद गज़लें गुलाम अली के स्वर में।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं गज़लों के कार्यक्रम महफिल में गुलाम अली के स्वर में चंद गज़लें। और अब कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

श्रोताओं, गुलाम अली के स्वर में गाए इसी गजल के साथ ही आज का कार्यक्रम महफिल अब यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे गजलों का कार्यक्रम महफिल। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। कार्यक्रम सुरों के रंग में सुनवाते हैं ये पहला सुर मन्ना डे का। फिल्म है उपकार, बोल इंदिवर के।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और साथियों के स्वरों में फिल्म गंगा जमुना का ये गीत। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस संदेश के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम सुरों के रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब सुनवाते हैं फिल्म हमराज का ये गीत, आवाज महेंद्र कपूर की।

और अब सुनवाते हैं फिल्म हंसते जख्म का ये गीत, आवाज मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म हवस का ये गीत। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म हिम्मत का ये गाना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म हिम्मत का ये गीत। और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम सुरों के रंग अब यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101.7 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity

0: This system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture, and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है, जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।